90s वो दौर था जिसने मेलोडी में और मेलोडी मिला दिया, और 90s के गाने बन गए सबसे मेलोडियस। 90s की रानी संगीता सुना रही है 90s के गाने।

0: के बाद एक सुपरहिट गाने आपको सुना रही है 90s की रानी संगीता।
1: कौन?
2: मैं यमराज हूँ।
1: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
2: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी।
1: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
2: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
3: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
4: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
3: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
4: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो।
3: क्या स्पेशल है उनमें?
4: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way, or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
6: नमस्ते नमस्ते, मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
3: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
6: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
3: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
7: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265-0505 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
7: आज मैंने सोचा कि बॉलीवुड से बिग खान को चुरा लेते हैं। बिग बी के बारे में तो आपने सुन लिया, अब बिग खान को चुराते हैं। हाँ वही खान जो सभी के दिल में राज करते हैं एकदम से, शाहरुख खान। शायद मैं जानती हूँ अभी हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हुए, और शायद आप नहीं भी जानते होंगे कि शाहरुख खान को सुपर स्टारडम मिला था। मूवी एक बहुत ही बेमिसाल आई थी

एक इरा था शाहरुख खान के लिए, जो अगर शायद नहीं मिलता, वो एक कड़ी थी, एक लिंक था, जो अगर नहीं होता तो फिर शायद बात कुछ और ही होती। लेकिन ऐसे ऐसे उनको मूवीज मिलते गए जिन्होंने उन्हें ख्याति तक बैठा दिया। 1993 में एक मूवी आई बाजीगर, उसने भी पासा ही पलट दिया, और फिर वहां से शाहरुख खान को पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। ही वॉज अ सुपर स्टार। आफ्टर बिग बी आई थिंक अगर किसी की इतनी चर्चा हुई है, किसी की मूवीज इतनी हिट हुई है, किसी के दिल में अगर बिग बी की जगह किसी ने घर बनाया था तो वो थे शाहरुख खान।

0: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
1: This is the life, eh? Getting stuck in, making the most of every adventure that comes your way. But if you get hurt, who gets harmed? Well, you obviously. But it might not stop there. Because an injury, even a minor one, can affect your mates, your whānau, the people who count on you. So while you're out enjoying yourself, take a moment to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर.
4: लिसनर्स, शाहरुख खान के बारे में आज बातें हो गई, कल देखते हैं किन बॉलीवुड सुपरस्टार को हम चुरा कर लाते हैं आपके सामने पेश करने के लिए. तो इस सप्ताह बातें होंगी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के बारे में. है मेरे बाद नेहा इज नेक्स्ट. आज का गाना कुछ कुछ उन्होंने भी चुना है मेरे लिए. उनसे आप मुलाकात करें, उनको कंपनी दे. मैं जब तक नहीं मिलती ना तब तक किसी का अच्छा नहीं कर सकते. तो किसी का प्लीज बुरा भी मत करें.

0: पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ।
1: दिस इज तराना न्यूज।
2: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। अमेजोन ने न्यूजीलैंड में डाटा सेंटर वाले प्रोजेक्ट को रोक दिया है, जिससे कंपनी को $45 मिलियन का झटका लगा है। ये जानकारी अमेजोन डाटा सर्विसेज न्यूजीलैंड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सामने आई है। अमेजोन ने वेस्टगेट में डाटा सेंटर का निर्माण करने के लिए जमीन खरीद ली थी। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री डेम जेसिंडा आर्डेन ने की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि अमेजोन का डाटा सेंटर देश में खोलने का मतलब होगा कि 1000 लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध होगी। अमेजोन न्यूजीलैंड का कहना है कि वह नए सर्विस नेटवर्किंग गिया और लीसिंग कैपेसिटी सहित डाटा सेंटर्स पर ध्यान दे रहा है, न कि अपने खुद के बिल्डिंग का निर्माण करने पर। फ्रीट चार्जेस में वृद्धि की जा रही है। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी एपी मेला मैस्क ने कहा है कि वह फ्रीट चार्जेस को 27% से बढ़ाने जा रही है। मध्य पूर्व में जारी संकट की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से मैस्क को ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऑकलैंड से पर्थ ऑस्ट्रेलिया जा रही एक फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति पर अन्य यात्रियों को छूने और विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि केविन क्रू ने उन्हें शराब देने से इनकार कर दिया था। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप लगा है कि वे अपने साथ अल्कोहल ले गए थे, जिसे उन्होंने फ्लाइट में पिया था। उसके बाद में उन्होंने क्रू मेंबर्स से और शराब की मांग की थी। उन्हें नशे की हालत में देखे जाने के बाद में उन्हें और शराब सेव किए जाने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद में उन्होंने अन्य यात्रियों को छुआ था और विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला था। उन पर 1 count ऑफ बिहेविंग इन डिसऑर्डरली मैनर इन अ पब्लिक प्लेस वाले चार्जेस लगे हैं, जिसके लिए उन पर $6,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन पर सिविल एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन 1998 का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है, तथा हर एक चार्ज के लिए $15,650 तक का जुर्माना हो सकता है। न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की मौत मामले में अब दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मृतक न्यायिक अधिकारी के पिता की शिकायत पर दक्षिण दिल्ली के सफदर जंग एन्क्लेव थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने इस मामले में जज की पत्नी और साली सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। फिजी सेना ने ड्रग्स तस्करों को कड़ी चेतावनी दी है। लैंड फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ओनिसी वोरो दुवनीसांगा ने ये चेतावनी दी है। लैंड फोर्स सेकंड कोटा परेड में बोलते हुए ब्रिगेडियर जनरल दुवनीसांगा ने चेतावनी दी है कि जो लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं तथा लोगों में डर फैला रहे हैं, उन तक सेना बहुत जल्द पहुंचेगी। सेना के कमांडर का कहना है कि वे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म कर देना चाहते हैं, जो देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वर्ल्ड नंबर वन यानिक सिना ने लगातार 5वां मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मैड्रिड ओपन फाइनल में अलेक्जेंडर वेवरेव को 6-1, 6-2 से 57 मिनट के मैच में हराने के बाद में इस टाइटल को। 24 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी इस सीजन में 4 मास्टर्स इवेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, और अब मैड्रिड ओपन टाइटल जीतने के बाद में उन्होंने लगातार 5वें मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है।
1: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से, और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
3: बोर्ड,
4: उदास हो,
3: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
4: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
3: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
4: चलो समेटो खुशियों का खजाना।

0: खुफरी से पहले दोपहर में करे थोड़ा चिल चिल चिल विद मी नेहा
1: चिल विद नेहा मंडे टू सैटरडे 1 PM टू 4 PM ऑन रेडियो तराना.
2: Oh, you know, I absolutely love this time. I love this chill time with all my listeners and so good to be back. Monday afternoon hai, abhi se lekar 4 baje tak ek saath hum chill karne wale hai. I know, right? Sirf ek din ki chutti hoti hai meri Sunday ki, par usme bhi mujhe aisa lagta hai ki yaar, bade din ho gaye. लिसनर्स से मुलाकात नहीं हुई, हम सैटरडे को मिले थे, उसके बाद संडे का पूरा दिन निकल गया एंड अब आज दोपहर में जाकर हमारी मुलाकात हो रही है. कैसा रहा आपका वीकेंड? होप इट वॉज गुड फॉर एवरीवन. आई हैड अ वेरी रॉकिंग इवेंट एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जानते होंगे कि क्यों मैं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रॉकिंग इवेंट था, रॉकिंग वीकेंड था, क्योंकि बड़ा ही रॉकिंग इवेंट होकर हटा है हमारा वीकेंड में. सो या इट वॉज गुड फन एंड कई सारे लिसनर्स से भी मिलने का मौका मिला इस इवेंट में. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग अलॉन्ग एंड enjoying the bhajan clubbing with us. अब आज इतने धूम धड़ाके के बाद मैं सोच रही हूँ कि बड़ा ही ना मीठा सा मंडे रखते हैं. हाय कितना प्यारा नाम है ये, मीठा मंडे. मीठा मंडे कैसे होगा? मीठे मीठे ऐसे गानों के साथ, बहुत ही रिलैक्सिंग सूदिंग ट्रैक्स आज मैंने पिक किए हैं. शायद कुछ ऐसे गाने भी जो बड़े समय से सुने नहीं है या जो उतने पॉपुलर नहीं है, बट they are very very sweet numbers. तो ऐसे गानों के साथ चिल करते हैं आज एक साथ, right here on your favorite radio Tarana, in the show, Chill with Neha. Welcome everyone.

0: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रॉस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
1: यार मुझे फीजी जाना था।
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियाँ हो जाए तब जाएंगे।
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
2: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ अच्छी कंडीशंस में।
0: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
2: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
4: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
3: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: Yes, do call Ajeshni if you wish to advertise on Tarrana, 02196-1386, ye number ghumana. एडवर्टाइजिंग की बात हुई तो बस अभी मैं एक ऐड बनाकर आई हूँ प्रोडक्शन स्टूडियो से रुतबा इंडियन क्विजीन की. भाई पहले तो मुझे नाम बड़ा मज़ेदार लगा, कहते हैं ना ये हमारा रुतबा है, तो बड़े ही रुतबे के साथ इन्होंने अपना ये आलीशान रेस्टोरेंट बनाया है और बहुत ही डिलिशियस यहाँ पर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन क्विजीन रहता है, साथ में चाट आइटम्स एंड जो भी आप इन्जॉय करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम दही भल्ले टू वड़ा पाव टू delicious dosas, biryanis, everything in one place आपको मिलेगा at Rutba Indian Cuisine. And not just that, it's a great place to dine in. यहाँ पे आप अपने private functions भी कर सकते हैं because upstairs they've got a big area जहाँ पे they can accommodate up to 100 guests. So आप अपनी private parties के लिए भी यहाँ पर bookings दे सकते हैं. टाका नीनी के Derby Square में है. And if you live along that side, या फिर आप जाकर checkout करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें इनका रुतबा at Rutba Indian Cuisine. और अगर जाएंगे तो उनको बताइएगा कि जी हमने आपको नाम रेडियो पर सुना और रेडियो वाले कह रहे थे कि ये नाम बड़ा दमदार है, तो इसीलिए हम ये जगह देखने आए हैं, रुतबा. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मीठे मीठे गानों का मज़ा ले रहे हैं, तो इस गाने को सुनते हैं जिसमें कहा गया है कि मीठी मीठी सर्दी है जो आजकल हो रही है ना, हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी सर्दी.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: घर रखना हो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: वांट टू गो हैवजीज विद मर्क्यूरी? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर। वेलकम बैक लिसनर्स, रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा, जिसमें आज बहुत ही मीठे मीठे गानों के साथ हम चिल कर रहे हैं और अपना मीठा सा मंडे और मंडे की इस मीठी सी दोपहर को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वीकेंड में मैंने बताया था ना, बड़ा ही हमारा एक रॉकिंग इवेंट हुआ भजन क्लबिंग का। देखो, भजन संध्या और भजन के प्रोग्राम्स ये होते हैं, पर अभी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल वहाँ पर ना, एक पूरी लाइट्स वगैरह बंद करके, जैसे डिस्को वाला माहौल होता है ना, लाइटें वाइटें लगा के खूब जोर शोर से वहाँ पर हमने भजन किए एंड पीपल जस्ट डांस्ड, दे डांस्ड एंड दे स्वेड एंड दे हैड अ ग्रेट टाइम एंड एन्जॉयड। और मुझे कुछ बड़े प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मिले। एक बड़ी प्यारी सी मेरी आप कह लीजिए मित्र ही बन गई, दोस्त बन गई इस इवेंट में आई थी, श्वेता फ्रॉम टेस्ट ऑफ बिहार। इनका ये एक टेक अवे भी है, काफ़ी मशहूर है, आई एम श्योर आपने इनके स्टॉल्स भी देखे होंगे कई सारे इवेंट्स पे। तो श्वेता जी ने एक बड़ी प्यारी बात मुझसे कही, कहा नेहा मज़ा आ गया भगवान का नाम लेकर झूम कर, बस इसी तरह से आप हम सबको झूमाते रहे। मैंने कहा बस आप सब झूमने वाले बने और आते रहें और हम मिलकर झूमते रहेंगे। उस मस्ती को अभी बरकरार रखते हुए एक मीठे से भजन के साथ हम अभी सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और झूमते हैं।

0: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विथ एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा, वही अपना जैसा स्वाद, वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ।
1: तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
2: ताजी, एजे के घर दिया और हमें?
3: तुम्हारे पास तो है घर।
2: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ?
3: ये तुम लोग को जो मांगता हमसे है, हमें दे देगा कि नहीं? यार
2: रान दो, नहीं मांगता।
3: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा।
2: हाँ सब लेके जाना।
3: हाँ हम लेके जाएगा, लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
2: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
4: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
5: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।

0: कितनी मीठी आवाजों में, इतने मीठे अंदाज में अगर आपको कोई कहानी सुनाए तो कितना अच्छा लगे, है ना। और कहानी तो नहीं, पर कहानी के बारे में ही एक गाना, और गाने में जो कहानी सुनाई गई है वो मैंने अभी आपको सुनाया हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जबकि थीम चल रही है, What can I call the theme today? मीठा मंडे, that's right. मीठे मीठे गाने मंडे आफ्टरनून में हम enjoy कर रहे हैं और बहुत सारे listeners भी इन्हें enjoy कर रहे हैं. Thank you so much आपके messages के लिए. प्रवीना, आपका भी message मुझे मिला. Glad to know that you are tuned in this afternoon and enjoying the show. अब हमारे स्टार ऑफ द वीक सेगमेंट का भी समय हो रहा है, फिर 2 PM आपके लिए न्यूज आने वाली है और 2 बजे के बाद भी, इनफैक्ट ऑल द वे टिल 4 PM आज इसी तरह से ना मध्यम मध्यम सॉफ्ट सॉफ्ट गाने ही शायद चलते रहेंगे. शायद 3:30 के बाद थोड़ा सा मैं टेम्पो को बढ़ा दूं, बट तब तक इसी तरह से मीठे मीठे गानों को एंजॉय करते हैं. क्या होता है, वीकेंड इज़ यूजुअली यू नो सो फुल ऑन, इतने लोगों से हम मिलते जुलते हैं, इतनी गैदरिंग्स होती हैं, शोर शराबा हल्ला ये सब होता है. ये सब चीज़ें भी, इनका भी एक एन्जॉयमेंट है, पर उन सब चीज़ों के विपरीत यू नो उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट माहौल में जब आप बैठते हैं, वेयर देयर इज जस्ट यू एंड सम गुड म्यूजिक एंड अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग एम्बियंस, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है. और वैसा एम्बियंस आज हमने क्रिएट करके रखा हुआ है हमारे स्टूडियो में इन दिस मीठा मंडे सेगमेंट. स्टार ऑफ द वीक देखते हैं हमारे कौन है, और जो भी स्टार रहेंगे उनका भी कोई मीठा सा ही गाना आपको सुनाऊंगी मैं अभी इस सेगमेंट में.
1: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन.
2: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.

0: The Rana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods. Good afternoon. Tarana ke studio ki ghadi mein dopahar ke 2 baj chuke hain.
2: This is Tarana News.
3: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। बीएनजेड बैंक ने 6 महीनों के लिए $494 मिलियन मुनाफे की अनाउंसमेंट की है। इस साल 31 मार्च तक 6 महीनों में बैंक को $494 मिलियन का मुनाफा हुआ है। इससे पूर्व वाले साल के मुताबिक बीएनजेड का मुनाफा 37.9 मिलियन या 301 मिलियन से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। कंपनी के मुताबिक बैंक के मुताबिक कैपिटलाइज्ड सॉफ्टवेयर एसेट्स और कैपिटलाइज्ड पॉलिसी में कुछ बदलाव के कारण से उसका मुनाफा नीचे हुआ है। बैंक का होम लैंडिंग 6.6% से बढ़ा है, जबकि बिजनेस लैंडिंग में 2.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। टोटल लैंडिंग में 4.7% या $501 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है। बैंक की ओर से कुल $113.6 बिलियन का कर्ज दिया गया है। पुलिस ने हैमिल्टन स्थित एक पते पर तलाशी ली है, जहां एक व्यक्ति पर ऑनलाइन किसी नाबालिग से अश्लील बातचीत करने का आरोप है। एक्टिंग हैमिल्टन सिटी एरिया कमांडर सीनियर सर्जन एमी वेटली का कहना है कि तलाशी वारंट जारी किया गया और अब जब्त की गई वस्तुओं की जांच की जा रही है। ये जांच मार्च में विदेश में रहने वाले एक सोशल मीडिया क्रिएटर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शुरू हुई है। क्रिएटर का आरोप है कि उसने 13 वर्षीय लड़की बनकर हैमिल्टन के एक व्यक्ति के साथ यौन रूप से आपत्तिजनक ऑनलाइन बातचीत की। क्राइस्टचर्च में आरिश बार से चोरी करने के आरोप में एक बार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। 33 वर्षीय सोफी एलिजाबेथ पेनेस्की पर आरोप लगा है कि उन्होंने क्राइस्टचर्च स्थित क्रेग आरिश बार से $70,000 से ज्यादा की चोरी की थी। उन्होंने ये चोरी नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच में की है। उन पर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। पूर्व न्यूयॉर्क सिटी मेयर रूडी गुलियानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई है। गुलियानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के असफल प्रयासों में उनके वकील के रूप में काम किया था। इस प्रयास के चलते गुलियानी के खिलाफ अमेरिका के 2 राज्यों में आपराधिक आरोप लगे और चुनाव कर्मचारियों ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद में आज परिणाम का दिन आ गया है। बंगाल की फलता सीट को छोड़कर के सभी सीटों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पश्चिम बंगाल में संवेदनशील माहौल देखते हुए मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इस बार तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी जमकर मतदान हुआ है। बंगाल की 293 सीटों के लिए 77 मतगणना केंद्रों पर गिनती होगी। मतगणना से पहले ही टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हेरफेर के आरोप लगाए हैं। फिजी की अर्थव्यवस्था को अभी भी इनवर्ड रेमिटेंस से काफी लाभ मिल रहा है। इस साल फरवरी में $274.2 मिलियन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पास फिजी में रेमिटेंस के रूप में भेजा। रिजर्व बैंक के मुताबिक फरवरी में जनवरी के मुताबिक रेमिटेंस में 22.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। फरवरी महीने में $110.1 मिलियन आउटवर्ड रेमिटेंस रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स जो फिजी में काम करते हैं, वे अपने रिश्तेदारों के पास विदेश रेमिटेंस में पैसे भेज रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन के बीमार पड़ने के बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिवरपूल के साथ में प्रीमियर लीग मैच से पहले वे बीमार पड़े थे। 84 वर्षीय सर एलेक्स फर्गसन 27 सालों तक मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ में रहे हैं।
4: बोर्ड,
5: उदास हो,
4: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
5: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
4: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
5: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
4: ओनली ऑन

0: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रेस से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09-815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
1: At Bunnings Trade, we can help you build big with our wide range. We've got trade-trusted building materials and supplies you need to get the job done. Plus, we can deliver direct to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
2: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full-price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in-store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
3: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।
4: हाय,

0: Wow, so beautiful na. I mean, I don't even remember ये गाना मैंने last कब सुना था, पर आज हम ये गाना enjoy करने वाले हैं. और ये गाना जब भी play होता है या मैं सुनती हूँ तो इसके music से मुझे एक और गाने की याद आ जाती है जिसे गाया है ज्योतिका तांगड़ी ने. And again, इतनी मिठास उनकी आवाज़ में है, जिस अंदाज से उन्होंने गाना गाया है, you can totally say it's a very मीठा song. हाय हाय हाय, ब्यूटीफुल. फिर एक गाना आतिफ असलम की आवाज में मैंने ऐसा चुना है. ये भी गाना पता नहीं लास्ट आपने कब सुना होगा, मैंने भी पता नहीं कितने टाइम से नहीं सुना. दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
1: एक बार बेबी सेल्फिश होके अपने लिए जियो ना.
0: क्या बात है, कितनी सही बात कही गई है ना. जनरली हमें लगता है कि सेल्फिश होना ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग, द नेगेटिव क्वालिटी, यू मस्ट केयर फॉर अदर्स. पर कई बार खुद के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए यार, खुद को दूसरों से आगे रखना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए. कभी कभी, हाँ कभी कभी, इट्स ओके. सो या आज कभी कभी में ये गाना आतिफ असलम की आवाज़ में भी आने वाला है. और मीठे गानों की बात हो और अरिजीत सिंह का कोई गाना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इस बार अरिजीत की आवाज़ में ये गाना.

0: hobby updates, reviews or previews. Stay tuned to Tarana.
1: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
2: सुबह की जद्दोजहद के बाद और शाम की अफरा तफरी से पहले दोपहर में करे थोड़ा chill.
3: Chill with Neha.
4: Chill with Neha. Monday.

0: from urban communities around the world.
1: We present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
0: 5 minutes from New World. Eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
1: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
0: That's pikotoetoe.nz.
2: Sali ji, Auckland फिर कब आओगी?
3: जी जू, मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है वो हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में ही बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड एडिंगटन क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के डिलिशियस बिस्किट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक्स, सब कुछ मिलता है। मैं तो कॉल करके ही अपना ऑर्डर दे देती हूँ 0800-786-101 पे। अब तो यहाँ क्राइस्टचर्च में ही है मेरा बेकन बीन्स।
2: तो हमसे मिलने नहीं आओगी?
4: मोआ पॉइंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कुक स्ट्रेट में डिस्चार्ज हो रहा है और वेलिंगटन साउथ कोस्ट तक जा सकता है। वाटर क्वालिटी जानकारियों के लिए हमेशा याद करके LAWA वेबसाइट देखें। तैरने जाने से पहले LAWA.org.nz देख लें। साउथ कोस्ट के तारकेना बे से दूर रहें। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तट के करीब डिस्चार्ज हो सकता है शॉर्ट नोटिस पर और बगैर चेतावनी के, खासतौर पर गंभीर बारिश के समय। और जानकारी के लिए वेलिंगटन वाटर .co.nz देखें।
5: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds Manika सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds Manika सुपर सेंटर।
3: इस सैटरडे मेरी ये ड्यूटी लगी है कि मुझे जाना है NZ Beds, सुबह 10 बजे पहुंच जाना है और यहाँ से आपको शॉपिंग कराना है। भाई पहले तो अपने बेड से सुबह सुबह निकल कर रेडी होकर जाना, ये बड़ा एक मिशन लगता है अब। बट नहीं, जहाँ मुझे जाना है वहाँ मुझे ये पता है कि वहाँ इतनी अच्छी डील्स मिलने वाली है कि आई माइट एंड अप ग्रैबिंग सम स्टफ फॉर माई हाउस एज वेल, बिकॉज बच्चों के लिए अभी आई एम लुकिंग फॉर न्यू किड्स बेड्स एंड यहाँ पर किड्स बेड्स की भी बड़ी अच्छी रेंज मिलती है। साथ ही इफ यू आर लुकिंग फॉर बजट बेड्स या हाईटेक AI बेड्स, ये सभी आपको मिलेंगे एट NZ Beds। एंड यहाँ पर जितने भी लोग इस वीकेंड में शॉपिंग करेंगे, फ्री पिलो आपको अपनी परचेज ऑफ बेड के साथ मिलेगा एज अ गिफ्ट, अलॉन्ग विद मेनी अदर इन स्टोर स्पेशल्स एंड डील्स। $299 से स्टार्टिंग प्राइस है इनके मैट्रेसेस का एंड अप टू 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन सर्टन बेड्स एंड मैट्रेसेस। सो डू कम एंड चेक आउट इन स्टोर, ये डील्स रहेंगी और मैं भी यहाँ पर रहूंगी सैटरडे फ्रॉम 10 AM टिल मिड डे। एंड दिस इज NZ Beds इन मानिकाओ सुपर सेंटर एट द कॉर्नर ऑफ लांबी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव। तो इस सैटरडे हमारी आपकी मुलाकात यहाँ भी हो सकती है अगर आप आ रहे हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू बेड और अ मैट्रेस, कम अलॉन्ग, यू नो I'll try and negotiate a good deal for you. I'm sure the owners will listen to me. पहले भी मैं इनके स्टोर में जा चुकी हूँ इस तरह से रिपोर्टिंग करने के लिए एंड इस बार उन्होंने वापस मुझे बुलाया है, तो दैट मीन्स दे आर हैप्पी विद मी, यू नो। एंड व्हेन समवन इज हैप्पी विद यू, यू कैन टेल देम दैट यू नो यू शुड लिसन टू मी, सो आई कैन डेफिनेटली नेगोशिएट अ गुड डील फॉर यू। आप जरूर आना इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू बेड और अ मैट्रेस टू NZ Beds मानिकाओ सुपर सेंटर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और थोड़े और मीठे मीठे गानों का मजा लेते हैं रेडियो तराना पर।

0: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
2: केएमबी कंस्ट्रक्शन को अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप घर बिल्ड करवाने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ रेनोवेशंस करवाने हैं अराउंड योर हाउस। वेल, आपका काम समय पर हो जाएगा और सही बजट में। ये नहीं कि आपको पहले कोई प्राइस दिया जाए और फिर धीरे धीरे धीरे उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती जाएँ और फिर आपको कहा जाए भाई अब आपका बिल इतना बन गया है घूम फिर कर। इस तरह के शॉक्स आपको नहीं मिलेंगे। इट विल बी अ नाइस स्मूथ जर्नी ऑफ गेटिंग योर हाउस बिल्ट और रेनोवेटेड विद केएमबी कंस्ट्रक्शन। आप भूपेंद्र जी को कांटेक्ट कर सकते हैं 021-874-871 या इनकी वेबसाइट देख सकते हैं kmbconstruction.co.nz। बड़े यूनिक आर्टिस्ट को आजकल हमारी टीम ढूंढकर ला रही है स्टार ऑफ द वीक में फीचर करने के लिए। लास्ट वीक म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण के गाने हमने सुने, इस हफ्ते म्यूजिक डायरेक्टर्स दिलीप एंड समीर सेन के गाने हम सुन रहे हैं और उसी बहाने से कुछ ऐसे गाने सामने निकल के आ रहे हैं जो बड़े समय से नहीं सुने हैं, जैसे ये गाना जिसे कुणाल गांजा वाला ने गाया है। अभी उनकी आवाज में एक और गाना हमने थोड़ी देर पहले सुना, एंड हियर्स अनदर वन संग बाय कुणाल गांजा वाला ऑन द म्यूजिक ऑफ दिलीप एंड समीर सेन।
3: I don't know what it is. Just can't. I just can't.

0: Radio Tarana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods. Good afternoon. Studio ki ghadi mein dopahar ke 3 baj chuke hain.
2: This is Tarana News.
3: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. एक व्यक्ति जिन्होंने एंटी इंडियन ग्राफिटी जिसमें उन्होंने किल ऑल इंडियन पेंट कर दिया था ने पुलिस को बताया है कि वे नशे में थे और उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं. 61 वर्षीय आरोपी को मैनेकाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले शुक्रवार को पेश किया गया. पपटोए सेंट्रल स्कूल के सामने उन्होंने किल ऑल इंडियन ग्राफिटी स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया था. इंस्पेक्टर डेव क्रिस्टोफर्सन का कहना है कि इस तरह का एक मामला है तथा वे आश्वासन देना चाहते हैं कि इस घटना से इलाके के रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है. आरोपी ने पिछले हफ्ते अदालत में इंटेंशनली डैमेजिंग अ फुटपाथ वाले दो चार्जेस को स्वीकार कर लिया है जिसके लिए उन्हें 3 महीनों की कैद की सजा या $2,000 का जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही बीइंग ऑफेंसिव इन अ पब्लिक प्लेस वाला एक मामला उनके खिलाफ दर्ज है जिसके लिए $1,000 का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 10 अप्रैल की मध्य रात्रि को आरोपी को पपटोए में सेंट जॉर्ज स्ट्रीट पर जाते हुए देखा गया था. उनके हाथ में रेड स्प्रे कैन था. उन्होंने पपटोए सेंट्रल स्कूल के व्हीकल एंट्रेंस पर किल ऑल इंडियंस स्प्रे पेंट कर दिया था. उन्हें कुछ लोगों ने देख लिया था जिसके बाद में वे वहां से भाग गए थे. पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली थी जब उन्होंने पुलिस को बताया था कि स्प्रे पेंट कैन को उन्होंने अपने पड़ोस के आंगन में फेंक दिया है. उन्होंने ये भी बताया कि वे उस समय नशे में थे और उन्हें ये नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं. उन्होंने पर्मनेंट नेम सप्रेशन के लिए मांग की है. उन्होंने अदालत को बताया कि अगर उनकी पहचान दे दी जाती है तो इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है. एक और जबकि कम लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं वहीं डिवोर्स रेट में बढ़ोतरी देखी गई है. स्टेट्स एनजेड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 17,481 शादियां हुई. 2024 के 18,033 के मुकाबले ये 3% कम है. 1997 के बाद से ही मैरिज रेट में काफी गिरावट देखी गई है. वहीं आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 7,887 डिवोर्सेस हुए 2024 के 7,497 के मुकाबले 5% ज्यादा है. देश में 11 हफ्ते के एक बच्चे की मौत में जांच के बाद में कोरोना ने पाया है कि बच्चे के माता पिता हेल्थ सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं कर रहे थे. इस कारण से बच्चे को एंटीनेटल और पोस्टनेटल के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया. अजारिया लेवी की मौत साल 2023 में वाइकाटो के माता में हो गई थी. वह 11 हफ्ते 4 दिन के थे जब उनकी मौत हो गई. उनके माता पिता जिनकी पहचान अरियाना और एलन लेवी के नाम से की गई है ना तो बच्चे को एंटीनेटल और न ही पोस्टनेटल केयर के लिए लेकर गए थे. उनका जन्म बिना किसी मिडवाइफ के घर पर हुआ था. भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की पवित्र तीर्थ यात्रा 2026 कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन के सहयोग से जून से अगस्त के बीच में आयोजित की जाएगी. कुल 1000 तीर्थ यात्री 50-50 के समूह में यात्रा कर सकते हैं. दो मार्गों पर उपयोग विदेश मंत्रालय के बयान से काठमांडू का रुख स्पष्ट हो गया है. बयान में कहा गया कि सरकार ने राजनयिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों का ध्यान अपनी चिंताओं की ओर आकर्षित किया है. इस बात को दोहराया कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और दोनों देशों से आग्रह किया कि वे वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि चाहे वह सड़क निर्माण हो सीमा व्यापार हो या धार्मिक तीर्थ यात्रा नहीं करें. फिजी में और एम्यूनिशन मिलने के बाद में पुलिस की चिंता बढ़ी है. नंबोआ टॉप लाइन बस स्टॉप पर स्टूडेंट्स ने 13 राउंड्स एम्यूनिशन देखा था. पुलिस ये पता कर रही है कि क्या ये एम्यूनिशन सेना की है. आपको बता दें कि 21 से 26 अप्रैल के बीच में जो एम्यूनिशन मिले थे उसे मिलिट्री ट्रेनिंग से जोड़ करके देखा जा रहा है. फिलहाल सेना के प्रमुख मेजर जनरल चोने कलोनोवाई ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि देश में कुछ लोगों ने गैर कानूनी रूप से अपने पास में बंदूकें रखी हुई है. बार्सिलोना को एल क्लासिको टाइटल जीतने के लिए बस रियल मैड्रिड के साथ में मैच ड्रॉ करना होगा. बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में नाउ कैंप में मैच खेला जाना है. वैसे रियल मैड्रिड ने आज सुबह हुए मैच में एस्पेनोल को 2-0 से हरा दिया. विनिसियस जूनियर ने इस मैच में 55th और 66 मिनट में 2 गोल्स बनाए थे. फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गई है. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आज सुबह लिवरपूल को 3-2 से हराया. इस जीत के बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। उसके पास में 35 मैचेस के बाद में 64 पॉइंट्स है। लिवरपूल के पास में 58 पॉइंट्स।
0: बोर्ड,
4: उदास हो,
0: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
4: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
0: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
4: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
0: ओनली ऑन रेडियो

0: with Neha. Chill with Neha.
1: गुड आफ्टरनून लिसनर्स, रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा. स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का आज सोमवार की दोपहर के इस प्रोग्राम में. 4th of May है आज और शो के इस आखिरी आवर में, जबकि हमारी आज थीम चलती आ रही है मीठे मीठे गानों की, तो इस आवर की शुरुआत में ही मैं एक ऐसी आवाज में आपको 3 गाने बैक टू बैक सुनाने वाली हूं जिससे ज्यादा मीठी आवाज आई डोंट थिंक आज तक बनी है, और वो आवाज है ऑफ द वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी. लता जी के 3 बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैंने पिक किए हैं. जब आप इन गानों को सुनेंगे तो समझ जाएंगे किस तरह के ये गाने हैं. सिमिलर टोन है तीनों गानों का, एक ही जॉनर के आप इन्हें कह सकते हैं. आई एम नॉट श्योर हाउ टू डिस्क्राइब, बट वेन यू विल हियर देम यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग. तो लता जी की आवाज के साथ ही इस आवर की शुरुआत करते हैं और आगे और भी मीठे मीठे तरानों का मजा लेते रहते हैं राइट हियर ऑन योर फेवरेट रेडियो तराना.

0: स्पेशल विद नेहा।
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।

to win one of the 15 $500 cash prize. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. T's and C's apply. डीजी सेल के साथ आप भी इस मदर्स डे को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना सकते हैं. एक तो ऑफकोर्स अपनी मम को आप सरप्राइज कर सकते हैं. इफ शी इज इन द पैसिफिक आप उनको एक $20 या उससे ज्यादा का फोन टॉप अप भेज सकते हैं या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर करें एंड ऑटोमेटिकली आपका नाम चला जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइजेस. हाउ एक्साइटिंग इज दैट. तो मम को भी गिफ्ट मिल जाएगा और इन रिटर्न वैसे भी माँ की दुआएं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, यू नो, बहुत स्ट्रांग होती हैं. तो माँ की दुआ से आप शायद जितना भेजेंगे उससे कई ज्यादा वापस पा पाएंगे. $500 कैश शायद आप जीत जाए, यू नो, 15 कैश प्राइजेस है गिव अवे करने के लिए. तो ड्रॉ में आपका नाम जा सकता है. आप जरूर डीजी सेल का ये टॉप अप या $300 कैश भेजिएगा इनके पार्टनरिंग वेबसाइट से इनटू अ माय कैश वॉलेट. ओके, सो डीजी सेल की ये भी एक्साइटिंग प्रमोशन चल रही है. और क्या कुछ चल रहा है? वेल, ऑफकोर्स मदर्स डे के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं. मदर्स डे इसी संडे को आने वाला है, तो आई एम श्योर आपने भी अपनी मम के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर लिया होगा. एंड ऑफकोर्स मदर्स डे के सॉन्ग्स भी हम आपको साथ साथ सुना रहे हैं. लास्ट वीक से ही मैंने आपको काफ़ी सारे प्यारे प्यारे गाने सुनाने शुरू कर दिए हैं और इस बार मदर्स डे जबकि आने वाला है तो ये ट्रैक एंजॉय करते हैं शो में.

0: अपडेटर दिलीप और समीर सैन
1: ब्रॉट टू यू बाय KMB कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748711 पर।

0: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: Kashish Foods की ओर से घड़ी का समय आप मिला लें। नमस्ते। इस समय हमारे स्टूडियोज में 4 बज चुके हैं।
5: This is Tarana News.
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। 6 स्कूलों में फैसिलिटी अपग्रेड्स के लिए सरकार ने 56.6 मिलियन डॉलर्स की राशि देने की अनाउंसमेंट की है। यह अनाउंसमेंट आज एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर क्रिस बिशप ने की है। ये पैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ओर जो 2 बिलियन डॉलर्स दिए गए हैं उसमें से दिए जाएंगे। जिन 6 स्कूलों को ये राशि दी जाएगी उनमें नॉर्थलैंड के कैरीकेरी हायर स्कूल, जहां पर 12 रिप्लेसमेंट क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, ब्राउन्स बे में पाइन हिल स्कूल जहां पर 3 रिप्लेसमेंट क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, वेलिंगटन के हट इंटरमीडिएट में 14 क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, नेटोने पार्क स्कूल वेलिंगटन में 7 नए क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, कैंटरबरी के एशबेटन इंटरमीडिएट में 8 नए रिप्लेसमेंट क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, जबकि साउथलैंड के मोरोवा वाई कॉलेज में 8 नए क्लासरूम्स का निर्माण किया जाना है। इन स्कूलों में काम अगले 6 महीनों में शुरू होगा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर डेविड सीमो का कहना है कि ईरान युद्ध के बीच में कीमतों में वृद्धि एक कठिन वास्तविकता यानी कि रियलिटी है और न्यूजीलैंड को इससे यथासंभव बेहतर तरीके से निपटना होगा। उनकी यह टिप्पणी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि एनर्जी की बढ़ती लागत के कारण से शिपिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मास्क ने न्यूजीलैंड के भीतर इंपोर्ट वस्तुओं के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट पर 27% फ्यूल से चार्ज लागू कर रहा है। डेविड सिमो का कहना है कि दुर्भाग्य से पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों को इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में माइटिटेन ने घोषणा की है कि प्लास्टिक गटरिंग मेकर माली ने अपने प्राइसेस को 20% से बढ़ा दिया है। क्राइस्टचर्च में चाकू से धमकाने के बाद में एक व्यक्ति की गाड़ी छीनने के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि कल लिनवुड के बाकली रोड पर 7:50 PM यह घटना घटी। चोरी की गाड़ी कल 9:25 PM देखे जाने के बाद में रोड स्पाइक काम में ला करके उसे रोका गया। पुलिस का कहना है कि कुछ दूर तक चोरी की गाड़ी का पीछा करने के बाद में बेन साइड में इस गाड़ी को रोका जा सका है। 5 युवकों पर कई चार्जेस लगाए गए हैं। घरों में लोहे के ग्रिल और प्लास्टिक की जालियां सुरक्षा और सुविधा के खातिर लगाई जाती है, लेकिन दिल्ली के विवेक विहार में हुए अग्निकांड में यही ग्रिल और जालियां मौत का जंजाल साबित हुई है। इनके कारण लोगों को भीषण आग से भागने का रास्ता नहीं मिला और वो जिंदा जलकर मर गए। काफी मशक्कत के बाद में दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच करके ग्रिल काट करके कुछ लोगों को बाहर निकाले, लेकिन घर के पीछे की तरफ गलियां और बंद रास्ते रेस्क्यू अभियान में लगातार रुकावटें पैदा करते रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज चंद ही घंटे का समय अब बचा है। 4 मई को लगभग दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि बंगाल में अगली सरकार किसकी बन रही है। क्या ममता बनर्जी चौथी बार वापस सत्ता में आ रही है या फिर भाजपा पहली बार जीत दर्ज करेगी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने भाजपा की जीत का दावा किया है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने अपना पोल जारी नहीं किया है। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने एग्जिट पोल न जारी करने की वजह बताते हुए कहा कि लगभग 70% वोटर्स ने सर्वे करने गए लोगों से बात करने से मना कर दिया। नसीनू में लंगेरे ब्रिज पर पुलिस रोड ब्लॉक पर गाड़ी न रोकने और एक पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारने के आरोप लगे 3 में से एक आरोपी को आज नसीनू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों उस गाड़ी में सफर कर रहे थे जिन्हें पुलिस चेक पॉइंट पर गाड़ी रोकने के लिए कहा गया था, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस का कहना है कि 40 वर्षीय संदिग्ध को घटना में चोट लगी थी, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और आज नसीनू मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इस बीच जिस महिला पुलिस ऑफिसर को चोट लगी थी उनका इलाज अभी भी किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि जिस गाड़ी से उन्हें टक्कर मारी गई उसमें ड्रग्स लेकर जाया जा रहा था। महिला पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर फॉर डिफेंस पीओ तिकुंदुवंदुआ की बेटी बताई गई। विमेंस ए लीग मुकाबले में वेलिंगटन को पहले लेग के सेमीफाइनल मैच में ब्रिस्बेन रोवर से उसके होम ग्राउंड में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब ब्रिटेन सेमीफाइनल मैच इसी रविवार को 2:30 बजे से वेलिंगटन के पुरेरुआ में खेला जाएगा। इस बीच ऑकलैंड एफसी ने एलिमिनेशन फाइनल मैच में मेलबर्न सिटी को पेनल्टी शूटआउट में 7-6 से हरा दिया। फुल टाइम एक्स्ट्रा टाइम तक मैच 1-1 गोल से बराबर था। अब सेमीफाइनल में ऑकलैंड एफसी का सामना एडिलेड यूनाइटेड से इसी शनिवार को होगा।
2: Turn a driver.

0: वीकेंड के बाद शर्मा जी आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। आई होप आपका वीकेंड अच्छा बीता होगा, आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया होगा और अभी उसके बारे में सोचोगे और बाद में चलकर उसके बारे में जो अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं वो सब ताजा करोगे। लेकिन आइए अभी एक और हफ्ते की शुरुआत करने के लिए हम आ गए हैं और अभी से लेकर 7 बजे तक आपके साथ में हम ही रहेंगे। लेकिन सबसे पहला वाला जो सेगमेंट होता है उसी के साथ आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Kashish Atta, 100% Chakki Fresh Atta, now available in all stores nationwide.
0: Okay, weekend में शायद आप shopping करने के लिए गए तो Kashish वाला product आपने देखा भी होगा, शायद खरीदा भी और try भी किया, and you can vouch for it. अभी से लेकर 5 के बीच में Captain की collection से बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन गानों से आपका मनोरंजन हम करवाएंगे।

0: काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के लिए आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं। और इडुवे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
1: Drawing inspiration from urban communities around the world,
2: we present Big O Toy Toy, a brand new urban development in Papa Toy Toy. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
1: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
2: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoytoy.nz.
1: That's PIKOTOETOE.NZ।
3: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
4: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
3: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल्ला लीगल सर्विसेज, फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz।
1: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरो कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स,
5: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
6: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
7: ऑकलैंड सिटी सेंटर से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 24 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी 20 मिनट्स, सदर्न मोटरवे मैनिकाउ 33 मिनट्स और एयरपोर्ट 26। वेलिंगटन सिटी सेंटर से पुरुरुवा सिटी सेंटर 20 मिनट्स, स्टेट हाईवे 2 से लवाहट सेंट्रल 20 मिनट्स, इस्बोन 35 और एयरपोर्ट 21।
6: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ $15,500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।

0: with Tarana Life with us on our Instagram handle, Radio Tarana.
1: बस बजना चाहिए गाना, बस बजना चाहिए गाना, अरे गाना गाना गाना.
2: Right, बस बजना चाहिए गाना.

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
1: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
2: IKEA.
0: India jana hai. तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
3: हर तरह का इलाज करवा के देख लिया पर ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही।
4: तो डॉक्टर अजीत के पास गई, उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर देखो।
3: आयुर्वेदिक वो काम करता है?
4: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
3: पर यह सुरक्षित तो है ना?
4: सिर्फ सुरक्षित नहीं, यह तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
0: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurda.com।
5: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
6: होम ऑफ द नंबर 1 कशिश बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन, सॉफ्ट और एरोमेटिक। अब सबके किचन में प्रीमियम बासमती का ऑथेंटिक टेस्ट।
7: रास्ते बिजी होने लगे हैं। नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 26 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मैसी 19 मिनट्स, सदर्न मोटरवे मैनिकाओ 36 मिनट्स और एयरपोर्ट 26, वेलिंगटन सिटी सेंटर से परिरुवा सिटी सेंटर 22, स्टेट हाईवे 2 से लवाहट सेंट्रल 22, इसबोर्न 35 और एयरपोर्ट 21।
6: क्वालिटी जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चूज कशिश बासमती राइस फ्रॉम कशिश फूड। ईट बेटर, लिव बेटर। अब लीडिंग स्टोर्स में अवेलेबल अक्रॉस न्यूजीलैंड।
8: प्लान बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी में भी, काम पर भी और क्लासरूम में भी, बच्चों के लिए भी। अभी देखा जाए तो उनके जो असेसमेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कब समय पर ख़त्म करें, कुछ चेक पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और किसी के साथ डील बनाते हो तो भी नो यू से कि ओके आज शाम हम निकल रहे हैं वॉक पर या काम पर जा रहे हैं और अचानक से आपने अपना प्लान बदल दिया, इजंट इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल समवन एल्स कि हाँ अब ये नहीं होने वाला है बॉस, यू नो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ टेंशन समटाइम्स। ओके, अभी मैं बैठ कर सोच रहा था, आज मंडे है, आज म्यूजिकल जाएगा 5 बजे के बाद, ट्यूसडे रोमांटिक गाने आपके लिए हम लेकर आते हैं और वेंसडे को चैट एंड चाय करते हैं। हमें कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातें करनी है, उनका भी प्रोजेक्ट कुछ चल रहा है एंड दे नीड टू डू सम पब्लिसिटी ऑल्सो, एंड आई सेड यस यू कैन कम डाउन टू माई रेडियो शो। ओके।

सैटरडे 9 मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजे बेड्स मानिका सुपर सेंटर स्टोर और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड। ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई। एनजे बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस। और 9 मई को मिलते हैं इनके मानिका सुपर सेंटर वाले स्टोर में एट द कॉर्नर of Lambie Drive and Cavendish Drive. Yes, sir.

0: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
1: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM
0: 378 RRE Moore Road रामारामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
1: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
0: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
2: थ्री बॉयज वन गर्ल एंड दिस अल्टीमेट सैटरडे नाइट। स्पाइस अप योर सैटरडे नाइट विद द बॉयज। सैटरडे नाइट हंगामा विद डीजे शलीन।

0: बॉक्स बजना चाहिए गाना।
1: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। कशिश आटा 100% चक्की फ्रेश आटा, नाउ अवेलेबल इन ऑल स्टोर्स नेशनवाइड।
2: अभी हम विंटर के करीब आ रहे हैं, सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ये नींबू, मैंडरीन और साथ में टेंजरीन और जो भी है, लाइम वगैरह, लेमन, ये सब काफी हो जाएगा सीजन में। और आपने भी देखा होगा, आई गो ऑन बाइंग लाइम, और अभी लाइम का दाम कम है बॉस, एंड इट्स सो नाइस, है ना। तो क्या मैं यूज करता हूँ वो लाइम, वो अलग बात है बॉस, वीकेंड से बाहर अभी हम निकले हैं। लेकिन ऑरेंजेस, ये सब जो है विटामिन सी देते हैं, एंड देखो ऊपर वाले की करिश्मा इसको हम कहेंगे, कि कहते हैं कि विटामिन सी की जरूरत पड़ती है और विंटर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और विंटर में ये जो चीजें जिसकी जरूरत पड़ेगी आपके बॉडी को, वो ज्यादा ही सप्लाई में होता है जस्ट नेचुरली। तो यस, आज नेशनल ऑरेंज जूस डे भी है, एकदम फ्रेश और वो जिसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते हैं, वैसा वाला ट्राई करें आप, इट्स सच अ नाइस थिंग। ओके, ये आज के लिए है। और कभी कभी तो वीकेंड में और शाम को जो लोग नींबू पानी पसंद करते हैं पीना, तो उसमें ये ऑरेंज जूस एकदम एकदम वो नहीं रहेगा, पवित्र पीवा नहीं रहेगा, उसमें थोड़े से इम्प्योरिटीज भी मिला दिए जाते हैं, आइडियाज स्पेशली लेडीज ऐसा करती हैं। ओके okay, तो अभी आज आप भी ट्राई करें, अभी जब सीजन में रहेगा ऑरेंजेस और साथ में और भी ये सिट्रिक फ्रूट्स, उसका भी इस्तेमाल आप करें, एकदम करें। और जब गर्मियों का सीजन होगा, जो फ्रूट्स तब मिलेंगे, तब उनका भी यू नो इस्तेमाल। इट नेचर गिव्स अस थिंग्स, और दाम भी तब कम हो जाए जब अबंडेंस सप्लाई में हो जाए तब। अभी आई कुछ गाने और सुनवाते हैं, दिलीप सेन, समीर सेन इस सप्ताह के कलाकार हैं, आज सुबह से उनके गाने एंड ऑफ आवर आपको हमारे साथ ही सुनवाते आ रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करूंगा थोड़ी देर में।

0: ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सा गाना है। और यहाँ मैं रोक रहा हूँ, आप गाली भी मुझे दोगे। इस गाने को मैं कोशिश करता हूँ बाद में पूरा का पूरा आपको सुनवाने का। जस्ट रिमेम्बर, आज मंडे है और बातें करनी है उधर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के असीम से भी। असीम मेरे भाई, आपका स्वागत है।
1: गुड इवनिंग सतीन जी, कैसे हैं आप?
0: एकदम मजे में, एकदम मजे में। वीकेंड अच्छा गया आपके लिए भी?
1: बिल्कुल, वेदर अच्छा था सतीन जी, और काफी लोग जो इंटरेस्ट रेट चढ़ रहे हैं उसके वजह से जो बात करना चाहते थे उनसे मुलाकात हुई, और उनको हमने उनके लोन की जो परिस्थिति थी और उनकी जो फाइनेंशियल या पर्सनल सिचुएशन थी उसके अनुसार उनको हमने गाइड किया, तो अच्छा लगा लोगों से मिलके और उनकी जो समस्या था उसको दूर करके।
0: आई लाइक इट कि नो मंडे से फ्राइडे के बीच में काफी लोग काम पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, दोनों साथ में नहीं निकल पाते, तो वीकेंड में ये सुविधा आपका है कि वीकेंड में भी आपके ऑफिस खुले होते हैं तो पीपल कुछ कुछ आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। एंड आई लव इट, जब फर्स्ट मुलाकात मेरे अजय कुमार भाई से हुई थी, जिस तरह से वो एक ब्लैंक पेपर उठाते हैं और अपना वो जो इंक नो टॉप वाला पेन निकालते हैं और फिर उसके बाद वो जो कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, वो देखकर लोग समझ जाते हैं कि हाँ, दिस गाय मींस बिजनेस। और आप सभी को उसी तरह से उन्होंने ट्रेन कर रखा है। लेकिन अच्छा, काहिंगा ओरा वाला फेस्ट, जो कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया और फेस्ट होम खरीद लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यू नो कभी कभी कुछ लीव पर जाना पड़े, इनकम आपका फ्लैक्चुएट होने लगे, तो उसमें शायद अपना जो लोन है लोग भली भांति सेविस नहीं कर पाए, तो इसमें यू कम टू रेस्क्यू आई बिलीव, उसमें भी लोगों को यू नो वहां पर शहंशाह की तरह खड़े हो बचाने के लिए, गाइड करने के लिए।
1: हाँ बिल्कुल सतीन जी, हम देखते हैं कि जब फर्स्ट होम बायर काइंगोरा फर्स्ट होम लोन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिकॉज उनका ये पहला एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने कभी पहले लोन के लिए अप्लाई नहीं किया होता, तो कभी कभी उनकी जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी जटिल या मुश्किल होती है, और ऐसे में काइंगोरा का जो इनकम या वैसे असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो काफ़ी मुश्किल है, और अगर आप उस क्राइटेरिया में ये बैंक को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि आप फिट हो रहे हैं या उस क्राइटेरिया के अनुसार जो डॉक्यूमेंट बैंक को चाहिए वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो ये हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले और आपका केस डिक्लाइन हो जाए। और हाल ही में हमारे पास एक मुश्किल केस आया था जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं अपना फर्स्ट होम लेना चाहते थे और काइंगोरा स्कीम में अप्लाई करना चाहते थे, और इसमें जो मिसेस थी वो दो जॉब कर रही थी और एक जॉब उनकी जो थी पार्ट टाइम उसमें वो मैटरनिटी लीव पे थी और दूसरी जॉब में वो जो थे कॉन्ट्रैक्टिंग कर रही थी तो उनके आवर्स जो थे वो फ्लक्चुएट होते थे, तो ऐसे में इनकी जो इनकम कितनी आएगी पूरे साल में आगे जाके उस पे बैंक को डाउट था कि कैसे हम पता करें कि कितनी इनकम आएगी और कैसे फिर उसको लेके असेस करें कि कितना लोन इनको मिल पाएगा। तो ऐसे में हमने इनसे बात करी, इनको काइंगोरा का हमने क्राइटेरिया बहुत क्लियरली बताया और इनको बताया कि हमको इनके एम्प्लॉयर से लेटर लगेगा जहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कब ज्वाइन करेंगे, कंफर्मेशन कितने आवर्स करेंगे, उनका पे रेट उस समय क्या होगा, साथ ही साथ ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब कर रही हैं उससे भी हमको कंफर्मेशन लगेगी कि कितने आवर्स इनके आगे जाके होंगे और वो जो जॉब है वो इनके लिए रहेगी और साथ ही साथ ऑन एवरेज इनकी इनकम कितनी आएगी। तो ये थोड़ा मुश्किल केस था जहाँ पे इनकम जो बैंक देखना चाहता था उसके लिए उसको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए थे, और फिर हमने इनके संग लियाजोन करके और इनकी मदद से इनको बताया कि इनको अपने जो वाइफ के एम्प्लॉयर हैं उनसे क्या बात करनी पड़ेगी और क्या लेटर्स या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और उसको देने के बाद हम बैंक को ये कन्विंस कर पाए कि आगे जाके इनकी इनकम कितनी आएगी और उसकी वजह से इनको जो लोन चाहिए वो कितना मिल सकता है, और वो सब होने के बाद बैंक ने सक्सेसफुली इनको ऑफर लेटर दिया जिसकी वजह से ये जो है अपना पहला घर ले पाए। तो अक्सर लोगों को जो है क्राइटेरिया कभी कभी लेकिन मालूम होता है, कभी कभी मालूम नहीं होता, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस क्राइटेरिया में बैंक उनसे क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है या किस डॉक्यूमेंट या किस तरीके से उनको बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा वो मालूम नहीं होता, और यहीं पे हमारी एक्सपीरियंस काम आती है क्योंकि हमने इस टाइप के केसेस पहले भी करे हुए हैं, और हम जब बैंक से बात करते हैं तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली बैंक को किस कागज की जरूरत पड़ेगी या कैसे वो जो असेस कर रहा है वो कैसे कन्विंस होगा कि उनकी इनकम जो है आगे जाके कितनी आएगी। तो अगर आप काइंगोरा फर्स्ट होम लोन में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि या जानकारी नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे बैंक से बात करें या कैसे अप्लाई करें, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
0: नाइस, आई न्यू कि आपके पास इस तरह के ट्रिकी सिचुएशंस के लिए भी हल है. और क्या कुछ बैंक की अगर जरूरत है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो लोग गूगल करके भी पता लगा सकते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, या हेडक्वार्टर्स इनका जो है यहाँ कॉल करें, या असीम ASEEM@globalfinance.co.nz इनको डायरेक्टली ईमेल करें, या 0925555500 पर आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो. असीम, अब फ्राइडे की शाम और भी बातें आपसे हम करेंगे.
1: थैंक यू सर. थैंक यू.
0: थैंक यू.
2: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट. पापाटोई, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन. दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड, हेंडरसन. ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग.
0: ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 28, मैसी 30, मैनिकाउ 32 और एयरपोर्ट 30 मिनट्स लग जाएगा. और उधर वेलिंगटन में स्टेट हाईवे 1 से पोरिरुआ 26, स्टेट हाईवे 2 से लवाहट सेंट्रल 25, इसबोन 35 और एयरपोर्ट 20 मिनट लगेंगे आपको.
2: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में. DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road. Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall. With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
3: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
4: Ashik Homes Limited, for the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have KiwiSaver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
5: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
6: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
7: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
8: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन.
9: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.

0: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना टाइम चेक,
3: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर लिव बेटर विद कशिश फूड्स।
4: मंडे की शाम घड़ी के समय आप भी मिला लें, नमस्ते, 5 बज चुके हैं।
5: दिस इज तराना न्यूज।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। एक व्यक्ति जिन्होंने एंटी इंडियन ग्राफिटी, जिसमें उन्होंने किल ऑल इंडियन पेंट कर दिया था, ने पुलिस को बताया है कि वे नशे में थे और उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। 61 वर्षीय आरोपी को मैनेकाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले शुक्रवार को पेश किया गया। इस मुकदमे से संबंधित कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अब जारी किए गए हैं। पापटोए सेंट्रल स्कूल के सामने उन्होंने किल ऑल इंडियन ग्राफिटी स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया था। इंस्पेक्टर डेव क्रिस्टोफर्सन का कहना है कि इस तरह का एक मामला है तथा वे आश्वासन देना चाहते हैं कि इस घटना से इलाके के रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। आरोपी ने पिछले हफ्ते अदालत में इंटेंशनली डैमेजिंग अ फुटपाथ वाले दो चार्जेस को स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए उन्हें 3 महीनों की कैद की सजा या $2,000 का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही बीइंग ऑफेंसिव इन अ पब्लिक प्लेस वाला एक मामला उनके खिलाफ दर्ज है, जिसके लिए $1,000 का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 10 अप्रैल की मध्य रात्रि को आरोपी को पापटोए में सेंट जॉर्ज स्ट्रीट पर जाते हुए देखा गया था। उनके हाथ में रेड स्प्रे कैन था। उन्होंने पापटोए सेंट्रल स्कूल के व्हीकल एंट्रेंस पर किल ऑल इंडियंस स्प्रे पेंट कर दिया था। उन्हें कुछ लोगों ने देख लिया था, जिसके बाद में वे वहां से भाग गए थे। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली थी, जब उन्होंने पुलिस को बताया था कि स्प्रे पेंट कैन को उन्होंने अपने पड़ोस के आंगन में फेंक दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वे उस समय नशे में थे और उन्हें ये नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने पर्मनेंट नेम सप्रेशन के लिए मांग की है। उन्होंने अदालत को बताया कि अगर उनकी पहचान दे दी जाती है तो इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एक और, जबकि कम लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, वहीं डिवोर्स रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। स्टेट्स एनजेड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 17,481 शादियां हुई, 2024 के 18,033 के मुकाबले ये 3% कम है। 1997 के बाद से ही मैरिज रेट में काफी गिरावट देखी गई है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 7,887 डिवोर्सेस हुए, 2024 के 7,497 के मुकाबले 5% ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही यूएस के नेतृत्व में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए कई देशों से मदद की मांग की। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वेसल को एस्कॉर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिस पर गौर किया जा रहा है।
7: Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khamenei. But we'll see.
6: नेल्सन में महिला पुलिस ऑफिसर को अपनी गाड़ी से टक्कर मार करके उनकी जान लेने वाले आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। पिछले साल नए साल के दिन 62 वर्षीय साजन लिन फ्लेमिंग की मौत उस वक्त हो गई थी जब उन्हें गाड़ी से टक्कर लगी। वो अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ में सेंट्रल नेल्सन के बक्सटन स्क्वायर में फुट पेट्रोल पर थी, जब 33 वर्षीय हेडन डोनाल्ड जेसन टास्का ने उन्हें कथित रूप से अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। टास्का ने उन पर लगे चार्जेस को स्वीकार नहीं किया है। उन पर मैडा और अटेम्प्टेड मैडा वाला एक मामला दर्ज है। इस घटना में सीनियर साजन एडम रैमसे चोटिल हो गए थे। उन पर कई सर्जरीज कराए गए हैं। तीसरे पुलिस ऑफिसर कंकशन का शिकार हुए थे तथा 2 आम लोग भी इस दुर्घटना में घायल हुए थे। टास्का ने कॉजिंग ग्रीवियस बॉडली हार्म विद रेकलेस डिसरिगार्ड और सेफ्टी सहित डेंजरस ड्राइविंग वाले 3 चार्जेस को स्वीकार नहीं किया है। फिजी सेना ने ड्रग्स तस्करों को कड़ी चेतावनी दी है। लैंड फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ओनिसी वोरो दुवनिसांगा ने ये चेतावनी दी है। लैंड फोर्स सेकंड क्वार्टर परेड में बोलते हुए ब्रिगेडियर जनरल दुवनिसांगा ने चेतावनी दी है कि जो लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं तथा लोगों में डर फैला रहे हैं उन तक सेना बहुत जल्द पहुंचेगी। सेना के कमांडर का कहना है कि वे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म कर देना चाहते हैं जो देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस को आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर और बढ़त मिली है। आज सुबह हुए मैच में गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल लीडर्स पंजाब को एक बॉल के रहते 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 20 ओवर्स में 163 for 9 बनाए थे जिसमें सूर्यांश शेजे के 57 मार्कस टोनिस के 40 रन शामिल है। जवाब में 19.5 ओवर्स में 167 for 6 बनाने के बाद में गुजरात ने इस मैच को जीत लिया। साई सुदर्शन ने 57, वाशिंगटन सुंदर ने 40 रनों का योगदान दिया। जोश बटला ने 26 रन बनाए थे। पंजाब अभी भी 9 मैचों के बाद में 13 पॉइंट्स लेकर के टॉप पर है। गुजरात के पास में 10 मैचों के बाद में 12 पॉइंट्स हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के पास में भी 12-12 पॉइंट्स है। आईपीएल पर जानकारी इंडेलिबल होम्स और चेजर्स की ओर से।
5: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
3: सैटरडे 9 मई को तराना टीम के साथ आए शॉपिंग करने के लिए एट एनजेड बेड्स मानिकाव सुपर सेंटर स्टोर एंड गेट सम एक्सक्लूसिव डील्स जैसे 1 फ्री पिलो विद एवरी परचेज ऑफ एनी बेड।
8: ओके, दिस विल बी एक्साइटिंग है ना। तकिया मुफ्त में मिलेगा आपको। नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 28, मेसी 30, मानिकाव 32 मिनट्स और उधर मोटरवे 20 पुइनुई के करीब बिकॉज ऑफ बॉटल नेक उधर मानिकाव के करीब, इसके कारण ज्यादा ट्रैफिक है और एयरपोर्ट 30 मिनट लगेगा। और वेलिंगटन में अभी देखा जाए तो आपको पोरिरुआ पहुंचने में 25 मिनट्स, लवाहट सेंट्रल पहुंचने में 25 मिनट्स, एयरपोर्ट पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे।
3: मैट्रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $299, द वाइडेस्ट रेंज ऑफ बजट बेड्स एंड हाईटेक बेड्स एट एनजेड बेड्स। तो आए इनके मानिकाव सुपर सेंटर स्टोर में ऑन सैटरडे 9 मई एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव।
9: Tata driver

0: ये तो शर्मा जी को भी नहीं मालूम कि किससे बात करेगा, ये एकदम प्राइवेट वाला कॉला हमारे पास. ओह गॉन, प्राइवेट कॉला हैज गॉन. ओके, एंड पीपल आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन आजकल जिनसे मिलते हैं कि AM डायल पर कब आएगा रेडियो वापस. वही सवाल मेरे जहन में भी चल रहा है. ओके, द प्राइवेट कॉला इज बैक.
1: हेलो,
0: आपका स्वागत. हाय,
1: हेलो,
0: नमस्कार.
1: रेडियो तरोना चलता है कि नहीं?
0: अगर नहीं चलता है तो हम बात कहाँ कर रहे हैं?
1: नहीं तो वैसे रेडियो तो ऑन करते कुछ होता भी नहीं उसमें.
0: बताओ कैसे आवाज आपको सुनाई दे रही है रेडियो पर अभी?
1: जैसे कुछ रिपेयर जो कुछ होता है वहाँ पे.
0: There's something, वो अब बन जाना चाहिए. आप आज कल परसों में शायद नॉर्मल हो जाए. अब ये जब बंद होने से पहले हमने कितने दिनों से बताया था कि रेडियो बंद रहेगा 10-12 दिनों के लिए.
1: हाँ, 16 से 1 तक तो 16 से 1 तक तो चला गया. अब ऑन करते हैं तो इंग्लिश माउरी सब होता, हिंदी होता नहीं.
0: आई नो, अनोइंग है ना.
1: रेडियो ऑन करते हैं तो खाली इंग्लिश माउरी बस.
0: हाँ, अच्छा एक बार बताओ कि आपने कभी फोन पे रेडियो सुना है?
1: फोन तो अच्छा, हाँ सुना है, देखना अभी.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, मतलब आपके पास फोन है अब, वो मोबाइल फोन. ये मुझे फोन पे रेडियो सुना रही है अभी. Just imagine कितने frustrated people होंगे उधर. अच्छा कितने देर तक सुनाएंगे? हेलो हेलो. Okay. इनसे मैंने कहा फोन पे कभी रेडियो सुना, उन्होंने समझा कि मैंने कहा फोन पे मुझे सुनाओ कि क्या बज रहा है. Okay. रोवा ऐप, आई हार्ट रेडियो और साथ में उधर जो भी हो डिजिटल में उस पर अभी चलेगा. एंड आई ऑल्सो एम विद यू फॉलोअर्स. अगर प्रोटेस्ट करना पड़े मुझे खड़ा होकर तो मैं आपके तरफ से प्रोटेस्ट करूंगा. हमारा रेडियो हमें दो.

0: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
0: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
2: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स। तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: माँ।
8: हाँ मेरे लाल।
7: खुश हो ना माँ?
8: बहुत मेरे पुत्र।
7: नागर अच्छा है ना माँ?
8: बहुत बढ़िया है पुत्र।
7: आशीर्वाद दो ना माँ।
8: हमेशा खुश रहे, चढ़ दिया कलावा च रहे हैं मेरे पुत्र।
7: गालियां तो वैसे ही देती रहती है माँ।
8: चुप, फिट्टे मुंह तेरे। ओ ते मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
9: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
10: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
11: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: Yes, Radio Tarrana पर advertising करने के लिए 02196-1386 पर आप call कर सकते हो. Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. $20 top up आप भेज सकते हो. Mum नहीं है तो आंटी, मौसी, दादी जो भी फीजी में है उनके लिए आप टॉप अप जो है यहाँ से भेज सकते हो, या फिर मनी ट्रांसफर भी उनके माई कैश वॉलेट में करवा सकते हो इन द पैसिफिक. फीजी, सामोआ, टोंगा. टोंगा से याद आया रवि भाई, आपको भी हम याद करते हैं. रवि ये पूजा पाठ कर रहे थे वीकेंड में टोंगा से आने के बाद. वाह भाई, आपको हम याद कर रहे हैं. और उमेन दोस्त, इनसे भी मुलाकात हुई तो उनको भी हम याद करते हैं. और साथ ही साथ रामू प्रसाद, इनसे भी मुलाकात हुई सैटरडे को. और द बॉयज आर गेटिंग रेडी टू यू नो एक और सीटिंग के लिए. सो देयर वी गो. और साथ में और भी जितने भी दोस्त थे वहां पर, उन सभी का भी खास स्वागत है. अभी 22 मिनट हो गए हैं इस समय हमारे स्टूडियोज में 5 बजकर. और नेक्स्ट वाला गाना अगर आप सुनना चाहते हो, कोई खास अपने पसंद का गाना और मुझे अभी बताना चाहते हो, एंड यू कैन कॉल मी नाउ 3031386 पर. आई'd लव टू हियर फ्रॉम यू. और आपका जो गाना है इंस्टेंटली मैं पेश करने की कोशिश करूंगा. ऑकलैंड थोड़ा क्लाउडी ही था. 17-18 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर था आज, लेकिन इससे बेहतर वेदर देखा जाए तो गिस्बन में. और साथ ही साथ इफ वी लुक एट इट और भी जगहों पर, नेपिया, मास्टरटन और साथ में ब्लेनहम, फुल ऑन धूप खिली हुई है. Okay, जय हो टू मेरे भाई, आपका स्वागत है.
2: जय सियाराम मेरे भाई, कैसे हैं?
1: आपका जिक्र हुआ था, मैं ठीक हूँ. आपका जिक्र हुआ था सैटरडे को. अब लोग भी सोचे कि सूरज किधर से निकला या फुल मून किधर गया कि मिस्टर शर्मा सैटरडे को रामायण में बैठा था.
2: देखो भाई, आप बहुत नेक इंसान है, आप पूजा पाठ में हमेशा जाता है. कितना जगह आपसे मिला है.
1: ओह यस यस, आई ट्राई टू.
2: झूठे गर्मी में से क्या अफवाह फुलाए, आपके ऊपर हवा उड़ाए कि सत्येन शर्मा खाली पार्टी करे. सत्येन शर्मा इज स्पीक एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी प्लेस ब्रदर.
1: यो, जब पार्टी का टाइम होता है तो पार्टी करते हैं, जब पूजा पाठ का टाइम होता है तो वो भी कर लेते हैं हम बॉस.
2: तो सत्येन शर्मा का स्लोगन है, यू फिक्स योर टाइम, आई विल फिक्स माय डेट.
1: अभी अभी मेरा वो शर्मा ट्रेवल्स वाला वेबसाइट बन रहा है, यू नो, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन वाला स्लोगन, ये कौन यू नो बायलाइन होना चाहिए, कौन सा क्या है, कॉन्टेक्ट कैसा है, ईमेल कैसा होगा, ये काम चल रहा है. तो मैं आप वाला यू नो यू कैसे वो मैं लगा दूं उसमें क्या, यू फिक्स योर टाइम,
2: यू फिक्स योर टाइम, आई विल फिक्स माय डे, एनीवेयर, एनी प्लेस, ब्रो,
1: एनी टाइम. अच्छा, रामू प्रसाद से आप मिले हो कि नहीं? वो सो का प्लेयर,
2: वो हमार भैया है यार.
1: हाँ, आप दोनों एक तरह लगते भी हो. या वही बात है ना, उस तरह के पहले के जमाने के प्लेयर्स जो है अभी भी हमारे साथ हैं कुछ कुछ, यू नो, जैसे रमेंद्र दत्त, यू नो, जब नंदरोंगा में खेलते थे रिमेम्बर, अगर कोई फ्री किक मिल गए गोल पर वो बॉक्स से बाहर, तो कीपा पहले पीछे घूम जाए गोल, ताके नहीं, बोल कौन मारे, उधर घूम के ताको.
2: यही बात तो है.
1: Yes. I know. We've got some of those veteran players are still around. तो यार उनको भी शाउट आउट करते हैं. कोई गाना बताओ आज मुझे अच्छा वाला भाई.
2: आज जीते जागते कुछ देश की धरती कुछ दो मेरे
1: मेरे देश की धरती सोना उगले हे भगवान.
2: बहुत धीरे के लिए सुनावला है.
1: ना ना ना, अभी मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाऊंगा जिस गाने को इतना बार हम बजाना चाहते हैं कि इतना बजाएं कि सब बजाएं, और फिर उसके बाद ये गाना टॉप 100 में, टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 5 में या टॉप 3 में आ जाए ब्रो.
2: चलो यही बात है ना,
1: अभी सुनाता हूँ.
2: उसके कोई बीट नहीं से करे, डू व्हाट एवर यू कैन डू ब्रदर.
1: You fix your time, I fix my day.
2: You fix your time, I fix my day.
1: चलो चलो मेरे भाई,
2: चलो मेरे भाई.
1: थैंक यू. और गाना वो है जो अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको हिट करना है बाय हुक ओ बाय क्रुक. सुनिए.

0: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी

0: आप ऐसे वॉक पे निकलो शाम को या फिर वीकेंड में, जब मैं निकल रहा था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं गानों को सुनते सुनते, ऐसे मैं निकलता था तो आई यू नो हर्ड की अभी स्पॉटिफाई में लेटेस्ट सॉन्ग्स में बहुत सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गाने जो हैं ये रिलीज हुए हैं. सो यप, अब ये जो गाने हैं इट्स ओनली द फिफ्थ मंथ जो अभी शुरू हुआ है, साल एंड होते होते और भी बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन गानों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक और गाना पुराना गाना है लेकिन अंदाज नया किया गया है. आई थिंक कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म बहुत जल्द आप देख सकोगे. आयुष्मान खुराना, यूजुअली उनकी फिल्में अच्छी चलती हैं, उनके ही फिल्म से इस गाने को आज शाम आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. मेरे जाने के बाद में आई होप हेमंत इज कंसिस्टेंट टू, वो अपना शो करते हैं है ना. अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई साहब मैं कभी कभी कह देता हूं कि मेरे जाने के बाद ये रहेगा और फिर सरप्राइज समवन एल्स इज देयर इन द स्टूडियो. तो यप, हेमंत हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट, अपना शो कई सालों से वो लेकर आ रहे हैं और वो जो प्रोग्राम है एवरी मंडे को मेरी पसंद लगभग 25-26-30 साल से चल रहा है. मिस्टर सिंह, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, कैसे हो?
1: एकदम आनंद में.
0: बहुत दिनों के बाद आपने मुझे कॉल किया, बताओ कहाँ थे आप?
1: अरे हम आप हमारा बहुत बड़ा स्टोरी है, क्या आपसे बतलाऊं.
0: बट स्टोरी एंड में अच्छे से, दैट्स गुड है ना.
1: अच्छा थोड़ा बताएगा कुछ फिर करो.
0: ओके ओके. वेलिंगटन में, जॉनसनविल में वेदर ठीक है अभी?
1: एकदम इतना अच्छा मौसम है कि हम बताता, बरखा तो नहीं है लेकिन पूरा क्लाउडली है, बादल वाला आसमान छाया हुआ है.
0: गुड गुड जी. चलो आज आपने कॉल कर दिया, अच्छा लगा. अभी एक गाना आपको हम सुनवाने जा रहे हैं. अच्छा वो जो गाना मैं बजाने वाला हूँ उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी कुछ और करता हूँ ताकि आपको भी मजा आ जाए. एक गाना ऐसा मैं पेश करने जा रहा हूँ जो जिसमें बहुत सीख भी मिलेगी लोगों को, तो वो गाना पहले सुनते हैं.
1: बात भी करना चाहता था. अच्छा ठीक, मैं बाद में कर लूंगा, शायद गाना बजा दो.
0: नहीं नहीं बताओ क्या बात करेंगे आप.
1: नहीं आप जो हाल चाल के बारे में पूछते थे,
0: हाँ आपने बताया कि बाद में बताओगे.
1: अच्छा बाद में.
0: ना कोई नहीं, बताओ हाल तो ठीक है. चाल
1: नहीं, हाल चाल अच्छा नहीं था. शर्मा जी बताओ, आप ड्राइवर हो? बोलो. हाँ
0: हाँ.
1: और आपको बता दे आपका लाइसेंस नहीं है, खलास लाइसेंस ऑफ हुई है.
0: ये हो गया आपके साथ, ऐसे लगे कि पैर कट गया, हाथ एकदम अपाहिज.
1: तब बताओ क्या होगा. आप सोचो हा? कि बताता उमर, अरे उमर कौन जी यार, IT5 भले अच्छा IT ऊपर हो गया कोई बात नहीं राइट ना. तो हम का जाने कानून, फिर हम जिसके सिखाया लाइसेंस आपका लड़ पोता पोती लोन के.
0: हाँ.
1: लेकिन आज वो लोग हमें ले गए कहीं टेस्ट पे. आप सोचो कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे, और फिर जाकर हम फाइल कर दिया, फाइल हो गया. सोचो आदमी के दिल पे इसे गुजरी, इतना दिन ड्राइविंग करके फिर फाइल हो गया. गुस्सा में वही लाके फिर बनाया दूसरा अपॉइंटमेंट राइट. फिर उसे पोता ले गए, आप सिपोती लेके गई, फिर फाइल कर दी. सोचो हम बोला अच्छा दो से तीन तक हो ही ना तो सीधा आप तीसरा बाहर भी अगर कोई फाइल कर दे तो कैसे रही दिल.
0: आई नो बट हो गया कि नहीं, अच्छा हो गया कि नहीं, बताओ ये बात.
1: हाँ तो आप तो एकदम जानो अच्छा है. फिर चौथा बार नाती ना इस वहां से वो लेके गई तो फिर हाँ फिर वाइफ हो गए. तो वही डिप्रेशन में रहा, उतना दिन ड्राइविंग नहीं किया, कुछ अच्छे लगे. सोचो आपके पास मोटर है, सब कुछ है, जाना आना है, तो कैसे बीती आपको. पर इसीलिए तबियत जरूरत पड़े, डिप्रेशन माफी हो गया शर्मा जी.
0: बट ऑल गुड अब तो ठीक हो गया ना.
1: यह ठीक हो गया, बहुत बहुत खुशी लगा, बहुत ठीक हो गया. आप लोग प्रोग्राम पूरा सुनता हूँ रेडियो सराना के, इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोग कोई तरह से नहीं बंद हुआ. रास्ता मोटर जाता है, मोटर बजे है, वैसे घरे रेडियो पे भी सब कुछ फुल टाइम, बहुत सुंदर कार्यक्रम.
0: लेकिन एक चीज बताओ,
1: धन्यवाद आपने मौका दिया बात करने के लिए.
0: ठाकुर ठाकुर एक बार बताओ आप कितने दिनों बाद फिर से जाना पड़ेगा टेस्ट पे, आप वो चेक करते रहेंगे?
1: दो साल और 2 साल पूरा 2 साल.

0: 那得干活干，
1: 那他哥
0: 你
1: 哥，
0: 三个狗子啷巴的？你这样，那手脚不能给翻呢？
1: But नहीं ठीक है अभी चलाओ but careful रहना यू नो बहुत ही
0: नहीं हाँ नहीं चलाता बहुत कम थी सब लड़का लड़की नातिन पोतिन रहे यही लोग चलाए हम तो वही से जरूरत पड़े तब तो नहीं कम थी ड्राइविंग करता
1: ठीक ठीक ठीक भाई हम हुआ नहीं आपके घर के आसपास जैसे आप मुझसे बताते कि आपको फेल कर दिया मैं वो नहीं सहानुभूति नहीं प्रकट करता मैं कहता गाड़ी भेज दो हमसे
0: हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाला लेकिन हाँ लड़का रोक दी नहीं नहीं पिताजी बोले आपके मोटर ये भी हाइब्रिड है लेक्सस ये भी कोई कंपनी नहीं है ना तो हम बोला अच्छा ठीक है राइट
1: गुड वन चलो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिला है बहुत जमाना बाद आपने टेस्ट किया होगा किसी तरह का
0: अरे सोचो लो 65-70 years के बाद सोचना उतना दिन के बाद फिर टेस्ट पे गया है
1: चलो चलो अभी गाना एक प्यारा सा आपको सुनवाते हैं और जितने भी और हमारे दोस्त हमारे साथ हैं एक और कोई कॉल कर रहा था बटिया आपसे अब हम बाद में बातें करेंगे ओके 8-3-8-9-5 वाला नंबर इससे कॉल आ रहा था ओके नेक्स्ट वाला न्यूज 6 पर रहेगा काम की एक बात आपको हम बताएंगे वो कैप्टन की किताब से ये सेगमेंट जो है ये हम लेकर आते हैं लगभग 6:15 के करीब आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास हुए हैं ये भी आपको हम बताएंगे और साथ ही साथ जो लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं ओके विशाल आनंद आज अपना बर्थडे मना रहे हैं विशाल लॉन्ग टाइम नो सी आपको हैप्पी बर्थडे आपके मम्मी डैडी मिस्टर मिसेस दयानंद की ओर से और साथ में डीजे शालेन और उनके फैमिली की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे विशाल और साथ ही साथ कुछ और दोस्त हैं डीजे आप जिनको जानते हो शायद बेहतर है और इनके साथ में इनके साथ में और भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने जिनका बेहतर है और वो कई भी जीता है किसी ने उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करेंगे आज नेशनल ऑरेंज जूस डे भी है सो यब विटामिन सी की बात हम कर रहे थे चलो एंजॉय कीजिए आज की शाम ये गाना मिस्टर सिंह आपके लिए खासतौर पर

0: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
1: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
0: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
1: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो।
0: क्या स्पेशल है उनमें?
1: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।

0: रखना हो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
3: Auckland and Wellington traffic report.
4: Indelible Homes. Trusted and experienced subdivision and build specialist. Call 0800-233-111.
5: Auckland City Centre, a Constellation Drive, 37 minutes. Northwestern Massey, 37 minutes. Manukau, 48 minutes. Or Airport, 39. Wellington City Centre, a Porirua City Centre, 25. Lower Hutt Central, 25. Eastbourne, 40. Or Airport, 18.
4: Indelible Homes. They specialise in building standalone and terraced houses and provide 10 years master builder guarantee. Built with Indelible Homes.
6: यार मुझे फीजी जाना था।
7: कब जाना है?
6: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
7: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
6: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
7: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
2: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
8: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल। हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.

0: हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 01874871 पर।

0: थप्पड़ लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्हें कहीं अनकहीं हर बात का अंदाजा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना
3: Time check. Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: कशिश फूड्स की ओर से घड़ी का समय आप मिला लें। गुड इवनिंग, ये रेडियो ताराना, मैं हूँ आपका कैप्टन और इस समय हमारे स्टूडियोज में 6 बज चुके हैं।
5: दिस इज ताराना न्यूज।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। अमेजोन ने न्यूजीलैंड में डाटा सेंटर वाले प्रोजेक्ट को रोक दिया है, जिससे कंपनी को $45 मिलियन का झटका लगा है। ये जानकारी अमेजोन डाटा सर्विसेज न्यूजीलैंड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सामने आई है। अमेजोन ने वेस्टगेट में डाटा सेंटर का निर्माण करने के लिए जमीन खरीद ली थी। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री डेम जैसिंडा आर्डेन ने की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि अमेजोन का डाटा सेंटर देश में खोलने का मतलब होगा कि 1000 लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध होगी। अमेजोन न्यूजीलैंड का कहना है कि वह नए सर्वर्स, नेटवर्किंग गियर और लीजिंग कैपेसिटी सहित डाटा सेंटर्स पर ध्यान दे रहा है, न कि अपने खुद के बिल्डिंग का निर्माण करने पर। फ्रीट चार्जेस में वृद्धि की जा रही है। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी एपी म्यूला मैस्क ने कहा है कि वह फ्रीट चार्जेस को 27% से बढ़ाने जा रही है। मध्य पूर्व में जारी संकट की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से मैस्क को यह कदम उठाना पड़ रहा है। ऑकलैंड से पर्थ ऑस्ट्रेलिया जा रही एक फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति पर अन्य यात्रियों को छूने और विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि केबिन क्रू ने उन्हें शराब देने से इनकार कर दिया था। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप लगा है कि वे अपने साथ अल्कोहल ले गए थे, जिसे उन्होंने फ्लाइट में पिया था। उसके बाद में उन्होंने क्रू मेंबर्स से और शराब की मांग की थी। उन्हें नशे की हालत में देखे जाने के बाद में उन्हें और शराब सेव किए जाने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद में उन्होंने अन्य यात्रियों को छुआ था और विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला था। उन पर 1 count ऑफ बिहेविंग इन डिसऑर्डरली मैनर इन अ पब्लिक प्लेस वाले चार्जेस लगे हैं, जिसके लिए उन पर $6,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन पर सिविल एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन 1998 का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है, तथा हर एक चार्ज के लिए $15,650 तक का जुर्माना हो सकता है। न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की मौत मामले में अब दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मृतक न्यायिक अधिकारी के पिता की शिकायत पर दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने इस मामले में जज की पत्नी और साली सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। फिजी सेना ने ड्रग्स तस्करों को कड़ी चेतावनी दी है। लैंड फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ओनिसी वोरो दुवनीसांगा ने ये चेतावनी दी है। लैंड फोर्स सेकंड कोटा परेड में बोलते हुए ब्रिगेडियर जनरल दुवनीसांगा ने चेतावनी दी है कि जो लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं तथा लोगों में डर फैला रहे हैं, उन तक सेना बहुत जल्द पहुंचेगी। सेना के कमांडर का कहना है कि वे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म कर देना चाहते हैं, जो देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वर्ल्ड नंबर वन यानिक सिना ने लगातार 5वां मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मैड्रिड ओपन फाइनल में अलेक्जेंडर वेवरेव को 6-1, 6-2 से 57 मिनट के मैच में हराने के बाद में इस टाइटल को 24 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी इस सीजन में 4 मास्टर्स इवेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, और अब मैड्रिड ओपन टाइटल जीतने के बाद में उन्होंने लगातार 5वें मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है।
5: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
3: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ। और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
2: ऑकलैंड सिटी सेंटर से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 30 मिनट, नॉर्थ वेस्टर्न मैसी 35 मिनट, मैनिकाउ 35 मिनट और एयरपोर्ट 30 मिनट। वेलिंगटन सिटी सेंटर से पोरिरुवा सिटी सेंटर 25, लोअर हट सेंट्रल 25, इसबोर्न 40 और एयरपोर्ट 18।
3: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।
7: Turn a driver.

आज वैसे नेशनल किड्स फिटनेस डे भी है, मैं जाता हूँ देखता हूँ कभी कभी डीजे के घर पर, तो दीवू वो जो है क्या कहते हैं बाबेल वेट्स वगैरह जो है वो दिखाते, दादा ये देखो दादा, फिर उसके बाद जब हाथ वगैरह स्प्रेन किया तो मैंने कहा रुक जाओ बेटा, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ये वेट्स और दुनिया का बोझ उठाने में, ओके और मेरा वो जो मैं देख रहा था कि डंबल्स कहीं मिसिंग है, तो उस दिन मुझे मौका मिला, बहुत हार्डली मौका मिलता है अपने बच्चे के कमरे में जाने का, तो देखा वहां पर रखा हुआ है, बाप रे बाप। तो यप नेशनल किड्स फिटनेस डे, उनको भी थोड़ा सा फिटनेस पर निकाल दें। आई सी समटाइम्स यू नो पेरेंट्स वॉक करते हैं, बच्चों को भी साथ में लेकर चले, चलो मेरे साथ, बीनी वगैरह पहनकर वो भी निकल जाते हैं। अभी शायद अब तो बाहर देखो तो अंधेरा होने लगा है बॉस, तो सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलो अभी आज के दिन इतिहास में जो हुए हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, कैप्टन की किताब से में भी कुछ इंटरेस्टिंग आपको हम सुनवाएंगे। ये प्यारा सा गाना है, इसका मजा लीजिए फिलहाल।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: Har Thursday raat 10 baje se Tarana ke rang roopa ke saath.

0: इंटरेस्टिंग, मैंने स्विच भी नहीं किया, बदला भी नहीं, और अभी जाकर मैंने कैप्टन की किताब से सुना एंड आई सेड यस, हाउ करेक्ट कैन दैट बी। आपने भी देखा होगा वो, मैंने एक मीम देखा था, एक इमोजी फोटोज वगैरह के साथ में मैंने देखा था कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सबसे ज्यादा केयर करोगे, सबसे ज्यादा दिल, वही व्यक्ति आपका दुखाएगा। यू नो, कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी फितरत ऐसी है कि उनका भला होता रहे, भाड़ में जाए दुनिया, उनका काम बनता रहे, तभी हाहा ही रहेगा, अदरवाइज हु रियली केयर्स। और वो तो कभी गलत होंगे ही नहीं, दे आर ऑलवेज राइट।
1: कैप्टन की किताब से
2: आइए सुनते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग सेंसेशनल, कैप्टन की किताब से।
3: दुनिया का कड़वा सच ये भी है कि यहाँ कोई आपके आंसू नहीं देखता, कोई आपका दर्द नहीं देखता, कोई आपकी उदासी नहीं देखता, सब आपकी गलती देखते हैं।
1: कल शाम भी इसी समय कैप्टन की किताब से हम पढ़ेंगे एक और पन्ना।
4: He makes you smile. He keeps you company. He is your captain, Setin Sharma.

0: टुडे इन हिस्ट्री।
1: आज के दिन इतिहास में इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। मैंने ये देखा कि आज ही के दिन वो जो फिक्शनल कलाकार होते हैं शेरलॉक होम्स और प्रोफेसर मोरेटी, इनका निधन आज ही के दिन हुआ। टीवी पर फर्स्ट टाइम वस्त्रहीन लड़की को देखा गया था 1973 में। मैं केवल कितना 1.5 ईयर्स का रहा होगा 1973 में, तो मैंने भी देखा होगा, समझ में नहीं आया होगा कि क्या देखा मैंने। फीमेल न्यूडिटी फर्स्ट टाइम टीवी पर देखा गया था, वो भी यूएस में। तो फिजी में तो बहुत जमाने के बाद हमें नसीब हुई कि हमने टीवी खरीदा। बॉस मार्गरेट थेचर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आज ही के दिन ऐसा हुआ था। और इसके अलावा जनरल स्ट्राइक कहीं पर शुरू हुआ था आज ही के दिन, और फोल्डिंग अम्ब्रेलास को आज ही के दिन इसका आविष्कार किया गया था। नेशनल ऑरेंज जूस डे है, एंटी बुलिंग डे भी है आज। और इसके साथ में जो लोग एकदम पतली दुबली छोटी क्यूट सी होती हैं, पेटीट एंड प्राउड डे भी हैं। ओके, और इसके एकदम विपरीत जो होता है वो भी अपने आप को कहते हैं ना, यू हैव टू बी जैसा है आपका शेप जो भी है। पीपल कैन जज एंड बी रूड, लेकिन आप खुश हैं, आप हेल्थी हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपके मेडिकल कंडीशंस बहुत कुछ है नहीं, देन यू शुड बी हैप्पी। नेशनल मीटिंग अप्रिशिएशन डे, किड्स फिटनेस डे और नेशनल वेदर ऑब्जर्वर्स डे है। कल वाला वेदर कैसा रहेगा अभी नेक्स्ट वाला न्यूज के बाद, ये आपको हम बताएंगे। आज कुछ लोग उधर बॉलीवुड में अपना बर्थडे मना रहे हैं, उनको भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अनंग देसाई को हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। कुणाल बासु और त्रिशा कृष्णन का बर्थडे है। यो त्रिशा, ओके, एनीवेज अभी आइए ये गाना सुनिए और इसके बाद में जन्मदिन की सूचनाएं।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला या बस सीधा टब से खाने का दिल हो, तो इंजॉय करे कशिश नेचुरल योगर्ट, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस। Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
2: New Zealand के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर किए हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505। और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505।
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: तराना पर अगर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको लगता है कि रेडियो पर नहीं होना चाहिए, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। पहले हमारे पास info@tarana.co.ng पर लिखें। अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप info@bsa.govt.ng पर ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी को लिख सकते हैं। वैसे यहाँ तराना पर हमारी कोशिश यही होती है कि सारे प्रोग्राम्स अच्छे स्टैंडर्ड के हों।
4: Auckland and Wellington Traffic Report. Partner with Radio Tirana and reach commuters across Auckland with our Traffic Report sponsorship.
5: Northern Motorway, Constellation Drive, 25 minutes. Northwestern, Massey, 30 minutes. Southern Motorway, Manukau, 35 minutes. Or Airport, 30 minutes. Wellington City Centre, Seporirua City Centre, 20 minutes. Lower Hutt Central, 20. Isbourne, 30. Or Airport, 18.
4: Your brand will feature during morning and afternoon peak hours, ensuring maximum exposure.

आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से दोस्त अपना बर्थडे मना रहे हैं। अगर खिचड़ी वेब सीरीज आपने देखी है उसमें एक कलाकार है अनंग देसाई, आज उनका बर्थडे है, 73 ईयर्स के हो गए हैं। त्रिशा कृष्णन का बर्थडे है, कुणाल बासु आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, और इनके साथ में आज भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ होकर सुरेखा सूद जी मनुरेव में आप हो, आपका बर्थडे है। भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स ने आज आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है। और विशाल आनंद आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, विशाल हैप्पी बर्थडे आपके मम्मी डैडी और साथ में आपकी बहनों की ओर से भी, और साथ में डीजे शालिन और उनके फैमिली की ओर से विशाल आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। इनके साथ में आज टानिया अपना बर्थडे मना रही हैं, टानिया आपको आपकी मम्मी ने बहुत सारा प्यार दिया है, कृति और जिमी और इनके साथ में और भी परिवार वाले जो यहाँ और विदेश में हैं सभी ने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है। इनके साथ में उधर 60 बी रॉबर्ट

शामिल होते रहेंगे और साथ में बेकन बीन्स की ओर से केक भी जीतने का मौका आपको मिलेगा। कल आपका बर्थडे है। info@tarana.co.nz पर अपना मैसेज अभी भेजिए।

0: मैं यमराज हूँ।
1: ओहो जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
0: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
1: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
0: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
2: A good lawyer is recognized for their experience, trustworthiness, and understanding of their clients' legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction. For property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney, and other legal matters, call Schaubner on 021-625-708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
3: मम्मी मम्मी एयरफोन कान माथी निकाल जरा।
4: हैं शू क्यों दिख रहा?
3: अरे केटला वर्ष थी नवू घर करती हती, आपने ले ली तूने इंडेलेबल वाला नवू घर।
4: तू केटला सारो छो दिख रहा।
3: मम्मी नवू घर छे, साचव जरा, बद्दु अहिया वेर विखेर पड़ू छे।
4: तमे जेंजी वाला घड़ी माने काम कराओ छो, हे भगवान।
3: मम्मी
4: घर बनावा वाला नो खूब खूब आभार।
3: धन्यवाद इंडेलेबल होम्स।
2: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलेबल होम्स। फोन 0800-233-111।
5: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
6: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM
5: 378 RRIMU रोड रामा रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
6: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
5: One temple, one community, eternal blessings.
7: किसी चीज की शुरुआत होती है तो खत्म भी होता है। आज प्रोग्राम की शुरुआत हमने की तो इसको खत्म भी करना है। दो और गाने अभी आपको हम सुनवाएंगे और फिर वापस मैं लौट कर आऊंगा न्यूज के उस पार। Did I say news properly? Yeah, news के उस पार वापस हम आएंगे ये बताने के लिए कि कल आपके शहर में वेदर कैसा रहेगा। Remember, आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुए हैं। आज नेशनल वेदर ऑब्जर्वर्स डे भी है, तो चलो हम ऑब्जर्व करके बताएंगे आपको कि कल वाला वेदर आपके शहर में कैसा रहेगा थोड़ी ही देर में।

0: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे.
1: यार मुझे फिजी जाना था.
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे.
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ.
2: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स. इनके पास फैमिली कार्स, एसयूवीज और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं, और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में.
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228.
2: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे.
0: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन NZ Beds, मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर. और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड. ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है. टीज एंड सीज अप्लाई. NZ Beds विद 40 years in business and thousands of happy customers, ये आपको देंगे guaranteed best price. और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले स्टोर में, at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
4: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
5: माँ के प्यार की हदें नहीं होती. अपने बच्चों के सामने इनके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती. जान बसती है इनके हम में और हमारी इनमें. इसीलिए सुबह सुबह उठकर आवाज देती हूँ, सूरज आता होगा अपने वक्त पर. मैं तो अपना सूरज माँ की सूरत में ही देख लेती हूँ. जब आस पास सिर्फ अंधेरे दिखाई देते हैं तो आंख मूंद उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ, तुरंत उनकी आवाज सुन लेती.
6: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे.

0: एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन 1998 का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है तथा हर एक चार्ज के लिए $15,650 तक का जुर्माना हो सकता है। स्पोर्ट्स न्यूज। वर्ल्ड नंबर वन यानिक सीना ने लगातार पांचवा मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मैड्रिड ओपन फाइनल में अलेक्जेंडर वेवरेव को 6-1-6-2 से 57 मिनट के मैच में हराने के बाद में इस टाइटल को अपने नाम कर लिया। 24 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी इस सीजन में 4 मास्टर्स इवेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे और अब मैड्रिड ओपन टाइटल जीतने के बाद में उन्होंने लगातार पांचवें मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व मैनेजर से एलेक्स फर्गसन के बीमार पड़ने के बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिवरपूल के साथ में प्रीमियर लीग मैच से पहले वे बीमार पड़े थे। 84 वर्षीय से एलेक्स फर्गसन 27 सालों तक मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ में रहे हैं। बार्सिलोना को एल क्लासिको टाइटल जीतने के लिए बस रियल मैड्रिड के साथ में मैच ड्रॉ करना होगा। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में नाओ कैंप में मैच खेला जाना है। वैसे रियल मैड्रिड ने आज सुबह हुए मैच में एस्पेनोल को 2-0 से हरा दिया। विनिसियस जूनियर ने इस मैच में 55th और 66 मिनट में 2 गोल्स बनाए थे। फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आज सुबह लिवरपूल को 3-2 से हराया। इस जीत के बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। उसके पास में 35 मैचेस के बाद में 64 पॉइंट्स है। लिवरपूल के पास में 58 पॉइंट्स। गुजरात टाइटंस को आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर और बढ़त मिली है। आज सुबह हुए मैच में गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल लीडर्स पंजाब को 1 बॉल के रहते 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 20 ओवर्स में 163 for 9 बनाए थे जिसमें सूर्यांश शेजे के 57 मार्कस टोनिस के 40 रन शामिल है। जवाब में 19.5 ओवर्स में 167 for 6 बनाने के बाद में गुजरात ने इस मैच को जीत लिया। साई सुदर्शन ने 57, वाशिंगटन सुंदर ने 40 रनों का योगदान दिया। जोश बटला ने 26 रन बनाए थे। पंजाब अभी भी 9 मैचों के बाद में 13 पॉइंट्स लेकर के टॉप पर है। गुजरात के पास में 10 मैचों के बाद में 12 पॉइंट्स हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के पास में भी 12-12 पॉइंट्स है। आईपीएल पर जानकारी इंडेलिबल होम्स और चेजर्स की ओर से।
1: Weather report brought to you by Crookia. Visit crookia.co.nz.
2: तालाब के शहर में वेदर कैसा रहेगा ये देखने का वक्त हो गया। ऑकलैंड में आज ओवरनाइट 15, कल दिन में मैक्सिमम 20 रहेगा। मोस्टली क्लाउडी, एक दो शावर्स कल हो सकते हैं, स्पेशली उधर नॉर्थ ऑफ द सिटी में। नॉर्थ ईस्ट की दिशा से हवाएं चलेंगी। हैमिल्टन के लिए बताया जा रहा है कि वहां पर आज ओवरनाइट 9, कल दिन में मैक्सिमम 19 रहेगा, क्लाउडी पीरियड्स और आफ्टरनून में अच्छा वेदर आपको मिलेगा। और वेलिंगटन में आज रात ओवरनाइट 12, कल दिन में मैक्सिमम 15, क्लाउडी मॉर्निंग रहेगा लेकिन शाम होते होते वेदर भी स्माइल करने लगेगा आप वेलिंगटोनियंस के लिए। क्राइस्टचर्च में आज ओवरनाइट 3, ब्राहो, कल फ्रॉस्टी स्टार्ट होगा, कल दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 16, फोग और क्लाउड सुबह के वक्त दिन की शुरुआत में और बाद में चलकर वेदर ठीक हो जाएगा, शाम तक अच्छी धूप आपको मिलेगी। घर का वेदर ठीक करने के लिए वो 3 डिग्री को 24 पर लाने के लिए अच्छा हीटपम्प लगेगा। हीटपम्प के लिए रिलायंस वेंटिलेशन लिमिटेड को कॉल करें 0800-787-111 पर।
3: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम। डिमाइज न्यूज।
2: अरब लीजिए, सुनिए कुछ शोक सूचनाएं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पंजलि के पति देलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स लंबासा के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0215526777 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पांजलि के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0215526777 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राघिरा की फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे

0: कैमरन चंद के पिता। गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-923-666 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि रागेरा की फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वेरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-932-666 पर कॉल करें।
1: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
2: टोरंटो कम्युनिटी मैसेजेस।
3: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 021-101-7959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
2: टोरंटो कम्युनिटी मैसेजेस।

गुड इवनिंग, हाय हेलो रेडियो तरह पर आपका स्वागत है. मे द फोर्थ बी विद यू. मे द फोर्थ बी विद यू वो एक था, लेकिन मे द फोर्थ जो तारीख है मई की, इस तारीख में आपका स्वागत करते हैं. अच्छे अच्छे गीत और संगीत पेश करेंगे. मेरी पसंद प्रोग्राम का आगाज करते हैं 8 बजे से. आज से 10 आपकी रिक्वेस्ट के गाने, 10 से 12 भी आपकी रिक्वेस्ट शामिल करते हैं अलग अलग सेगमेंट में. तो रात 12 बजे तक साथ निभाने के लिए तैयार रहेगा. मैं हेमंत आपके साथ हो गया हूँ रेडियो तराना के मंडे इवनिंग के इस सफर में, जबकि आज फोर्थ में है, 124th डे एंड साल के अंदर 241 डेज ही बाकी हैं. फोन कर सकते हैं आप 3031361 SMS नंबर है 8812 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ जाते हैं, अच्छा लगता है. लीजिए आपके लिए कार्यक्रम में पहले पहल दीवाना तेरा है, बहुत ही लाजवाबी अंदाज उदित नारायण की आवाज में पेश करते चले.

तेरा हाय कसम यही खाए, तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा, जो तू मिल जाए गजब हो जाए।

0: रेडियो तना का ये संगीत में सफर मेरे हेमंत के साथ आप इंजॉय करते हैं। आज तीन गानों की वोटिंग सेगमेंट वाला सिलसिला। आज 8:15 पर आप से पूछेंगे कि सबसे ज्यादा फेवरेट गाना कौन सा है। सॉन्ग नंबर 1, 2 या 3 आपको बताना है। आज वर्ड है पायल। एक ये गाना था मासूम का, अभिजीत साधना सरगम की आवाज में, ये जो तेरी पायलों की छन छन है। क्या आपको सॉन्ग नंबर 1 पसंद है? या सॉन्ग नंबर 2, फिल्म राजकुमार का माधुरी दीक्षित के लिए पायल मेरी।
1: पायल मेरी जादू जगाती है,
0: तुमको बुलाती है, मैं क्या करूं। सॉन्ग नंबर 3, पायल या फिल्म दीवाना का एक गीत।
2: पायल या
0: वन टू या थ्री आप वोट कर पाएंगे। आपकी वोटिंग मैं अपने फेसबुक और अपने मैसेजेस को कंपाइल करके फिर आपको सवाल को बताऊंगा कि आज सबसे ज्यादा कौन से गाने की वोटिंग आई है। ये गाना भी आप सुन पाएंगे या गाने आपकी फेवरेट पसंद के हिट वोटिंग के साथ जो आते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं।

0: चंचल बातें लाजवाब गाने विद हेमंत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
2: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। isubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ isubscribe.co.nz।
3: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
4: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
3: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
4: यार सिंपल है, KMB कंस्ट्रक्शन से बात करो।
3: क्या स्पेशल है उनमें?
4: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
5: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
6: Dash! Savior of the lunchbox!
5: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.

सब कुछ आपको आपकी फिंगर टिप्स पर मिल जाता है। इन दिनों हमारे प्रोग्राम भी आप अपने ऐप से अपने स्मार्ट टेलीविजन पर देख रहे हैं या फिर अपने कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करके बड़े आवाज़ में, स्टीरियो आवाज़ में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि कई हमारे साथियों के प्रोग्राम जब हम सुनते हैं तो आवाज़ कुछ अलग ही होती है, लाजवाब कनेक्शन होती है। और आपके गानों को पेश करना भी एक फ़र्ज़ बनता है हमारा, और आप ही के लिए अच्छे अच्छे गीत और संगीत जब पेश करते हैं तो एक के बाद एक हिट हिट गीत आते हैं। जबकि आज 4th मई है और आज दुनिया भर में मई द 4th भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एंटी बुली डे भी है, नेशनल ऑरेंज जूस डे है। इट्स नाइस, काइंड डे, KIND, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर, इसका भी एक विवरण होगा। वर्ल्ड गिव डे, कुछ लोगों को देना चाहिए। नेशनल कैंडिड ऑरेंज पील डे, और जो काइंड डे है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि KIND किस तरीके से होता है। किड्स इन नीड ऑफ डायपर्स, काइंड डे। यप, अगर आप जानते हैं कि कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, मेहनत तो ये करते हैं लेकिन उतने पैसे बच्चों के देखभाल के लिए नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों ने आज काइंड डे भी रखा है कि किड्स इन नीड ऑफ डायपर, उनके डायपर की डोनेशन भी लोग करते हैं और उनको मदद मिलती है। चलो, आपको अच्छे अच्छे गाने सुनने सुनाने का मौका मिला है सफर में। अरिजीत सिंह की आवाज़ का ये अंदाज भी आपको ज़रूर पसंद आएगा।

0: चंचल बातें लाजवाब गाने विद हेमंत।
1: Are you having trouble with police or facing criminal charges and need someone who could best represent you in the court of law? Gullau Legal Services. With over 20 years of expert criminal litigation experience, they know both prosecution and defense side of the law. Their founder, Mr. Gul, an ex-senior New Zealand police prosecutor, speaks your language. Choose Gullau Legal Services, where expertise meets understanding. Visit gullau.co.nz today. Or you can call on 022-353-0872 today.
2: Drawing inspiration from urban communities around the world,
3: we present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
2: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange, and major motorways.
3: Join the new community. Selling now. Find out more at pickotoetoe.nz.
2: That's PIKOTOETOE.NZ. इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
6: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
7: Radio Tarana, aap sun rahe hain Lajwab Geet aur Sangeet. Somvar ko kafi chahal pahal hoti hai. ट्रैफिक की सुबह में चहल पहल, फिर शाम को पहले दिन थोड़ी थकान लगती है, हफ्ते का पहला दिन कुछ लोग खूनी मंडे कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। भाई जो भी है, मंडे को एंजॉय करें, मंडे को मस्त बनाएं, शाम को म्यूजिकल हो जाए हमारे साथ मेरी पर्सन प्रोग्राम में। सेलिब्रेट मम दिस मदर्स डे विद डिजिसल, सेंड $20 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू माई कैश वॉलेट इन पैसिफिक एंड यू कैन विन वन ऑफ 15,500 कैश प्राइजेस। डिजिसल, मेकिंग इट ईजी to share the love. T's and C's apply. तो yes, Digicel के इस promotion में भी आप भाग ले सकते हैं। यहाँ पर तीन गानों के वोटिंग सेगमेंट में आज मेरी पसंद में आप पब्लिक डिमांड पे पायल वाले गीतों को वोट कर सकते हैं। सॉन्ग नंबर वन है फिल्म मासूम का, ये जो तेरी पायलों की झनझन है। सॉन्ग नंबर टू है फिल्म राजकुमार का माधुरी दीक्षित के लिए, पायल मेरी। सॉन्ग नंबर थ्री है फिल्म दीवाना का पायलिया। आप फोन करके वोट कर सकते हैं या फिर मुझे एसएमएस कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पर 8812 पर। मेरे सोशल मीडिया से कांटेक्ट हो सकता है, आप बताएगा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। आज रात को बताते हैं 8:15 के आसपास कि सबसे ज्यादा पायल वाला गीत किसने पसंद किया या किस गाने को वोट मिला है।

0: लड़कियों थोड़ा म्यूजिक कम करो। अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
0: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
3: किक ऑफ द विंटर सीजन विद दीज विनिंग डील्स फ्रॉम रेबल, लाइक 20% ऑफ ऑल वुमेन्स पुमा, न्यू बैलेंस एंड अंडर आर्मर क्लोथिंग एंड रनिंग शूज, and 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: The DJ Shalin Show.
1: DJ Shalin Show every Saturday, 6 PM.
6: You are listening to Hemant on Radio Tarana.
7: रेडियो तराना के लिसनर्स के साथ भी मुलाकात होती रहती है। उधर सेवा कम्युनिटी प्रोजेक्ट के डाइवर्सिटी डे प्रोग्राम में उधर वे माउथ मेन्यूरा में कई सारे लिसनर्स के साथ मुलाकात हुई, अच्छा लगा। आप भी हमारा मेरी पसंद प्रोग्राम सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही में उधर जो सात्विक बीच भजन क्लबिंग इवेंट रहा, उसमें भी कई सारे लिसनर्स के साथ झूमे नाचे गाए नेहा जी के साथ, मैं और हमारे म्यूजिशियन ने पहली बार कुछ अलग पेश किया, जिसमें कई सारे लाजवाब भक्ति गीत का मजा पेश किया जो लोगों को पसंद आते हैं, लोग झूम उठते हैं। अच्छे अच्छे गीतों संगीत का मजा आप लेते रहते हैं, आपका साथ भी प्यारा है। आज बंदिश फिल्म का एक गीत पेश करते चलें, बोले मेरा कंगना, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में आनंद मिलन के संगीत पर। बहुत ही लाजवाब 90s का एक सुपर हिट गाना पेश करते चलें। राग भीम पलासी के सुरों पर आधारित आनंद मिलन की तर्ज है, आपको भी पसंद आएगी।

0: At Bunnings Trade, we can help you build big with our wide range of landscaping supplies. We've got what you need from green life and decking to fencing and irrigation and loads more. Plus, we can deliver direct to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
1: New Zealand के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: जॉइन द ग्रेट बिग बैलेंस चेक एट न्यू वर्ल्ड। Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Clubcard. Only at New World. T's and

0: Weekdays from 9 a.m. to midday.
1: काफी सारे सेलिब्रेशंस के बारे में भी बताते हैं इस वीक में. मेरी नीसेस का बर्थडे भी है गुरुवार को और वीकेंड में मदर्स डे भी है. सभी मदर्स को शुभकामनाएं देते हैं. मदर्स डे के अवसर पर भी अच्छे अच्छे गीत और संगीत आपके लिए पेश करते हैं. यहाँ पर फिल्म लाडला का एक गीत इंजॉय करें. थोड़ी देर में ही मेरी पसंद में आपके लिए फिल्म कृष्णावतरम का डबल पास जीतने का मौका और तीन पायल वाले गीतों की रिजल्ट क्या है, कौन से गाने को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है वो बताते हैं बस थोड़ी देर में ही. तो सुनते रहिए, आगे बढ़ते हैं. माँ की ममता का ये गीत फिल्म लाडला का है उदित नारायण ज्योत्ना की आवाज में. उदित नारायण की आवाज बहुत ही लाजवाब है अनिल कपूर के लिए और इसमें फरीदा जलाल भी नजर आई थी.

0: परेशान क्यों ना हो, हमारी उम्मीद का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलती। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: Radio Tarana. Time check.
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: गुड इवनिंग, हाय हेलो रेडियो तरन, आप सुन रहे हैं मेरे हेमंत के साथ। मंडे है आज, कशिश फूड्स की ओर से स्टूडियो की घड़ी में 8 बज रहे हैं।

रेडियो तरंग आप सुन रहे हैं हर मंडे को मेरी पसंद प्रोग्राम जब हम पेश करते हैं आपके साथ जुड़ जाते हैं नए पुराने गीतों का संगम होता है और यहां पर आप लिसनर्स के तीन गानों की वोटिंग का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, कई सारे मैसेजेस आए हैं एंड इन गानों का लाजवाब मिशन जो होता है फिल्म चाहे कोई भी हो लेकिन पायल वाले गीत का मज़ा कुछ आप दे रहे हैं, जैसे मासूम राजकुमार और दीवाना के गीत की वोटिंग भी आ रही है। फोन करते रहेगा आपकी रिक्वेस्ट के साथ 3031386 पर, SMS नंबर है 8812, ईमेल info@tarana.co.in। रात 12 बजे तक मैं अहमद आपका साथ निभाता हूँ। फोरम फिल्म्स की ओर से फिल्म कृष्णा अवतारम आ रही है। कृष्णा अवतारम एक ऐसी फिल्म जिसमें कृष्ण के रूप में सिद्धार्थ गुप्ता है, राधा के रूप में सुष्मिता भट्ट है और रुक्मिणी के रूप में निव्या श्री कृष्ण है, सत्यभामा भी हैं। ये जो पार्ट वन है द हार्ट, रोमांस और दिल की मोहब्बत की बातें रहेगी इस कृष्णा अवतारम फिल्म में। तो इसका डबल पास जीतने के लिए आपको कृष्णा अवतारम स्पेस आपका नाम SMS करना होगा 8812 पर। फॉरम फिल्म्स की ओर से इसका ड्रॉ आगे चल के निकालेंगे और बताएंगे कि कौन है हमारे विजेता और थोड़ी देर में पायल वाले गीतों की वोटिंग का भी सिलसिला या जवाब बताएंगे मेरी पसंद प्रोग्राम में ओनली ऑन तराना। ये गाना है प्रेम की लीला, कृष्णा अवतारम की फिल्म का यह गाना है। जावेद अली जो वीकेंड में ऑकलैंड में परफॉर्म कर रहे हैं, इनके साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गाना एंजॉय करते चलें।

0: A big hello to all the listeners of Radio Tarana from Shreya Ghoshal, and you are listening to Hemant.
1: नमस्ते नमस्ते, मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
2: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी
2: ने। नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
3: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505।

मेरी पसंद प्रोग्राम में आपकी वोटिंग आज शुरू हुई, आप लिसनर्स ने वोट किया, थैंक यू सो मच। अलग अलग गानों को वोट मिला है, आज के प्रोग्राम का मजा आप ले रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। हेतल जी आपने भी कहा कि ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पर जो लिसनर्स ने वोट किया है पायल वाले गीतों के ऊपर, तो इट्स वेरी गुड कि सॉन्ग नंबर वन को टोटल अभी तक 7 वोट्स मिल गए हैं, जिसमें शिवानी प्रसाद आपने भी वोट किया, साथ ही में सीमा अली, रामेश्वर भट्टी आपने भी वोट किया है, सरस राज, रश्मिता पटेल और अहफाज आपने, अनिल जी आपने सॉन्ग नंबर 2 को वोट किया है पाल मेरी को, और तेजल आपने वोट किया है सॉन्ग नंबर 3 को। सो दे यू गो, ये सब गानों की वोटिंग आई है। तो सबसे पहले तो ये जो तेरी पायलों की जन पेश करते चले, फिर पायल मेरी और पायलिया को भी थोड़ा थोड़ा आज पेश करेंगे, क्योंकि इसको भी थोड़े वोट्स मिले हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो मासूम का ये गीत है आज रेडियो तराना के मेरी पसंद प्रोग्राम में।

0: Best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: रेडियो तरह का संगीत में सफर मंडे के इस प्रोग्राम में हमारे नेशनल इंटरनेशनल लिसनर्स आप भी साथ निभाते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को भी हम शामिल करते रहते हैं। अलग अलग थीम्स के प्रोग्राम रखे हैं। नरगिस जी और ऋषि कपूर जी को भी हम सम्मान दे रहे हैं आज रात के इस प्रोग्राम में। हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स भी साथ निभाते हैं। उधर सायरा जी सिडनी से आप भी प्रोग्राम सुनते हैं। पिछले हफ्ते श्रृंगाली गुप्ते और गुप्ते फैमिली ने हमारा साथ निभाया और कुछ हमारे वोटिंग करने वाले साथी होते हैं। उधर कुछ साइलेंट लिसनर्स बाद में रिप्लाई करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उनके गानों को भी अकोमोडेट करते हैं। पंकज जी आप भी कॉल करते रहते हैं, थैंक यू सो मच। मैंडी आपके गीतों को भी हम पेश करते हैं। प्रेम जी आपको भी याद करते हैं और आप भी साथ निभाते हैं मेरी पसंद प्रोग्राम में। उधर कल्पू जी आप बहुत क्वाइट है वेलिंगटन में, शायद आप भी वापस फोन करेंगे या ऑकलैंड आएंगे तो मुलाकात होगी। कुछ सामान लेके आप आते हैं या भेजना चाहते हैं। हमारे कुछ लिसनर्स होते हैं जो हमारे साथ निभाते हैं लेकिन दूसरे के प्रोग्राम में बाद में साथ निभाते हैं, ऐसा पता चलता है तो हम सोचते हैं कि इनको क्या हुआ, इनका गाना तो हम पेश करते थे, उनको याद करते थे। पर इट इज़ हाउ इट इज़, कुछ लिसनर्स शायद ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं या हम अंडर डिलीवर करते हैं। वी डोंट नो, वी जस्ट डू आवर जॉब, वी कम विद डेडिकेशन एंड आपके गाने पेश करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का गीत अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की आवाज़ में, एंजॉय करें मन वाला के।

0: Chanchal Baatein Lajawab Gaane with Hemant.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
2: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड मॉन्ट्रोस को, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
3: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
4: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 021-96-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 021-96-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: Tarana suno, dil ko chodo, Hemant ke sang, masti mein jhoomo.
2: रेडियो तरह आप सुन रहे हैं हेमंत के साथ लाजो आप गीत संगीत के साथ आपका मनोरंजन करते हैं। कुछ साइलेंट लिसनर्स बाद में मैसेज करते हैं, कुछ मैसेज करते रहते हैं जिनकी रिक्वेस्ट को भी हम पेश करते हैं। 3031386 पर आप फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं 8812 पर। हेतल जी आप भी उधर डेडिकेशन के साथ वेलिंगटन में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो लीजिए आपको भी शामिल करते चलें। ये गाना भी आपको ज़रूर पसंद है, औरों को भी पसंद आएगा। फिल्म धड़कन का गीत आपके लिए पेश करते चलें। दिल ने ये कहा है दिल से, आप तराना जो के साथ जुड़े हैं दिल से सुन रहे हैं, मैं हेमंत दिल से सुना रहा हूँ आपको ये गाने।

0: This is Radio Tarana.
1: हर मंडे शाम को आपके लिए अच्छे अच्छे गीत और संगीत पेश करते हैं। आपकी पसंद के गाने भी औरों को मनोरंजन देते हैं और अच्छा लगता है जबकि वेदर अच्छा रहा है, गाने मूड को चेंज कर देते हैं। आई नो कि बारिश के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, बहुत दिनों बाद शायद बारिश आ सकती है इस हफ्ते। और हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स में, इवेंट्स में भी हम मिलते हैं। पिछले दिनों जो कई सारे इवेंट्स रहे, शनिवार को जैसे मैं बता रहा था कि उधर सेवा कम्युनिटी के प्रोजेक्ट में, उधर सीनियर सिटीजन के फंक्शन में मैनीरा में कई सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई, स्टेज पर परफॉर्मेंसेस लाजवाब रहे। और फिर शाम को हम भजन क्लबिंग में गए थे सात्विक बीच में, थ्री किंग्स में, तो वहाँ पर भी कई सारे लिस्नर्स आए और इतना अच्छा उत्साह उमंग देखने को मिलता है। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कभी कभार हम बहुत कम्फर्टेबल हो जाते घर में ही, अरे कार पार्क में कौन जाएगा, पार्किंग नहीं मिलेगा, ये वो करके बाहर जब जाते हैं, अरे वो मिले, अरे इतने दिनों बाद आप मिले, आप भी है, मतलब कितना अच्छा लगता है कि उनके साथ मिलकर एक अलग मुस्कान सी मिलती है, सुकून सा मिलता है। और फिर वहाँ पे गीत और संगीत होता है, मज़े होता है, तो थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए सत्संग, आप चर्च सर्विस में जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, तो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि बाहर जाने से उन लोगों के साथ एक रिश्ता बनता है। आप रेडियो सुनने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, हम रात को बैठ के आपके लिए गाने तैयार करते हैं। किसी ने आज मुझे स्टूडियो में आते हुए देखा कि पूछा कि आप कितने बजे तक रहते हो, खाने का क्या करते हो, मैं बोला घर से खाना ला के खाना पड़ता है यहाँ पर और फिर प्रोग्राम करना पड़ता है, तो ये सब चलता रहता है। बहुत इलाज आपकी जीवन मृत्यु का पेश करते चले, आपके लिए झिलमिल सितारों का आंगन होगा। सितारे कौन है आपको पता है, गाना भी लाजवाब है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत और संगीत आप भी रिक्वेस्ट करते रहेगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेगा रेडियो तराना पर।

0: Starting check. Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
1: कशिश फूड्स की ओर से हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं।

रेडियो तरह पर मेरी पसंद प्रोग्राम का आप मजा ले रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट है, पिछले घंटे में भी मुझे बिजी रख रही थी और हमारे कई सारे लिसनर्स के डायरेक्ट मैसेजेस भी आते हैं, उनको भी मुझे देखना पड़ता है कि कहीं मिस ना हो जाए। और फिर ये गाने पेश करने का मजा ही कुछ और होता है, आपके साथ सबको मनोरंजन मिलता है। 3031366 स्टूडियो का नंबर, SMS 8812, यहाँ पर आपकी पसंद के और भी गाने पेश कर रहे हैं। इस घंटे का आगाज करते हैं फिल्म कल हो ना हो के इस गीत के साथ। बहुत इलाज जो आप ये अंदाज अलका याग्निक कौशान की आवाज में, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है, मेरी पसंद का मजा ले रहे हैं आप। आज 8 से 10 ये रिक्वेस्ट के गाने, 10 से 11 ऋषि कपूर के गाने, 11 से 12 नरगिस जी के गाने भी आपको सुनने को मिलेंगे। ओनली ऑन तरह ना।

0: Best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: रेडियो तराना सुन रहे हैं आप, हमारे रातों के राजा रातों के रानी अभी हमारा साथ निभाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लिसनर्स आप भी सुन रहे हैं, उधर वेलिंगटन क्राइस्टचर्च में भी आप प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मौसमी जानकारी भी मुझे पेश करनी थी, फिर मैं सोच रहा था कि अभी करूं तभी करूं, फिर रह जाती हैं। ऑकलैंडर्स, वी हैव इंजॉयड वेरी गुड वेदर विच इज़ सो गुड। आज न्यूजीलैंड में बारिश की खबर नहीं रही वो ज़्यादातर, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ऑकलैंड में ट्यूजडे को हल्की बारिश, थर्सडे को और बारिश हो सकती है ऐसा अनुमान है, एंड देन वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे रेन का फोकास्ट है। बट लुक, डोंट काउंट मी कि ये सही बात है, ये शायद चेंज भी हो सकती है, रात को बारिश हो सकती है, दिन साफ हो सकता है, तो ऐसा अनुमान मिला है। लेकिन अभी आज रात को हम ऑलमोस्ट 10-11 डिग्रीज का टेम्परेचर महसूस करेंगे, ह्यूमिडिटी 68% की है। इन दिनों ऑकलैंड में सनराइज और सनसेट का टाइम क्या है, सनराइज 7:02 AM ऑलमोस्ट 7 बजे और सनसेट बहुत जल्दी 5:34 PM को हो जाता है। तो ये अब ऑटम विंटर की ओर जा रहा है। वेलिंगटोनियंस, आप ओवरनाइट आप भी ह्यूमिडिटी 77% की महसूस करेंगे, 13 डिग्रीज का टेम्परेचर रहेगा, नाइस वेदर। थर्सडे फ्राइडे बारिश हो सकती है, सैटरडे संडे भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। क्राइस्टचर्च में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। वहाँ पर भी ओवरनाइट 3 डिग्रीज का टेम्परेचर रहेगा, नाइस एंड कूल टेम्परेचर रहेगा। वहाँ पर भी गुरुवार को बारिश हो सकती है, सैटरडे तेज हवाएं चलेगी, संडे को बारिश हो सकती है। तो ये कुछ मौसमी जानकारी आपके लिए पेश कर रहे थे। फिल्म सलामी का एक गीत शामिल करते चले, नैव संगीता और कावा बॉयज आपको भी उधर शामिल करते चले, हमारे कुछ लिसनर्स हैं, सीमा अली जी आपको भी शामिल करते चले, उधर फीजी से भी अर्चना जी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और नलिनी कौशल सिंह जी, आपने सुनना चाहा था ये गाना तेरी जिंदगी की रागनी पर, या सुपरहिट एक और गाना आपने सुनना चाहा है मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी जी की फिल्म का, ये पेश करता हूँ बस इसके बाद, ठीक है, सुनते रहिएगा रेडियो तराना।

मेरी पसंद प्रोग्राम में एक के बाद एक हिट हिट गीतों का मजा आपको मिल रहा है। महिमा आप भी साथ निभा रही है, थैंक यू सो मच। आपने सुनना चाहे फिल्म तेजाब का गीत कह दो कि तुम हो मेरी वरना, पर गाने का टाइटल कंप्यूटर में लिखा है जीना नहीं मुझे है मरना, तो ये भी एक कंफ्यूजन हो जाती है कि कोई बोलेगा कि कह दो कि तुम लगा दो और कंप्यूटर में हम अगर टाइप करेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अक्सर फिल्मों के टाइम टाइटल्स टाइप करता हूँ, इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ, तेजाब TEZAAB, अगर तेजाब TEJ लिखोगे तो कंप्यूटर में गाना नहीं मिलेगा, पर मेहनत करनी पड़ती है। आप लिसनर्स के लिए क्या क्या जद्दोजहद करना पड़ता है ये तो हमको ही पता है, लेकिन अच्छा लगता है आपका साथ, आपका मनोरंजन करना हमारा फर्ज बनता है। सोमवार रात के इस मेरी पसंद प्रोग्राम में आप हमारा साथ निभा रहे हैं। मैं अहमद आपको गुरुवार को भी मिलता हूँ 7 से 10, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे गीत संगीत सुनने सुनाने का मौका मिलता है, तो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

0: This is Radio Taranam.
1: सोमवार रात का ये म्यूजिकल मेलोडीज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मेरे हेमंत के साथ. अच्छा लगता है आपका साथ भी, आपकी रिक्वेस्ट भी पेश करते रहते हैं. अगले दो घंटे का प्रोग्राम भी लाजवाब बनाने की कोशिश में हम रहेंगे. फिल्म आप तो ऐसे नहीं थे का गीत रफ़ी साहब ने गाया, मनोहर जी ने गाया, जिनके ऊपर हम नेक्स्ट वीक प्रोग्राम पेश करेंगे. और ये हेमलता जी का वर्जन आपके लिए पेश करते चलेंगे. इसके बाद गोविंद जी आपने सुनना चाहा है, आम्रपाली का तुम्हें याद करते करते जाएगी रहने सारी, ये अंदाज भी पेश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में. रेडियो तराना पर आप मेरी पसंद सुन रहे हैं 10 से 11, 11 से 12 का सेगमेंट भी इंजॉय कीजिएगा. आपके मैसेजेस के लिए, आपके फीडबैक के लिए, कंसिस्टेंट लिसनरशिप के लिए, लॉयल्टी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं. सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो तराना.

0: Best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: रेडियो तरंग का ये संगीतमय सफर आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. आपकी पसंद के गानों का मजा भी देना अच्छा लगता है आपका साथ. यहाँ पर रेडियो तरंग के इस प्रोग्राम में मैं हेमंत आपका साथ निभा रहा हूँ और यहाँ पर मदर्स डे के अवसर के लिए भी तैयारी करते हैं. हम सभी माताओं के लिए समय निकालते हैं, माँ के लिए योगदान जो करते हैं, माँ के योगदान के लिए जो हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ का, माँ का प्रेजेंस. कुछ लोगों के पास माताओं का साथ नहीं होता है और वो प्यार के लिए तरसते रहते हैं, तो इसीलिए हमारे कुछ माताएं अपने प्यार और आशीर्वाद को इन पे बनाए रखते हैं. तो ये भी अच्छी बात है कि आप ये मदर्स डे मना रहे हैं किसी भी रूप में. कुछ लोग शायद नहीं भी मनाते हैं, लेकिन मदर्स डे का त्यौहार मनाया जाता है या रखा जाता है कैलेंडर में ताकि उनके लिए खास दिन हो. कई सारे लोग डिनर पे ले जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन उनको आपका प्रेजेंस चाहिए. आपके प्रेजेंस से ही ये प्रभाव जो पड़ता है या आपके शख्सियत वहाँ होती है, आप एक साथ होते हैं तो रिश्ता मजबूत बनता है. तो रिश्ते बनाए रखना हमारा काम है. फिल्म खन्ना का गीत है, जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में. ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम. जो भी है, माताओं को अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है और ये माँ का मोहब्बत का गाना है मदर्स डे के अवसर पर. तो इसको भी शामिल करते चलें. आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने पेश करते रहेंगे मदर्स डे के अवसर पर भी हमारे प्रोग्राम में, आज और गुरुवार रात के प्रोग्राम में भी.

0: Weekdays from 9 a.m. to midday. Radio Tarana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: रेडियो तराना टाइम चेक कह रहा है कि स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 बज रहे हैं।

रेडियो तरारा का ये संगीत में सफर ऋषि कपूर के फैंस के लिए इतने अच्छे अच्छे गीत गुरुवार के रात के प्रोग्राम में भी हमने पेश किए जिन्होंने कुछ यू नो जो धूम मचाई थी अपनी 92 फिल्म्स में 70s 80s और 90s में. उसके बाद नए दौर की फिल्मों में उनके गाने कम रहे लेकिन इनके अदाकारी हम देखते रहे. और जबकि हमको कुछ 6 साल पहले पता चला 30 अप्रैल को इनका देहांत हुआ था, तो आज भी शोक में है कुछ लोग क्योंकि इतने अच्छे एक्टर के चले जाने के बाद इनको हम देखते नहीं लेकिन इनके गाने सुनते हैं, इनकी फिल्मों को बार बार देखते हैं. तो आज ऋषि कपूर जी के फैंस के लिए कुछ अलग गीत जो मिस हुए थे पिछले गुरुवार के प्रोग्राम में आज के इस प्रोग्राम में पेश करेंगे. तो सुनिए, सुनाते रहिए रेडियो तराना, जरा करीब आइएगा.

ऋषि कपूर की अदाकारी कितनी लाजवाब और नए दौर के भी गाने कितने लाजवाब, आपके पसंद के हर एक गाने, कुछ कुछ गाने इतने लंबे होते हैं 6-7 मिनट के, तो एक प्रोग्राम में 3-4 गाने में ही प्रोग्राम फिल हो जाता है। और फिर मैं ज़्यादातर वो बातें नहीं करता कि कौन से साल में फिल्म आई थी, कौन सी हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन ही डिड एक्ट विद मेनी मेनी एक्ट्रेसेस एंड इवन अमिताभ बच्चन जी के साथ चुनिंदा हिट फिल्में की। तो आज के इस प्रोग्राम में कई सारे गाने पेश करेंगे, सिलसिला का ये गाना भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऋषि कपूर के फैंस के लिए एक और लाजवाब हिट गीत आपके लिए पेश करते चलें।

ऋषि कपूर दिव्या भारती कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब रहा। फिल्म दीवाना में भी इनकी अदाकारी सोचेंगे तुम्हें प्यार, तेरी इसी अदा पे सनम, कितने सारे अच्छे अच्छे गीत थे। सभी फिल्मों के कुछ एक एक गीत ही मैं ले रहा हूँ ताकि सभी फिल्मों के अच्छे अच्छे गाने पेश करते चले आपके लिए इस प्रोग्राम में, जबकि हम ऋषि कपूर जी को सम्मान दे रहे हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं इस अंदाज के साथ, फिल्म दीवाना का गीत भी इंजॉय करें हमारे साथ इस प्रोग्राम में। खासतौर पर प्रणव, आपने सुनना चाहें ये गाना, इंजॉय।

0: This is Radio Tarana.
1: ऋषि कपूर के फैंस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गीत संगीत पेश कर रहे हैं यहाँ पर पर्दा है पर्दा, इसकी भी रिक्वेस्ट आई है, इसको भी पेश करते चले। और ऑफ कोर्स ये वादा रहा का टाइटल सॉन्ग भी जो मैंने लास्ट वीक के प्रोग्राम में पेश किया था, चाहे वो आशा जी को सम्मान दे रहे हैं, आदि बर्मन को सम्मान दे रहे हैं, पूनम दिलोन, टीना मुलियम, ऋषि कपूर, जिनके भी ऊपर प्रोग्राम पेश करते हैं, गाना तो शामिल करना ही करना होता है। ऑफकोर्स किशोर कुमार जी के फैंस के लिए भी ये गाना बहुत ही लाजवाब है, जो मैंने अपनी रील्स में भी रखा था, कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो ये गाना भी इंजॉय करें। इसके बाद इससे पहले पर्दा है पर्दा फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये अंदाज इंजॉय करें आज ऋषि कपूर स्पेशल में ओनली ऑन तराना।

ऋषि कपूर हिट्स आप सुन रहे हैं रेडियो तराना पर। नजरों से कह दो, ये नीतू सिंह के साथ इनकी शादी हुई ऋषि कपूर की, और ये गाने भी इनकी फिल्मों के बहुत ही लाजवाब रहे। दूसरा आदमी का ये गीत भी बहुत ही प्यारा है, आपके लिए पेश करते चले। नलिनी जी, आपने रिक्वेस्ट किया है ये गाना, इंजॉय करें फिल्म दूसरा आदमी का ये गाना ऋषि कपूर स्पेशल में।

0: अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: मेरी पसंद प्रोग्राम में ऋषि कपूर जी के बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने सुनाने का मौका मिलता है। जैसे मौके जब हाथ लगते हैं तो छोड़ने को दिल नहीं करता है। अगले घंटे में भी ऐसे अच्छे अच्छे गीत पेश करने का मौका मिलेगा जिसमें नरगिस दत्त जी को हम सम्मान देंगे। इतने सारे हिट गाने इनकी फिल्मों के भी थे, भले ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ ऐसे फिल्मी गाने हैं जिनको अगर मिस कर दिया तो हमको दुख लगता है। हम कोशिश में रहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे गीत आपके लिए के बाद एक हिट पेश करें हमारे इस प्रोग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं इन गीतों के साथ। मुझे पीने का शौक नहीं, कुली का एक गीत भी आपको जरूर पसंद आएगा। फिर सरगम का एक बहुत लाजवाब गीत पेश करेंगे ऋषि कपूर जी के फैंस के लिए इस घंटे में। फिर अगले घंटे में नरगिस दत्त जी को सम्मान देंगे। रेडियो तराना सुनते रहिएगा।

0: 9 to 9. Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
1: कशिश फूड्स की ओर से स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बज रहे हैं।

हर मंडे को रात को जब ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे लिसनर्स बहुत डेडिकेशन के साथ प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोग्राम का फीडबैक भी SMS से, सोशल मीडिया के डायरेक्ट मैसेजेस से आप भेजते हैं। कल 3 मई थी, 1981 में 51 ईयर्स की आयु में ही फातिमा राशिद उर्फ नरगिस दत्त का देहांत हुआ। नरगिस जी अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस रही, जो 50s और 60s की फिल्मों को याद रखते हैं, जहाँ पर इनकी फिल्में ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही रही, कुछ ही फिल्मों को कलर के रूप में हमने देखा। लेकिन लास्ट फिल्म रात और दिन 67 की, या उससे पहले इनकी शुरुआत के दौर की फिल्में देखें, जैसे कि 1949 के अंदाज, बरसात, राज कपूर जी के साथ हिट हिट फिल्मों में काम किया, तो सब गाने पेश करना हमारा फर्ज बनता है। कोई गीत अधूरा न रहे ऐसी कोशिश में मैं रहूंगा। रात 12 बजे तक आप भी मेरा साथ निभाएगा रेडियो तराना पर।

हमारे कई सारे प्रोग्राम में हम कोशिश में रहते हैं कि सभी गाने पेश करें, लेकिन फिल्मों के नाम ज़्यादा नहीं लें, गायक कलाकारों के नाम नहीं लें, अदाकारों के नाम नहीं लें, क्योंकि आज पता ही आपको कि नरगिस जी के साथ ज़्यादातर राज कपूर जी की अदाकारी रहेगी। अपने ज़माने के गाने अपने सिनेमा में देखे थे, कहीं रिकॉर्ड में रेडियो पे सुना करते थे, कहीं पान के गल्ले पे सुना करते थे, कैसेट में सुना करते थे, चाहे सीडी के बाद अब MP3 या यूट्यूब पे देख रहे हैं। लेकिन इन गानों की खास बात यही है कि इनके हर एक अंदाज को आप परखते हैं, पहचानते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी मशहूर एक्ट्रेस नरगिस दत्त जी को सम्मान देते हुए गाने पेश करें। आपके लिए रेडियो तराना पर

कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के गाने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गोल्डन हिट्स, सुनहरे दौर के गाने, ऐसे गाने हैं जिनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे, जिनको सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं और हमारे अंदर एक ऐसी गहरी छाप और एक ऐसे फैमिली का योगदान, जहां नरगिस जी के पति सुनील दत्त जी एक अच्छे एक्टर रहे, इनके बेटे संजय दत्त को भी हम देखते हैं और नरगिस जी ने राज कपूर जी के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया जो भी यादगार रही हैं। तो आज इन गानों का खजाना आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल की गिरा खोल दो फिल्म रात और दिन का एक ड्यूएट गाना पेश करते चले, इसके बाद चोरी चोरी का भी गाना पेश करेंगे, तो कहीं दूर मत जाएगा, 12 बजे तक मेरे हेमंत का साथ निभाते रहेगा।

आज के प्रोग्राम की शुरुआत ही फिल्म चोरी चोरी के गीत के साथ हुई, जो चोरी चोरी अपने ज़माने की हिट फिल्म 1956 की। और अच्छी बात यह है कि नरगिस जी ने जिन फिल्मों में काम किया, जिनके कई सारे फिल्मों के दीवाने रहे हैं, मदर इंडिया जैसी हिट फिल्म के लिए कई सारे खिताब भी जीते, और एक ऐसी एक्ट्रेस जो चर्चे में रही राज कपूर जी के साथ, हालांकि जीवन इनका अलग रहा, और सुनील जी के साथ जब शादी की, बच्चे हुए, कैंसर से पीड़ित रहीं, और इनकी कम उम्र की वजह यही है कि 51 ईयर्स की आयु में एक अदाकारा का देहांत होना, जो भी एक इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस। और एक बात ज़रूर थी कि जब इनके देहांत के बाद ये रॉकी फिल्म भी रिलीज हुई थी संजय दत्त की, लेकिन एक नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ, जिसकी वजह से जो कैंसर पीड़ित हैं उनको रिलीफ मिली, उनको मिल रही है रिलीफ। और ये अच्छी बात है कि ऐसी स्थिति में जो होता है, सुनील दत्त साहब जी का ये योगदान नरगिस जी की याद में हम और आप कभी नहीं भुला पाएंगे, नहीं भुला पाएंगे। चोरी चोरी का एक और ये लाजवाब गीत आज रात के इस प्रोग्राम में ये भी पेश करते चले मन्ना डे और लता जी की आवाज़ में।

रेडियो तनान का ये संगीतमयी प्रोग्राम नरगिस जी को सम्मान दे रहे हैं। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस के बहुत सारे दीवाने थे और रहेंगे, और कई सारी बातें याद आती हैं। मैं बचपन में जब फिल्म देखता था तो गूगल वगैरह नहीं होता था, तो क्या हुआ कि हमारे घर पे कुछ रिकॉर्ड्स को कोई ड्रॉप कर गया था, मतलब 500-700 रिकॉर्ड होगी जिसमें हिट हिट फिल्मों के रिकॉर्ड्स थे, LPs थे, और उसको कन्वर्ट करके कैसेट में रिकॉर्ड करके किसी को गाने देने होते थे। तो हमारे घर पे जब भी कोई फिल्म देखते थे तो मैं एल्बम ये निकालता था और इसमें गाने देख लेता था। तो जैसे कि बरसात का मुझे किसी से प्यार हो गया, ये गाना वो गाना इसमें है। अगर मैं देख रहा हूँ चोरी चोरी, तो ऑफकोर्स उस ज़माने में तो हमको चोरी चोरी के बारे में आज जितना पता है उतना नहीं पता होता था। तो आज सुना मुझे ओ ये रात भी अच्छा उसका गाना है, तो मतलब वो फिल्म देखने के लिए मैं भी उत्सुक होता था। तो आई एम श्योर आप म्यूज़िक लवर्स इन गानों को आज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और यूं ही करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और लाजवाब गीतों के साथ जिसमें हम नरगिस जी को सम्मान दे रहे हैं।

लाजवाब गीत और संगीत को हम पेश कर रहे हैं। फिल्म अदालत के गाने भी काफी मशहूर रहे। अदालत का ये गाना आशा जी और रफी साहब की आवाज में नरगिस जी के फैंस के लिए, नरगिस प्रदीप कुमार नजर आए थे। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने इनकी फिल्मों के रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं कोई गीत अधूरा छोड़ूंगा तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अच्छा लगता है कि आपका साथ भी होता है। आपके फीडबैक के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छे अच्छे गीत और संगीत के रसिक हमारा साथ निभाते हैं, तो आज नरगिस जी को श्रद्धांजलि देते हुए गाने पेश कर रहे हैं, तो ये मशहूर गाना भी पेश करते चलें।

0: stay updated with Radio Tarana.
1: Download now the free Tarana mobile app.
2: रेडियो तरह का रात का ये प्रोग्राम यहाँ तक का ही हमारा आपका सफर है और ये सफर अब एक नए आयाम में मिलेगा जबकि हम गुरुवार को 7 बजे मिलेंगे। हमारे नेशनल इंटरनेशनल लिसनर्स, आप जैसे भी जिस माध्यम से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो ऐप्स हैं, चाहे आपने मोबाइल डिवाइसेस से या आप डिजिटल डिवाइसेस सुन रहे हैं, अच्छा लगता है आपका साथ, यूं ही साथ निभाते रहेगा। और कोई गीत अधूरा रहो तो माफी चाहूंगा। 7 बजे से आप जुड़ जाते हैं, रात 12 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे साथियों का भी साथ निभाते हैं, तो यूं ही तराना पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नरगिस जी के कुछ लाजवाब गानों को छोड़ जा रहा हूं, जो मुझे भी पसंद है आपको भी पसंद आएंगे, आज के इस प्रोग्राम में पसंद आए होंगे ये गाने और हमारी कोशिश। फिर मिलते हैं, तब तक खुद का ख्याल रखिएगा। मेरी ओर से आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार, बाय बाय।

best of music, best of shows. This is Radio Tarana.

0: की हासिल से ब्रेक लीजिए, पजल को छोड़ म्यूजिक की दुनिया में चलिए और थोड़ा चिल कीजिए विद मी नेहा इन द शो चिल विद नेहा, मंडे टू सैटरडे 1 PM to 4 PM ओनली ऑन रेडियो तराना।
1: लाइफ तो बस हसल है।

दिल के जज्बात चाहो भी तो रुकते नहीं, इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं।

0: हैप्पी।
1: मेरे को फोन नंबर देना, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और बहुत कुछ भी सॉल्व करता हूँ। अपना दूं क्या? 0001।
2: मेरी पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ।

best of music, best of shows. This is Radio Tarana.

0: से मैं हूँ आपका कैप्टन सत्येंद्र शर्मा।
1: Drive with Captain Satyen Sharma, weekdays from 4 to 7 p.m.

0: लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3

0: आप सुनने जा रहे हैं तराना पर डिवोशनल शो।
1: रेडियो तरन आप सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है संजेश नारायण। आज का मंगल प्रभात आपको बहुत बहुत बार शुभ हो। आज है ट्यूसडे 5 मई। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। बर्थडे है आपका, तो हैप्पी बर्थडे आपको। कहते हैं कि अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। प्रोग्राम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: Loss of a loved one is an unfilled vacuum. Demise News.
1: अब लीजिए सुनिए कुछ शोक सूचनाएं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पंजलि के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स लंबासा के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0215526777 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पांजलि के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0215526777 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि रागी राखी फीजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219233666 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि रागी राखी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219323666 पर कॉल करें।
2: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
3: रेडियो तराना
2: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: मैं आप लोगों को बता दूं, good news दे दूं, we are very close. We like we're one hand distance मुझे ऐसा लगता है from Radio Tarana starting to work again on your radio sets. तो hopefully ये जो maintenance का काम है, it has reached towards its end game now. So hopefully everything will become normal very soon, either by tomorrow or day after. Well, fingers crossed. Tarana clock mein subah ke 6 baj chuke hain. Good morning.
5: Weather report brought to you by Crew Care. Visit crewcare.co.nz.
4: Kal ke mukable aaj thand, should I say, zyada hai ya utni hai? I feel it's pretty much the same, isn't it? Aaj ka maximum temperature 20 hai, minimum temperature 15 hai. Kal ka maximum temperature 21 hai, minimum temperature 16 hai. Current temperature bahar ka 11.4 degrees hai aur sunset hoga 5:33 PM ko. Hey, there's one thing I noticed. Ye jo pura hafta hai na, is pure hafte jo minimum temperature hai, it is in double digits. Jaise pichle hafte minimum temperature single digits mein tha. And now it's not. Which I don't know if it's a good thing or not. लेकिन हाँ, गरम कपड़े निकाल के रखना, यू नेवर नो, दिस इज न्यूजीलैंड।
2: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
6: इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम हाउस विद अस। कॉल 0800-233-111।
4: लेट मी शेयर आज का ट्रैफिक विद यू। ओ, टुडे इज व्हाट, इट इज द 4th ऑफ मई, राइट? देयर यू गो। ऑकलैंड में अगर आप नॉर्दर्न मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 25 मिनट, सिल्वरडेल से सिटी लग रहे हैं आपको 58 मिनट्स, मेसी से सिटी लग रहे हैं आपको 37 मिनट्स, मैनकाउ से सिटी लग रहे हैं आपको 32 मिनट्स, ड्रूरी से सिटी 48 मिनट्स। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, ऑकलैंड सिटी से लगेंगे आपको 27 मिनट। अगर आप वेलिंगटन में ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, स्टेट हाईवे 1 पुरीरोआ से सिटी सेंटर लगेंगे 47 मिनट्स, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 14 मिनट्स, लोअर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 29 मिनट, अपर हट से सिटी 45 मिनट्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी ओनली 18 मिनट्स।
6: व्हेन यू बिल्ड योर ड्रीम हाउस विद इंडेलिबल होम्स, यू कैन पर्सनलाइज एवरीथिंग फ्रॉम किचन एंड बाथरूम कलर्स टू फ्लोरिंग। प्राउड मेंबर्स ऑफ न्यूजीलैंड।

0: नाने आ गए हैं जिलेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज मॉर्निंग।
3: देखिए इस बात को आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, मुझे लगा कि मैं इस आवर के शुरुआत में ही आपको बता दूं। शो का नाम बाय द वे मॉर्निंग बज है और मेरा नाम जिलेश है। हमारे लिए तो ये अच्छी खबर है, जैसे फॉर इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि मैं इंडियन रेडियो में काम करता हूँ। व्हाट्स हैपनिंग इज By 2048, nearly half of New Zealand will identify as non-European ethnicity. तो change of population हो रहा है न्यूजीलैंड में, और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस देश का जो बर्थ रेट है, it has dropped to 1.55. Normally 2.1 को एक्सेप्टेबल बर्थ रेट माना जाता है कि you know, कुछ लोगों की डेथ होती है, नए लोग पैदा होते हैं, उससे क्या है कि पॉपुलेशन मेंटेन रहता है। न्यूजीलैंड में द नंबर ऑफ पीपल डाइंग वर्सेज द नंबर ऑफ पीपल बेसिकली सेलिब्रेटिंग द बर्थडेज इज डिक्रीजिंग रैपिडली। इस देश को पता है किसने जिंदा रखा है? इमिग्रेशन ने। अगर इमिग्रेशन को वो और टाइट करते जाएंगे, लोगों को यहाँ पे परमानेंटली रहने का ऑप्शन नहीं देंगे, देन देर इज नो वे कि देश में जो एजिंग पॉपुलेशन है उनके वेलफेयर का कॉस्ट भी ये देश निकाल पाएगा। And that's just the reality. See, you need to know this. By 2048, 1 in 5 Kiwi. When they say Kiwi, they mean people who are citizens, okay? By 2048, 1 in 5 Kiwi will be over the age of 65. And in many regions, the number jumps to 1 in 3. ये तो ऑकलैंड जैसे शहर है जहां बहुत सारे इमिग्रेंट्स रिसेंटली रेसिडेंट्स और सिटीजन्स बने, तो वहां 1 in 5 का रेशियो आ रहा है, बट अदरवाइज इट्स 1 in 3 मैन, एंड दैट्स डेंजरस, ओके? सो ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन का सीजन है। बहुत सारे पॉलिटिशियन अपनी अपनी तरह से बात रखेंगे कि इमिग्रेशन को कैसे स्ट्रिक्ट करें, टाइट करें, स्टफ लाइक दैट, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट व्हाट हैपेंस टू योर एजिंग पॉपुलेशन बिकॉज दे नॉट वर्किंग। और उन लोगों को वेलफेयर के पैसे देने के लिए किसी को तो काम करना पड़ेगा, राइट? एंड दैट्स द होल आइडिया। गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं हम 6 o'clock hour with this lovely song here।

0: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
1: यार मुझे फिजी जाना था।
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
2: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
4: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
5: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए।
6: Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India.
5: वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly.

0: Small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
1: World in 1 minute. One global story explained simply with Jilesh.
2: आज जो मैं आपको वर्ल्ड इन वन मिनट में बताने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद आपको हल्का सा रिलीफ फील होना चाहिए. देखिए, न्यूजीलैंड में इंटरेस्ट रेट को लेकर के बहुत सारे कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं. देर सेइंग पता नहीं वापस से ओसीआर शायद ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, एनहेंस आपका जो मॉर्गेज रेट है वो वापस से ऊपर चला जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट. सी, आई मीन दीज आर अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, राइट? नो वन कैन से विद सर्टेनिटी ये होगा. लेकिन एक बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वर्ल्ड इन वन मिनट में, वो ये है कि ग्लोबली जो फाइनेंस का हाल है वो अच्छा नहीं है. सेंट्रल बैंक्स आर होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर एंड दिस इज द ग्लोबल थिंग. बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स आर कीपिंग इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. आप जानते हैं, आपने सीखा होगा बेसिक इकोनॉमिक्स, राइट? अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना पड़ता है. नाउ दिस अफेक्ट्स मॉर्गेज लोन्स एंड बिजनेस बोरोइंग कॉस्ट. एग्जाम्पल, higher monthly repayment for homeowners and slower consumer spending. क्योंकि आखिर में वो करना क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि consumer spending को slow कर दें. वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है जब आपकी fixed cost ऊपर चले जाए. And that's the entire thought behind it. तो न्यूजीलैंड में भी OCR announcement जो है वो होने वाला. It is this month, right? मुझे किसी ने बताया था कि मई के महीने में होने वाला है. सो व्हेन इट हैपेंस इन द मंथ ऑफ मई, 27th ऑफ मई इज व्हेन इट्स हैपनिंग. सो व्हेन इट हैपेंस ऑन द 27th ऑफ मई, वी विल सी व्हाट हैपेंस. ऑफिशियल कैश रेट न्यूजीलैंड का इस वक्त 2.25% है. इट वाज लास्ट अपडेटेड ऑन 8th ऑफ अप्रैल दोपहर 2 बजे. सो द नेक्स्ट अपडेट इज ऑन 27th ऑफ मई, व्हिच इज व्हाट, या व्हिच इज ओनली 22 डेज अवे नाउ. आज 5th ऑफ मई, राइट? सो या, फिंगर्स क्रॉस्ड.

0: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे.
1: घर बनाना स्टार्ट किया है तो टेंशन ही टेंशन है.
2: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
1: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं.
2: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो.
1: क्या स्पेशल है उनमें?
2: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर. 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं. भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz.
3: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how. Love is in the air.
4: अजीम के साथ मंगल की रात 7 से.
5: Workplace reality check. The truth about work they don't put in the job description. With Jalesh.
6: ना वर्कप्लेस रियलिटी में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़े काम की चीज है. फॉर एवरीवन हु जस्ट बेसिकली ट्यून्ड इन टू द शो, आपने बहुत परफेक्ट टाइम पे ट्यून इन किया. वर्कप्लेस रियलिटी में हम ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं. बाय द वे, सो ज्यादातर ईमेल्स जो आते हैं ना आपके वर्कप्लेस में, ज्यादातर ईमेल्स, मोस्ट ईमेल्स डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट रिप्लाईज, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट. बट जो सेंडर होता है वो ऐसा फील कराता है आपको. सो द सेंडर बेसिकली मेक्स यू फील दैट यू नीड टू रिप्लाई राइट नाउ. ईमेल क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी, एस्पेशली अगर सब्जेक्ट में ये लिख दिया जाए कि अर्जेंट. आप बस कुछ भी हो बस लिख दो सब्जेक्ट में अर्जेंट. उससे रिसीवर को ऐसा लगता है ओ माई गॉड ये तो काफी अर्जेंट है, सारा काम छोड़ के बस पहले इन्हीं को रिप्लाई करो. मेनी मैसेजेस आर इन्फॉर्मेशनल, नॉट एक्शन रिक्वायर्ड. समझ रहे हैं आप? Replying instantly to something that didn't need a response will only create a loop for yourself, क्योंकि आप कोई काम delay करके उसको reply करेंगे तो आपको ये बहुत ही clearly अपने आप से commit करना होगा कि क्या urgent है और क्या नहीं है. बहुत सारे लोग ना अलग अलग color के labels इस्तेमाल करते हैं, तो वो email पहले पढ़ लेते हैं और उनको अगर ऐसा लगता है कि इसको आज ही reply करना है तो उसको एक certain color में उसको label कर देते हैं. I hope you have such habits. नहीं तो एवरी ईमेल यू रिसीव विल बी लाइक अरे बाप रे इसको रिप्लाई कर दूं मैं. ना, डोंट फ्रीक आउट ऑन एवरी ईमेल दैट यू रिसीव.
7: योर ट्यून्ड इन विद चलेश.

0: यार मुझे फिजी जाना था।
1: कब जाना है?
0: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
1: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
0: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
1: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
2: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228।
1: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: Drawing inspiration from urban communities around the world,
4: we present Big O Toy Toy, a brand new urban development in Papa Toy Toy. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
3: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinoi Bus Interchange, and major motorways.
4: Join the new community. Selling now. Find out more at BigOToyToy.nz.
3: That's BIKOTOETOE.NZ.
5: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265-0505 और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265-0505
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।

0: मॉर्निंग बज विद जिलेश
1: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
2: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: होपफुली जैसा ट्रैफिक है इस वक्त ऑन अ ट्यूसडे मॉर्निंग ऐसा ही आप एक्सपीरियंस करते रहें। ओ गुड मॉर्निंग इफ यू जस्ट वोकन अप, कहाँ थे आप, थोड़ा लेट हो गया आपको आज ना। शो का नाम मॉर्निंग बज है, मेरा नाम जलेश है। आज ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 38 मिनट्स, सिल्वरडेल से सिटी लग रहे हैं आपको 54 मिनट्स, मेसी से सिटी 37 मिनट्स, मैनिकाउ से सिटी 43 मिनट्स, ड्रूरी से सिटी 1 आवर प्लस, एंड इफ यू टेकिंग वेल अगर आपको एयरपोर्ट जाना है ऑकलैंड सिटी से लग रहे हैं आपको 27 मिनट, वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पुरिरोवा से सिटी सेंटर लगेंगे 47 मिनट्स, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 14 मिनट्स, लोअर हट से सिटी 29 मिनट, अपर हट से सिटी 45 मिनट्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी ओनली 17 मिनट्स।
2: बी इन द ड्रॉ टू विन $1 of $15 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।

0: जिलेश
1: आपको ना एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन पीस बताता हूँ। पोस्ट में किसी ने एक ओपिनियन पीस लिखा है न्यूजीलैंड के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली यू कैन वर्क फुल टाइम इन न्यूजीलैंड राइट नाउ एंड स्टिल स्ट्रगल टू लिव विद डिग्निटी एंड दैट्स नॉट रियली टू डू विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इशू। वो तो खैर पूरी दुनिया ही उसको एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। वो ये कहते हैं कि 1960 में, आर यू विथ मी, इन द 1960s आयरलैंड वॉज वे पुअरर देन न्यूजीलैंड। टुडे इट इज मोर देन ट्वाइस एज रिच पर पर्सन। तो उन्होंने इवैल्यूएट किया कि आखिर आयरलैंड ने 1960s के बाद से अब तक ऐसा क्या किया कि वो न्यूजीलैंड से इतना आगे निकल गए। एंड व्हाट दे रियलाइज्ड इज आयरलैंड पार्टनर्ड विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर, एस्टोनिया, फिनलैंड एंड यूएई, जो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड जैसे ही है, लेकिन दे आर मोर फोकस्ड ऑन एम्बिशन, इनोवेशन एंड फ्यूचर फोकस्ड है बेसिकली। न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम ये रहा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे और है, उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं सोचा देश की। उन्होंने बस ये सोचा कि यार अगला इलेक्शन कैसे मैं जीत जाऊं, है ना, अगले इलेक्शन के पहले मैं ऐसा क्या बोल दूं कि मेरी देश में वाह वाह हो जाए और मेरी बातें हो एंड स्टफ लाइक दैट, लाइक शेन जोन्स व्हाट ही रिसेंटली डिड विद इमिग्रेशन, इवन एक्ट पार्टी के डेविड सीमोर राइट नाउ। सो इससे बेसिकली देश आगे नहीं बढ़ेगा। देयर इज नथिंग कंस्ट्रक्टिव दैट कम्स आउट ऑफ दिस इज व्हाट the opinion post and stuff is suggesting. Sorry, the post is suggesting. I thought I'll let you know. But I never knew, man. In 1960s, Ireland was poorer than New Zealand. Now it is twice as rich per person than in New Zealand. तो अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार आयरलैंड में रहते हैं, पूछिए यार वो कर क्या रहे हैं? How different is Ireland from New Zealand? Population size pretty similar.

0: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
1: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: Right now at Guthrie Vauron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorisation. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Vauron. Inspiration starts here.
3: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर
4: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट
3: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे DGCell का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माय कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग
5: ट्रैफिक नेचुरली जो बिल्ट अप होता है ऑन अ ट्यूसडे मॉर्निंग दैट्स व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इन ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 38 मिनट्स सिल्वरडेल से सिटी लग रहे हैं आपको 1 आवर प्लस मेसी से सिटी 37 मिनट्स मैनेकाव से सिटी 43 मिनट्स ड्रूरी से सिटी 1 आवर प्लस और अगर आपको एयरपोर्ट जाना है 27 मिनट्स वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पोरिरुआ से सिटी सेंटर लगेंगे 48 मिनट्स लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 14 मिनट्स लोअर हट से सिटी लग रहे हैं 29 मिनट्स अपर हट से सिटी 48 मिनट्स एंड इफ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी ओनली 19 मिनट्स
3: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजीसेल तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक

0: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871।
2: आप लोगों ने सुन ही लिया होगा हमारे स्टार ऑफ द वीक आज के बड़े स्पेशल इंसान है। आई मीन सच अ टैलेंटेड पर्सन। मुझे तो अच्छा लगता है यार, हम एवरी वीक ये जो आर्टिस्ट को चेंज करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं ना, आई फील दैट्स नीडेड एंड टुडे इज नो डिफरेंट। यू हैव अ लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अनारी नंबर 1, 1999 में। हाँ, 1999 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हम में से बहुत सारे लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से दिस आर्टिस्ट इज बेसिकली रूलिंग द इंडस्ट्री। इस गाने को वैसे अभिजीत ने गाया विद जसविंदर नरोला जी। इट्स क्वाइट अ सॉन्ग, यू लव इट ऑन अ ट्यूजडे मॉर्निंग। हियर वी गो।

0: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: Hey, good morning again. अगर आपने just tune in किया, तराना clock में सुबह के 7 बज चुके हैं.
5: Weather report brought to you by Crew Care. Visit crewcare.co.nz.
4: मैं एक्चुअली देख रहा था मौसम का हाल कैसा है इस पूरे हफ्ते. मिनिमम टेम्परेचर सिंगल डिजिट्स में नहीं जा रहा ऑकलैंड के लिए, विच इज आई डोंट नो, आई एक्चुअली वांटेड इट टू बी कोल्ड. या 20 आज का मैक्सिमम है और 14 आज का मिनिमम है. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 21 है और मिनिमम टेम्परेचर 16 है. करंट टेम्परेचर बाहर का 13.4 डिग्रीज है और सनसेट होगा, होल्ड ऑन, 5:33 पे. देखो आपको एक बात बताऊं, क्वींसटाउन में आज का मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्रीज है. करेंटली इट इज 2.8 डिग्रीज इन क्वींसटाउन. एक्चुअली क्वींसटाउन में थ्रू आउट सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर. कल 8 है मिनिमम टेम्परेचर, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है. सो या इट्स कोल्ड.
6: दिस इज तराना न्यूज.
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ हलक्सन सिंगापुर से इस आश्वासन के साथ रवाना होंगे कि न्यूजीलैंड के तटों तक फ्यूल की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में आने वाली संभावित समस्याओं से भी वे वाकिफ हैं. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ हलक्सन ने कल अपने सिंगापुर के समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कहा. सिंगापुर की रिफाइनरियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से सीमित आपूर्ति की नई स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया है. सिंगापुर के प्रधानमंत्री का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाता है तो भी 6 महीने तक स्थिति सामान्य नहीं होगी. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ हलक्सन, फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलस और व्यापार मंत्री टॉड मैकले सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर फूड फॉर फ्यूल वाले मुद्दे पर बातचीत हुई. इस बात को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका के नेतृत्व में कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा. अमेरिका ने कहा है कि उसके नेतृत्व में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही को शुरू किया जा सकेगा. अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि उसके कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरे हैं, लेकिन ईरान ने इस दावे से इनकार किया है. लगभग 2000 वेसल्स अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं. इस बीच ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात पर मिसाइल दागे गए हैं, जिसके बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और रिमोट लर्निंग का आदेश स्कूलों में दिया गया है. एक लीडर डेविड सिमो ने अपनी पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी का बचाव किया है और उन्हें कहा कि ये वास्तविक और उन्हें कहा कि ये दावा करना कि वे न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी के साथ में कम्पीट कर रहे हैं ये गलत है. जर्मनी में भीड़ में गाड़ी चला देने के बाद में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं. ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी देखने को मिली है. पार्टी डबल सेंचुरी बनाते हुए 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर रही है. वहीं 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी महज 80 से कम सीटों पर सिमट रही है. भाजपा की सुनामी के बीच में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को भी जीत मिली है. गौरतलब है कि पिछली बार कांग्रेस को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली थी. इस बार 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी नहीं बल्कि दूसरे 2 नेता है. कांग्रेस ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की है वह फरक्का और रानी नगर है. फरक्का से मोहताब शेख को जीत मिली है, वह 8,000 ज्यादा मार्जिन से जीत गए हैं. उन्होंने भाजपा के सुनील चौधरी को हराया. सुनील को 554,857 वोट मिले. वहीं 30 नंबर पर टीएमसी उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम रहे हैं, जिन्हें 47,256 वोट मिले हैं.
6: स्पोर्ट्स न्यूज.
7: आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को 8 बॉल्स के रहते 6 विकेट से हरा दिया. लखनऊ ने 20 ओवर्स में 228 फॉर 5 बनाए थे, जबकि मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर्स में 229 फॉर 4 बनाने के बाद में इस मैच को अपने नाम कर लिया. सुपर जायंट्स की ओर से निकलस पुरन ने 63, मिचेल मार्श ने 44 रनों का योगदान दिया। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 84, रायन रिकल्टन ने 83 रन्स बनाए। आईपीएल पर जानकारी आपके लिए चेसिस और इनडेलेबल होम्स की ओर से। इंग्लिश प्रीमियर लीग मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन के बीच में मैच शुरू हो गया है। दोनों टीमें निल ओल से बराबर चल रही हैं। इससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चेल्सी को 3-1 से हरा दिया है और रेलिगेशन के खतरे से वह बच रही है। चेल्सी को लगातार छठे प्रीमियर लीग मैच में हार का सामना करना पड़ा है।
2: Auckland and Wellington traffic report.
8: Enjoy the rich, creamy taste of Kashish yogurt from Kashish Foods. Fresh, delicious aur har meal ke liye bilkul perfect.
4: Hey, Auckland mein agar aap Northern Motorway istemal kar rahe hain, Consolation Drive se City pahunchne mein lag rahe hain aapko 23 minutes, Silverdale se City lag rahe hain 52 minutes, Messi se City lag rahe hain aapko 26 minutes, Manukau se City 25 minutes aur Drury se City lag rahe hain aapko 52 minutes. अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम ऑकलैंड सिटी टू द एयरपोर्ट, होल्ड ऑन, इट्स टेकिंग यू ओनली 25 मिनट्स। वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पुरीरुआ से सिटी सेंटर लग रहे हैं आपको 28 मिनट, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 19 मिनट्स, लोअर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 16 मिनट, अपर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 37 मिनट्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी इट्स टेकिंग यू 18 मिनट्स। अभी हमने वेलिंगटन का ट्रैफिक बताया, मैं एक हेल्प चाह रहा हूं एक्चुअली। अगर आप वेलिंगटन से हमारा रेडियो शो इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे वेलिंगटन के किसी एक लकी लिसनर का गाना इस आवर का सबसे पहला गाना बने। सो इफ यू आर लिसनिंग टू अ शो राइट नाउ फ्रॉम वेलिंगटन, यू कैन ईदर गिव अस अ कॉल ऑन 3031386, ओके, दैट्स द नंबर 3031386, नहीं तो यू कैन सेंड अस एन एसएमएस ऑन 8812। जब आप वेलिंगटन से हमें कॉल करते हैं तो आपको आगे ऑकलैंड का कोड लगाना पड़ता है 09। So make sure you also do that 09303-1386, okay? I'll play your favorite song in 50 seconds actually.
8: Ghar ke liye Kashish yogurt ki goodness from Kashish Food. Eat better, live better. Available in

0: मनाने,
1: आ गए हैं जिनेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
2: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
3: मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज,
4: मॉर्निंग बज ब्रॉट टू यू बाय वेस्टर्न यूनियन इंडिया। पैसे भेजे तुरंत अपने बैंक अकाउंट में या कैश पिकअप।
5: यू नो व्हाट, नाउ आई एम थिंकिंग, मैंने बोल तो दिया कि हाँ आप मुझे कॉल करो और SMS करो, मैं आपके गाने चलाऊंगा। नाउ मेरे पास SMS में ही इतने ज्यादा सॉन्ग रिक्वेस्ट आ चुके हैं, हम लाइक यार कौन सा चलाऊं और कौन सा नहीं चलाऊं। देन वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स हुए हैं, सो लेकिन ऑब्वियसली विल बी एबल टू सिलेक्ट जस्ट वन पर्सन्स फेवरेट सॉन्ग। एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ये रिक्वेस्ट में आया। एक्चुअली तीन गाने जो SMS के थ्रू रिक्वेस्ट में आया वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी डिसाइड कीजिए इसमें से कौन सा चलना चाहिए। पहला है ये वाला।
6: सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे।
5: Now, this song request again comes from Wellington. उसके बाद जो गाना है वो है ये वाला, सुनो इसे। And then we also have this song request from Wellington. There we go. Confusion, I tell you. But okay, we'll just randomly select a song. That's not an issue. Hey, there's one thing you need to know. New Zealand government ne ek policy change ki hai. Abhi jitne bhi public transport se mera matlab Uber wagera nahi hai. I'm talking about buses, ferries and interliners jo hote hain, uski baat kar raha hu main. So what has happened is pehle na ye log diesel पहले खरीद लेते थे, तो 3 महीने का स्टॉक फॉर एग्जांपल खरीद लिया इन्होंने, ठीक है, डीजल पहले खरीद लिया, सरकार को बोल दिया कि हमारा रनिंग कॉस्ट इतना है, फिर सरकार उस हिसाब से 51% ऑफ द रनिंग कॉस्ट उनको दे देती थी। अब उसमें क्या होता था, उनका डीजल का जो प्राइस है वो लॉक इन हो जाता था 3 महीने तक, और उसके बीच में अगर डीजल का प्राइस ऊपर चला गया, सो दीज कंपनीज हैड टू बेयर द कॉस्ट देमसेल्व्स। ओके, नाउ द गवर्नमेंट सेट कि आप हर महीने प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वंस एवरी 3 months यू कैन नाउ डू इट वंस एवरी मंथ। सो दैट इज अ बिग रिलीफ टू पीपल हु आर बेसिकली इन फेरीज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर आई गेस। सो दैट हैपेंड। दिस इज द सॉन्ग वी सिलेक्टेड, आतिफ असलम का गाना है ये, आपको अच्छा लगेगा ऑन अ ट्यूजडे मॉर्निंग। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम दिस मूवी जिसका नाम है बत्ती गुल मीटर चालू।

0: मैं यमराज हूँ।
1: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
0: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
1: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
0: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255550 पर।

0: उत्सव और बहुत कुछ।
1: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
0: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
2: दिस इज जुलेश, न्यूजीलैंड्स रेडियो लिसनिंग हैबिट।

0: का इलाज करवा के देख लिया, पर ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही।
1: तो डॉक्टर अजीत के पास गई, उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर देखो।
0: आयुर्वेदिक वो काम करता है?
1: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
0: पर यह सुरक्षित तो है ना?
1: सिर्फ सुरक्षित नहीं, यह तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
2: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurveda.com।
3: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और डुबे ब्लैंकेट्स स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस को, आसान भरोसेमंद और 24/7।
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माय कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: फॉर द वन हुज ऑलवेज बीन देयर, सेलिब्रेट हर विद पेंडोरा। Buy 2 full price pieces and receive a third one free just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
6: Science says what research says in plain language with Jalesh.
7: मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने ऐसा सुना है, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैन आई गॉट बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, या माय स्टमक इज रंबलिंग। ये क्या है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, क्या होता है? साइंस ने इस बात को समझाया है, इसे ध्यान से सुनना। एंड यू आर वेरी लकी, यू आर लिसनिंग टू आवर शो राइट नाउ सो दैट यू कैन हियर दिस। द गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड थ्रू द गट ब्रेन एक्सिस। इसके बारे में आपने सुना होगा राइट, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियोज आते हैं, दैट हाउ योर गट एंड योर ब्रेन इज कनेक्टेड। नाउ स्ट्रेस सिग्नल्स अफेक्ट डाइजेशन एंड गट एक्टिविटी। तो डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं ना, आप कहते हैं यार मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो पूछते हैं आपसे कि स्ट्रेस है लाइफ में कोई, तो आप भी सोचते होंगे यार स्ट्रेस का और गट का क्या कनेक्शन है। लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन है। आपका जो आप अगर नर्वस भी फील करते होंगे ना बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, इवन देन यू विल रियलाइज द सेम डे योर डाइजेशन विल टेक अ हिट। ठीक है ना, स्ट्रेस, नर्वसनेस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डाइजेशन। अब बटरफ्लाइज की बात करते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल आपको 100 लोगों के बीच माइक दे दिया जाए और बोलें कि जाओ जाके एक स्पीच दो, सम पीपल गेट रियली नर्वस, रहते लगे ओह माय गॉड ये भगवान सब मुझे देखेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो जो सेंसेशन है, इट इज द फिजिकल रिस्पॉन्स टू योर इमोशनल सिग्नल। Your stomach reacts to your brain's signal. That's how it is. Your brain and your gut is connected, which is why the butterflies.

0: is Tarana News.
1: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ लक्सन ने इस आश्वासन के साथ सिंगापुर से वापस लौट रहे हैं कि फ्यूल सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा। न्यूजीलैंड के लगभग एक तिहाई फ्यूल को सिंगापुर में रिफाइन किया जाता है। न्यूजीलैंड और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों के बीच में बैठक के बाद में इस बात को लेकर के समझौता हुआ है कि आपूर्ति जारी रहेगी, यहां तक कि संकट के समय में भी सिंगापुर से फ्यूल की सप्लाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ लक्सन ने कल अपने सिंगापुर के समकक्ष लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच में फूड फॉर फ्यूल के संबंध में समझौता हुआ है, यानी सिंगापुर फ्यूल की आपूर्ति जारी रखेगा और बदले में न्यूजीलैंड से भोजन सामग्री सिंगापुर भेजा जाएगा। अमेरिका के नर्तत में स्टेट ऑफ होमोज खोलने को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह वेसल्स को एस्कोर्ट करेगा। लगभग 2000 वेसल्स स्टेट ऑफ होमोज पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जानकारी सामने आई है कि यूएस सेना ने ईरान के 6 छोटे नावों को डुबो दिया है। एक और जबकि अमेरिका स्टेट ऑफ होमोज से वेसल्स की आवाजाही को सुनिश्चित कर रहा है, वहीं ईरान की ओर से पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइल दागे गए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात पर मिसाइल हमले के बाद में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है तथा स्कूलों को रिमोट लर्निंग का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बंगाल में बीजेपी 200 से अधिक सीटें जीतती दिख रही है। असम में भी बीजेपी की आंधी आई है और पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। तमिलनाडु में इस बार खेल ही बदल गया है। एक्टर विजय की TVK बहुमत के करीब पहुंच गई है। उधर केरल में कांग्रेस गठबंधन ने जीत का दावा कर लिया है। पुडुचेरी में फिर से NDA की सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित किया है। PM मोदी ने कहा, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे तब मैंने यहीं इसी जगह से आप सबको कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, उन्होंने कहा कि आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में भाजपा NDA सरकार है। फिजी के प्रधानमंत्री सिथिवेनी रमुका का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यह तय किया गया है कि देश में इस वक्त स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थिर है।
2: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
3: पापाटोय, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड, हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग।
1: ऑकलैंड ट्रैफिक इस वक्त सदर्न मोटरवे पर मैनकाउ से 40, ड्यूरी से 10, नॉर्थ वेस्टर्न पर मेसी से 38, नॉर्दर्न पर कॉन्स्टलेशन ड्राइव से 35, टू द एयरपोर्ट 29 मिनट्स। वेलिंगटन में हेवी इन टू द टेरिस टनल हेगस्टोन स्ट्रीट, स्टेट हवन पुरीरुआ सिटी सेंटर से सीबीडी तक 35, लवाहत से 16 मिनट्स ऑलमोस्ट फ्री फ्लोइंग है, अपाहत से बिजी 53, टू द एयरपोर्ट 17 मिनट्स।
3: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड।
4: बच्चों बताओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
5: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
4: जीनियस। अब बताओ, रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
5: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
7: आशिक होम्स लिमिटेड, फॉर द फर्स्ट टाइम रेंट टू बाय, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू ओन अ ब्रांड न्यू होम। इफ यू हैव कीवी सेवर एंड सम डेट, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
0: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइक्लेबल आइटम्स तमकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
8: मॉर्निंग बज़, मॉर्निंग बज़, मॉर्निंग बज़।
9: सुनिए मॉर्निंग बज़ सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।

0: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
1: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
0: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
1: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो।
0: क्या स्पेशल है उनमें?
1: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
2: साली जी, ऑकलैंड फिर कब आओगी?
0: जीजू मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है अब हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में ही बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड एडिंगटन क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के डिलिशियस बिस्किट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक्स, सब कुछ मिलता है। मैं तो कॉल करके ही अपना ऑर्डर दे देती हूँ 0800-786-101 पे। अब तो यहाँ क्राइस्टचर्च में ही है मेरा बेकन बीन्स।
2: तो हमसे मिलने नहीं आओगी?
0: म्यूजिक कम करो। अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
3: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
3: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
0: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
4: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265-0505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
5: मोआ पॉइंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कुक स्ट्रेट में डिस्चार्ज हो रहा है और वेलिंगटन साउथ कोस्ट तक जा सकता है। वाटर क्वालिटी जानकारियों के लिए हमेशा याद करके LAWA वेबसाइट देखें। तैरने जाने से पहले LAWA.org.nz देख लें। साउथ कोस्ट के तारकेना बे से दूर रहें। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तट के करीब डिस्चार्ज हो सकता है शॉर्ट नोटिस पर और बगैर चेतावनी के, खासतौर पर गंभीर बारिश के समय। और जानकारी के लिए wellingtonwater.co.nz देखें।
6: Money Matters on Morning Number 1 brought to you by Global Financial Service Limited. Weekdays at 7:45 AM. Global Finance, phone 09255-5500.
7: मैं ना आपको पिछले महीने की बात बताता हूँ। पिछले महीने मैं किसी घर गया था तो ऐसी कैजुअली बातें हो रही थी ना, तो वो हमारा शो सुनते हैं, उन्होंने सुना है अजय जी को कई बार रेडियो पर। देखो लेकिन आप लोगों का बिहेवियर देखो, ठीक है, उसके बावजूद लोग सोचते हैं कि यार खुद एक बार रिस्क लेके देख देते हैं। तो वो नया घर खरीद रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ भाई आप वो नया घर देख रहे थे, लोन मिल गया आपको? कह रहे हाँ हाँ लोन मिल गया मुझे। मैं कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे? कह रहे कुछ नहीं, मैं गया डायरेक्टली बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला ये मेरी इनकम है, मुझे लोन दे दिया। मैंने कहा तो हो गया पर्पस सॉल्व आपका? कह रहा नहीं पर्पस नहीं सॉल्व हुआ, लोन मिल गया। मैं कहा मतलब? कह रहे जितने का घर मैंने देखा था उतने का लोन नहीं मिला, उससे बहुत कम मिला। तो मैंने कहा फिर क्या फायदा है? आप जो घर खरीदना चाहते हैं जितना लोन आपको मिलना चाहिए उतना लोन मिलेगा, तो ही तो आप घर खरीदेंगे। आज हम अजय जी से इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि जब आप घर खरीदने निकले हैं मार्केट में, तो जितने पैसे आपको चाहिए जितने का लोन उतने का ही लोन मिले, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। गुड मॉर्निंग अजय जी।
8: गुड मॉर्निंग जिले जी, मैं आपका क्वेश्चन सुन रहा था
7: जी।
8: नॉर्मली हर बैंक का अपना एक लेंडिंग क्राइटेरिया होता है, और बैंक जो लोन अप्रूव करता है वो लेंडिंग क्राइटेरिया के हिसाब से ही अप्रूव करता है। तो उनको जिन्होंने जो फ्रेंड्स थे उनका जो लेंडिंग क्राइटेरिया है, जितना लोन बना होगा उतना बैंक ने दे दिया होगा। परंतु आप कुछ अगर प्लानिंग शुरू से करें तो हो सकता है कि आपका जितना लोन आपको बनता है उसके साथ ज्यादा भी बन जाए अगर आपको ज्यादा चाहिए तो, प्रोवाइडेड आप रीपे भी कर सकते हैं उस लोन को। नंबर वन, हम लोग क्रेडिट कार्ड लेके रखते हैं, अच्छी खासी लिमिट लेके रखते हैं, बट उसको उतना यूज नहीं करते। हो सकता है आपके पास क्रेडिट कार्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ही लोन आपको कम मिलेगा, तो आप अपने लोन लेते समय अपने क्रेडिट कार्ड को उतना कम कर दीजिए लिमिट को जितना आप यूज करते हैं, या उसके आसपास कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास 20,000 के क्रेडिट कार्ड हैं, आप 2,000 यूज करते हैं, तो ज्यादा आप 5,000 का रख लीजिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट कम होगी तो लोन आपको ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार से हमने छोटे छोटे हायर परचेजेस लिए होते हैं जिनका हम पेमेंट कर रहे होते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपना हायर परचेज का पेमेंट कम कर सकते हैं या खत्म ही कर सकते हैं, तो फिर आपको जितना हायर परचेज का रिपेमेंट कम होगा उतना ही आपका लोन ज्यादा मिलेगा आपको, तो वो कम करना चाहिए। अगर आपका पर्सनल लोन्स हैं और आप सोचते हैं कि इसको खत्म कर सकते हैं या इसको रिपेमेंट को कम कर सकते हैं, तो फिर आपका जितना रिपेमेंट कम होगा पर्सनल लोन का या पर्सनल लोन खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका लोन इंटाइटलमेंट बढ़ जाएगा हाउसिंग लोन का। तो इसके साथ साथ आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी आपके पास इनकम है कहीं से भी आ रही हो, चाहे वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप सिल्ली हो आपकी या मिक्स हो आपका, या आपके पास वोटर इनकम आती हो या रेंटल इनकम आती है, वो सबकी सब आपकी बैंक में आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जितनी इनकम ज़्यादा होती है बैंक उतना ही लोन ज़्यादा देता है आपको, क्योंकि बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है इनकम को देखना, क्योंकि बैंक उतना ही लोन देना चाहेगा आपको जितना आप रीपे कर सकेंगे, और बैंक मेक्योर करता है कि लोन लेने के बाद आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपके पास जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस हैं, और डिपॉजिट का मतलब सेविंग्स जो अपनी ओन है वो भी हो सकती है, अगर आपको किसी सेवर में आप एंटाइटल हैं किसी सेवर के उसके हिसाब से पैसा विड्रा करने के लिए तो आप वो भी आपका डिपॉजिट माना जाएगा, अगर आप ओवरसीज से पैसा ला सकती हैं तो वो भी फिर आपका डिपॉजिट माना जाएगा, अगर आपने कोई एसेट सेल किया है और उससे आपको पैसा मिला है तो वो भी आपका डिपॉजिट माना जाएगा, अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है और आपको गिफ्ट मिल सकता है तो वो भी आपका गिफ्ट अमाउंट भी डिपॉजिट ही माना जाता है। तो अगर आप शुरू से घर लेने की सोच रहे हैं और लोन लेने की भी सोच रहे हैं तो मेक श्योर करना चाहिए कि इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका अगर ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि आपको शायद उतना लोन मिल पाए जितना आप चाहते हैं और जितने की आपके अंदर कैपेसिटी है उसको रीपे करने की भी।
7: जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप भी ग्लोबल फाइनेंस को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर है 09255500, नोटेड डाउन, इट इज 09255500। थैंक यू अजय जी, बाय बाय।
8: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन
0: ट्रैफिक रिपोर्ट। सैटरडे 9 मई को तराना टीम के साथ आए शॉपिंग करने के लिए एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर एंड गेट सम एक्सक्लूसिव डील्स, जैसे वन फ्री पिलो विद एवरी परचेज ऑफ एनी बेड।
7: ऑकलैंड में अगर आप नॉर्दर्न मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 37 मिनट, सिल्वरडेल से सिटी लग रहे हैं आपको 1 आवर प्लस, मेसी से सिटी 38 मिनट्स, मानिका से सिटी 45 मिनट्स, ड्यूरी से सिटी 1 आवर 8 मिनट्स प्लस, अगर आपको एयरपोर्ट जाना लगेंगे 26 मिनट, वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पुरिरोवा से सिटी सेंटर लगेंगे 45 मिनट्स, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 19 मिनट्स, लोअर हट से सिटी लग रहे हैं 16 मिनट, अपर हट से सिटी 1 आवर प्लस, एंड इफ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी ओनली 18 मिनट्स।
0: Mattresses starting from just $299. The widest range of budget beds and high-tech beds at NZ Beds. So, I in ke Manikau Supercenter store mein on Saturday 9th May at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
9: Taji, AJ ke ghar diya aur humme?
10: Tumhe paas hai ghar?
9: Wo to hum kharida hai. Tum nahi dega humme kuch.
10: Ye tum log ko kya mangta humse hai? Humme de dega ki nahi yaar?
9: Raan do, nahi mangta.
10: Tum chahe muh phulao, chahe chillao. Ek सेंट नहीं देगा।
9: हाँ सब लेके जाना।
10: हाँ हम लेके जाएगा। लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
5: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
0: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला या बस सीधा टब से खाने का दिल हो, तो इंजॉय करे कशिश नेचुरल योगर्ट, क्योंकि ये है naturally delicious. Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt. Is Mother's Day ko banaye aur bhi special DG Cell ke saath. Bas bheje $20 ya usse zyada ka top up ya $300 ya usse zyada ka cash transfer inki kisi bhi partner website se My Cash Wallet ke saath to your family and friends in the Pacific. Aur aapka naam turant jayega draw mein to win one of the 15 $500 cash prize. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में, इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265-0505, और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265-0505,
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।

0: डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन,
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748711 पर।

0: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना टाइम चेक,
3: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर, लिव बेटर विद कशिश फूड्स।
4: अच्छा, टाइम, व्हाट इज इट? इट्स 8 o'clock, 8 बज चुके हैं।
5: Weather report brought to you by Krukia. Visit krukia.co.nz.
4: मौसम का हाल ठीक है आज ऑकलैंड में। मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्रीज है, मिनिमम टेम्परेचर 14 है। अगर आप लॉन्ड्री करके कपड़े अगर आपने अंदर नहीं रखे थे, बारिश होने वाली है आज ऑकलैंड में। राइट नाउ द वेदर लुक्स प्रीटी क्लियर, बट बाय आफ्टरनून इट माइट स्टार्ट रेनिंग। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 21 है, मिनिमम टेम्परेचर 16 है। करंट टेम्परेचर ऑकलैंड शहर का 13.4 डिग्रीज है और सनसेट होगा 5:33 पर।
6: दिस इज तराना न्यूज।
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। लिबरेटर क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच में फ्यूल सप्लाई को लेकर हुए समझौते का स्वागत किया है। न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच में फ्यूल फॉर फूड वाला एक समझौता हुआ है, जिसके तहत सिंगापुर न्यूजीलैंड को फ्यूल आपूर्ति करेगा। बदले में न्यूजीलैंड पर्याप्त भोजन सामग्री सिंगापुर को सप्लाई करेगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलस और व्यापार मंत्री टॉड मैकले सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने न्यूजीलैंड को आश्वासन दिया है कि फ्यूल आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुल जाने के बाद भी 6 महीनों तक फ्यूल सप्लाई पर असर पड़ता रहेगा, तथा भविष्य में सिंगापुर से जो फ्यूल मिलने वाला है उसका दाम भी बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका के नेतृत्व में स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह वेसल्स को एस्कोर्ट करेगा। लगभग 2000 वेसल्स स्टेट ऑफ होर्मुज पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जानकारी सामने आई है कि यूएस सेना ने ईरान के 6 छोटे नावों को डुबो दिया है। एक और, जबकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वेसल्स की आवाजाही को सुनिश्चित कर रहा है, वहीं ईरान की ओर से पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइल दागे गए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात पर मिसाइल हमले के बाद में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है तथा स्कूलों को रिमोट लर्निंग का आदेश दिया गया है। लेबर नेता क्रिस हिपकिंस का कहना है कि वे नहीं सोचते कि एक लीडर डेविड सिमो ने सोच समझकर अपनी पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को देश में $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी भरना पड़ेगा। लेबर नेता क्रिस हिपकिंस का कहना है कि इस तरह की लेवी लागू करने का मतलब होगा कि माइग्रेंट्स देश आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का रुख कर सकते हैं।
8: I think David Seymour hasn't thought through some of the consequences of what he announced over the weekend. For example, his new migrant levy that they would pay daily is ultimately likely to flow through into increased costs for New Zealanders who rely on those migrant workers.
7: भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत हासिल की, साथ ही असम और पांडुचेरी में भी सत्ता में वापसी की है। इस बड़ी जीत के बाद में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, जब सालों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर भी खुशी होती है। वह खुशी आज मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन 5 राज्यों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र हमारे रक्त में दौड़ता हुआ संस्कार है। आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, बल्कि आज भारत का संविधान भी जीता है। फिजी के प्रधानमंत्री सिथिवेनी रमुका का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यह तय किया गया है कि देश में इस वक्त स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थिर है।
6: स्पोर्ट्स न्यूज।
7: इंग्लिश प्रीमियर लीग मुकाबले में हाफ टाइम तक मैनचेस्टर सिटी की जीत एवर्टन से उसके होम ग्राउंड में 1-0 से होने लगी है। इस मैच के 48th मिनट में डोकू ने मैनचेस्टर सिटी की ओर से गोल बनाकर की टीम को हाफ टाइम तक 1-0 से आगे कर दिया है। अगर परिणाम इसी तरह से रहा तो मैनचेस्टर सिटी के पास में 34 मैचेस के बाद में 73 पॉइंट्स हो जाएंगे। आर्सेनल 76 पॉइंट्स लेकर के टॉप पर है। आज सुबह क्रिस वुड की नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम ने चेल्सी को 3-1 से हरा दिया। यह चेल्सी की लगातार छठी हार रही है। वहीं पॉइंट्स टेबल पर नॉटिंघम फॉरेस्ट 16वें स्थान पर, उसके पास में 42 पॉइंट्स है तथा वह रेलिगेशन से बचती हुई नजर आ रही है। बानली और ओल्स की टीमें रेलिगेट हो चुकी हैं। आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 8 बॉल्स के रहते लखनऊ को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 228 फॉर 5 बनाए थे, जिसमें निकोलस पोरन के 63, मिचेल मार्श के 44, हेमंत सिंह के 40 रन शामिल है। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर्स में 229 फॉर 4 बनाने के बाद में इस मैच को अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा ने इंडियंस की ओर से सबसे ज्यादा 84 जबकि रायन रिकल्टन ने 83 रनों का योगदान दिया था। पॉइंट्स टेबल पर लखनऊ सबसे नीचे है, उसके पास में 4 पॉइंट्स है। मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर, उसके पास 6 पॉइंट्स है। आईपीएल पर जानकारी चेसर्स और इंडेलिबल होम्स की ओर से।
6: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
3: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
4: राइट, ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 35 मिनट, सिल्वरडेल से सिटी लग रहे हैं आपको 1 आवर प्लस, मेसी से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 46 मिनट्स, मैनकाओ से सिटी लग रहे हैं 51 मिनट्स और ड्रूरी से सिटी 1 आवर 8 मिनट्स प्लस। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है ऑकलैंड सिटी से लगेंगे 26 मिनट। वेलिंगटन सदर्न मोटरवे, दिस इज स्टेट हाईवे 1, सॉरी, पोरेरुआ से सिटी सेंटर लगेंगे 44 मिनट्स, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 19 मिनट्स, लोअर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 16 मिनट्स और अपर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 1 आवर प्लस। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है वेलिंगटन सिटी से लगेंगे 17 मिनट। अर्बन मोटरवे इज स्लो, रियली हैवी फ्रॉम थ्रॉन्डन की, तो अगर आप उस तरफ ड्राइव कर रहे हैं यू आर एक्सपीरियंसिंग ट्रैफिक, दैट्स बिकॉज़ देयर इज ट्रैफिक।
3: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड

0: आशीष और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज।
3: अभी ना रेडियो पे हम मदर्स डे सेलिब्रेशन भी एंजॉय करेंगे। इस साल हो क्या गया? एक्चुअली नो, ये सरप्राइज है तो मैं बता नहीं सकता आपको, अगले हफ्ते बताऊंगा मैं, आई प्रॉमिस। बट दिस इज वन थिंग आई कैन शेयर विथ यू एंड इट इज दिस। अगर आप इस मदर्स डे डिजी सेल इस्तेमाल करते हैं, सो बेसिकली अगर आप $20 टॉप अप सेंड करते हैं या आप $300 का मनी ट्रांसफर करते हैं टू माई कैश वॉलेट इन द पैसिफिक, यू स्टैंड अ चांस टू विन वन ऑफ $15,500 कैश प्राइज। दैट्स गुड इजन इट। जितने लोग फीजी में रहते हैं, आई एम श्योर उन सबको पता है डीजी सेल के बारे में। देर प्रीटी मैसिव, DIGICEL। यू कनेक्ट, यू शेयर एंड यू विन। सम टीज एंड सीज डू अप्लाई, चेक इट आउट। आप इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट टू सेंड मनी। $300 की तो बात है, यू सेंड दैट मनी और किसको भेज रहे हैं आप? अपनी मम्मा को? तो आई मीन उसमें तो फिर सेकेंड थॉट भी नहीं आना चाहिए आपको। एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन $500 कैश प्राइज। Alright, let's start our 8 o'clock hour with Arijit Singh and Aditi Singh Sharma. Good morning.

0: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
1: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
2: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
1: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
2: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो।
1: क्या स्पेशल है उनमें?
2: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
3: लुकिंग फॉर दैट अनफॉरगेटेबल हॉलिडे इन पैराडाइज? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way, or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
5: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
2: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है, और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल्ला लीगल सर्विसेज, फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 022-353-0872 और विजिट gullaw.co.nz।
6: दिस इज तराना न्यूज़।
7: अमेरिका ने ईरानी मीडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि उसकी युद्धपोत पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, और अमेरिकी बल ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखे हुए हैं। इससे पहले ईरान की मीडिया में जानकारी सामने आई थी कि अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर दो मिसाइलें दागी गई है। यह भी जानकारी सामने आई है कि ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइलें दागी गए हैं। इन ताजा हमलों से मध्य पूर्व में संकट और गहरा सकता है। अमेरिका के उस दावे के बाद में कि ईरान के 6 छोटे जहाजों को डुबो दिया गया है, उसके बाद में ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइलें दागी गई हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है तथा स्कूलों को रिमोट लर्निंग का आदेश दिया गया है। बीएनजेड ने 2 हफ्तों में दूसरी बार फिक्स टर्म मॉर्गेज रेट्स में बढ़ोतरी करने की अनाउंसमेंट की है। 18 मंथ टर्म को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.95% कर दिया गया है, जबकि 2 ईयर टर्म को 5.19% और 3 ईयर टर्म को 5.39% कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों की प्रॉपर्टी में 20% से कम इक्विटी है, उन्हें लो इक्विटी इंटरेस्ट रेट प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। इंटर आइलैंडर फेरी ने फ्यूल से चार्ज में और बढ़ोतरी की है। कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स जो कुक स्ट्रेट पार कर रहे हैं, उनके लिए फ्यूल से चार्ज को 54% कर दिया गया है। एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से यह कदम उठाया गया है। क्यूबिरेलो और मिनिस्टर फॉर रेल विंस्टन पीटर्स का कहना है कि इंटर आइलैंड फेरी के खर्चे बढ़ रहे हैं तथा वह खुद इन खर्चों को नहीं सह पाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घोषित पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए उनमें भाजपा की जीत को चुनाव चोरी बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने इन दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव इलेक्शन कमीशन की मदद से जीत कर चुराए हैं। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस बात से भी सहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। एवर्टन और मैनचेस्टर सिटी के बीच में जारी प्रीमियर लीग मैच में अभी भी मैनचेस्टर सिटी की जीत 1-0 से हो रही। मैच दूसरे हिस्से में जारी।
6: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
8: बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लिसन टू सेगमेंट्स ऑन रेडियो टोरंटो। द ट्रैफिक रिपोर्ट एयर ड्यूरिंग पीक आवर्स 6 एएम टू 9 एएम एंड 3 पीएम टू 7 पीएम।
7: ट्रैफिक सिटी बाउंड मैनक हाउस से 51 डूरी सेनावा आपको लगेगा, हैवी एट पापाकुरा, नॉर्थ वेस्टर्न पर मेसी से 46, नॉर्दर्न पर कॉन्स्टलेशन ड्राइव से 33, टू द एयरपोर्ट 26 मिनट्स, वेलिंगटन में एवन मोटरवे स्लो रियली हैवी फ्रॉम थॉन्टन की Puriruwa City Center se 41, Lawahat se 16, Apahat se 55 to the airport 17 minutes.
8: Increase brand awareness by contacting Ajeshni at 02196138 to secure a sponsorship.

0: Everyday Explained, why everyday things work the way they do, with Jalesh.
1: एक बात बताइए, आप न्यूजीलैंड में ट्रेन इस्तेमाल करते हैं? Now, if you do use a train, you will notice something. If not, notice it the next time. Some trains, जब वो स्पीड में होती है ना, they basically tilt or they lean into the curves. You know why they do it? Why do some trains tilt on the curves? They do that to maintain their speed. ये जो रिडक्शन है ना, ये जो कर्व में ट्रेन्स करती है, और पूरे दुनिया में होता है. आई थिंक, आई मीन, यू लीव अलोन जापान असाइड, बिकॉज जापान ऑब्वियसली यूजेस अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेन्स. जो भी लोग जापान जाके आते हैं ना, वो उनके डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं और उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं, यार, पूरे वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जापान से कम 50 साल पीछे है. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट जापान ट्रेन्स एंड इवन चाइना दीज डेज. चाइना इज कम्पीटिंग नेक ऑन नेक. एनीवेज, reduces the feeling of sideways force for passengers is why the trains actually tilt on the curves. For example, faster trains on curved tracks without slowing down are more dangerous. इसलिए उनको उस तरह का provision दिया जाता है कि भाई साहब, आप जो है वो थोड़ा सा tilt कर लीजिए as a train so that you can maintain your speed and also maintain the safety of the passengers.
2: Morning buzz, morning buzz, morning buzz.
3: सुनिए Morning Buzz सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ.

0: जैसा लखनऊ गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रेज से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
3: A good lawyer is recognized for their experience, trustworthiness, and understanding of their client's legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction, for property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney, and other legal matters. Call Schaubner on 021-625-708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
4: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.

जावेद अली ने गाया विद श्रेया घोषाल। अगर आप ये मूवी देखेंगे ना भूत बंगला, इस गाने पे परफॉर्म करते हैं नन अदर देन अक्षय कुमार एंड तब्बू। आई मीन इट्स क्वाइट अ सॉन्ग या, और जिस टाइम पे ये गाना आता है और द वे द सॉन्ग टेक्स द मूवी अहेड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। चेक इट आउट, इट्स कॉल्ड भूत बंगला। आपने वैसे हमारा आज का शो सुना, उस बात के लिए आपको शुक्रिया। अब मैं आपसे कब मिलूंगा? कल मिलूंगा, राइट? आई मीन दैट शुड बी द नेचुरल आंसर। यस, मे बी नॉट, यस, आई डोंट नो। आप अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू व्हेन आई सी यू नेक्स्ट। एंड कोई इंपॉर्टेंट बात भूल तो नहीं है मैं बताने को आप? ना, सारी बातें मैंने कवर कर दी है वैसे। वो डिजी सेल वाली बात भी मैंने आपको बता दी, और ओसीआर, यस ओसीआर, तो आई मीन यू स्टिल हैव टाइम, इट्स 27th ऑफ मे, सो वी स्टिल हैव सम टाइम फॉर द ओसीआर, बट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हे, यस, स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं राइट नाउ अगेन, कुछ समय के लिए वैसे इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल हुए थे बिकॉज यू माइट हैव रियलाइज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एकदम से बातें होना बंद हो चुकी है, बट गेस व्हाट, द कॉन्वर्जेशन हैज स्टार्टेड अगैन, दैट्स जस्ट डोनाल्ड ट्रंप फॉर यू मैन। उन्होंने वापस से वो अपना ट्रुथ सोशल पे वो जो लिखते हैं रात को लिखना शुरू कर दिया है, तो ओवरनाइट फिर ईरान ने जो है वो यूएई पे कुछ मिसाइल्स दाग दी है, एंड नाउ द टेंशन हैज रिजन अगैन, वापस से ऑल प्राइजेस ऊपर चले गए हैं एंड स्टॉक मार्केट्स हैव बेसिकली स्टार्टेड टू रिएक्ट। सो कीप अ क्लोज आई अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप इफ यू आर अबाउट टू इन्वेस्ट टुनाइट। मैं आपसे मिलता हूं कल परसों उसके बाद, आई एम नॉट श्योर, मे बी टुमारो। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू, बाय।

0: तराना, आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
2: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748871 पर।

0: यमराज हूँ।
1: ओहो जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
0: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
1: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
0: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255500 पर।
2: डैडी कैसे? राम राम।
3: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
2: पेंटिंग हुए डैडी।
3: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे, का नाम है उन लोगों के?
2: इंडेलिबल होम्स।
3: हमारे पास भी 10-15 घर रहता, अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
2: अभी भी सकता बनाए डैडी, बनाए के हमें दे दो। हाँ,
3: वाह।
4: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800 233 111।

0: Chasers Abuja Mix ka full range dekhe on chasers.co.nz. Chasers, feel the flavor.
1: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर
2: हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है अच्छा बेटा फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है माँ को सब पता होता है
3: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे
4: रेडियो तराना
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
5: Radio Tarana ke studio mein subah ke 9 baje hain.
6: This is Tarana News.
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या पेशियन गल्फ में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश करती है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा इससे दोनों देशों के बीच में पहले से ही नाजुक युद्ध विराम की परीक्षा होगी फॉक्स न्यूज से फोन पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के वार्ताकार पहले की तुलना में कहीं अधिक लचीले हैं उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आगे बढ़ने के केवल दो ही रास्ते नजर आते हैं या तो दोनों देश सद्भावपूर्ण समझौते पर पहुंचे या अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन पुनः जारी करे अमेरिका द्वारा ईरान के 6 नावों को डुबो दिए जाने के बाद में ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइल दागे गए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात पर मिसाइल हमले के बाद में सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है तथा स्कूलों को रिमोट लर्निंग का आदेश दिया गया है अमेरिका ने ईरानी मीडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि उसकी युद्धपोत पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ है और अमेरिकी बल ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखे हुए हैं इससे पहले ईरान की मीडिया में जानकारी सामने आई थी कि अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर 2 मिसाइलें दागी गई है यह भी जानकारी सामने आई है कि ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइलें दागी गई हैं इन ताजा हमलों से मध्य पूर्व में संकट और गहरा सकता है बीएनजेड ने 2 हफ्तों में दूसरी बार फिक्स टर्म मॉर्गेज रेट्स में बढ़ोतरी करने की अनाउंसमेंट की है 18 मंथ टर्म को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.95% कर दिया गया है जबकि 2 ईयर टर्म को 5.19% और 3 ईयर टर्म को 5.39% कर दिया गया है इसके साथ ही जिन लोगों की प्रॉपर्टी में 20% से कम इक्विटी है उन्हें लो इक्विटी इंटरेस्ट रेट प्रीमियम भी भरना पड़ेगा इंटर आइलैंडर फेरी ने फ्यूल से चार्ज में और बढ़ोतरी की है कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स जो कुक स्ट्रेट पार कर रहे हैं उनके लिए फ्यूल से चार्ज को 54% कर दिया गया है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से यह कदम उठाया गया है किवी रेल और मिनिस्टर फॉर रेल विंस्टन पीटर्स का कहना है कि इंटर आइलैंड फेरी के खर्चे बढ़ रहे हैं तथा वह खुद इन खर्चों को नहीं सह पाएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घोषित पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए उनमें भाजपा की जीत को चुनाव चोरी बताया है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने इन दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव इलेक्शन कमीशन की मदद से जीत कर चुराए हैं इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस बात से भी सहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं साउथ अफ्रीका में एक होटल मालिक के लापता होने के बाद में अब जानकारी सामने आ रही है कि शायद उन्हें क्रोकोडाइल ने खा लिया है वे क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड कोमाती नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे जब उनका यूट पानी में बह गया 59 वर्षीय गैब्रियल बैटिस्टा की खोज की जा रही थी पिछले दिनों पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक क्रोकोडाइल को पानी से बाहर देखा गया था उसे शूट किया गया और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो गई है कि जो मानव कंकाल इस क्रोकोडाइल के अंदर मिले हैं वह उस होटल मालिक की है साथ ही क्रोकोडाइल की बेली में उनका रिंग भी मिला है
4: स्पोर्ट्स न्यूज।
7: मैनचेस्टर सिटी टीम आज सुबह प्रीमियर लीग मैच में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हासिल करने से वंचित रह गई है। मैनचेस्टर सिटी की ओर से इस मैच में डोकू ने पहला गोल 43 मिनट में बनाया था। एवर्टन ने कमबैक करते हुए 68 और 85 तथा 73 मिनट में गोल बनाने के बाद में इस मैच को 3-3 से बराबर में खेला। डोकू ने 43 और इंजरी टाइम में दूसरा गोल स्कोर किया था, जबकि हेलान ने 83 मिनट में मैनचेस्टर सिटी की ओर से गोल स्कोर किया था। इस जीत का मतलब है कि मैनचेस्टर सिटी अभी भी दूसरे स्थान पर 34 मैचेस के बाद में 71 पॉइंट्स पर है, जबकि आर्सेनल 35 मैचेस के बाद में 76 पॉइंट्स लेकर के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है और नॉटिंगहम फॉरेस्ट रेलिगेशन के खतरे से बाहर हो गई है। नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने आज सुबह हुए मैच में जीत दर्ज की। नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने चेल्सी को 3-1 से हरा दिया। चेल्सी की यह छठी हार रही है।
5: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से, और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
8: लुकिंग फॉर दैट अनफॉरगेटेबल हॉलिडे इन पैराडाइज? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
9: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
10: पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ।
11: सादा जीवन, गहरा संगीत, यही तो है पुराने संगीत की पहचान। और जैसे ही 9 बजते हैं आ जाती है पुराने संगीत प्रेमियों की जान जान। देखना तार जो छिड़ा है कहीं दूर ना हो जाए एक भी पल के लिए, कहीं मजा दो पल के लिए भी अधूरा ना रह जाए। ब्लैक एंड व्हाइट तराने से।
5: ब्लैक एंड व्हाइट तराने प्रोग्राम के एक स्वीपा जो बीच बीच में आता है गाने से पहले, जिसमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। एक स्वीपा में कहा गया है कि उन आर्टिस्ट को भी हम याद करते हैं जिन्हें भुला दिया गया है, जिन्हें नहीं के बराबर याद रखा जाता है। ऐसे ही आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने के पुराने नगमे आपको सुनाते हैं, तो उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे। और लगभग ऑलमोस्ट अगस्त में 2 ईयर्स हो जाएगा, 2 ईयर्स में एवरी मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम जब होता है, पब्लिक हॉलीडेज में भी हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। सो जो मेन आर्टिस्ट थे उनके अलावा हमने साइड आर्टिस्ट को, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर्स, इन सब को ट्रिब्यूट देना शुरू किया। और इसके चलते हुआ ये कि रेडियो तराना का जो म्यूज़िक लाइब्रेरी है वो बढ़ता चला गया अच्छे अच्छे गानों के साथ। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को हम चुनते हैं तो उनके कुछ नाकामयाब गाने या फिर कम पॉपुलर गाने को भी हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। उन गानों को फिल्टर किया जाता है, हमारे साथी मगन गानों को चुनते हैं, फिर वो और हम साथ में बैठते हैं गानों को फिल्टर करके बेस्ट नगमे चुन के आपको इस प्रोग्राम के जरिए सुनाते हैं। सो आज जो हमारी आर्टिस्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, नाम बोलूंगी तो आपको लगेगा अरे ये तो जाना माना नाम है, लेकिन फिर जब मैं इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे बहुत तवज्जो नहीं दिया। यही हाल इंडस्ट्री का भी था। इंडस्ट्री ने भी इस आर्टिस्ट को या उसके बारे में ज़्यादा बातें बता रखने को इंटरनेट पर तवज्जो नहीं दिया। मेरे प्यारे सुनने वाले श्रोताओं, मुमताज़ बेगम, आज उनको हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं अपने ब्लैक एंड वाइट तराने प्रोग्राम में। मुमताज़ बेगम को ज़्यादातर इंडस्ट्री की माँ, इंडस्ट्री की नानी, इंडस्ट्री की दादी के रूप में ही लोग जानते थे। इसके अलावा लोगों ने उनके बारे में कोई ख़ास जानकारी कभी भी नहीं रखी या फिर उनके बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं। बात दरअसल ये है कि मुमताज़ बेगम के बारे में अगर आप पता लगाने जाएं, ढूंढने जाएं, तो आपको मुश्किल से चार लाइनें उनके बारे में मिलेंगी। जैसे कि मुमताज़ बेगम के विकिपीडिया को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है मुमताज़ बेगम 7 अप्रैल 1923 में उनका जन्म हुआ। वो एक इंडियन एक्ट्रेस थी और हिंदी और पंजाबी फिल्मों में कई सालों तक नजर आई थी। इसके अलावा उनके जिंदगी और उनके करियर के बारे में लिखा है कि मुंबई में बॉम्बे के प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर ज़्यादातर माँ दादी माँ का रोल किया। उनकी कुछ नोटेबल फिल्मों में सिर्फ 3 फिल्मों का नाम लिखा है, एक तो बरसात की रात 1960 की, फिर 1960 की फिल्म चौधरी का चांद और फिर 1963 की फिल्म मेरे महबूब का नाम लिखा है। पर्सनल लाइफ और डेथ के बारे में लिखा है बेगम वॉज द आंट ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस नाजमीन, शी डाइड इन मुंबई ऑन 9th March 2002 एज 78 एंड दैट्स इट। उनके बारे में और भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा तो काम है आपको ढूंढ ढूंढ के आर्टिस्ट के बारे में जानकारियां देना और उनके फिल्मों के नगमे सुनाना। सिर्फ नगमे सुनाने हो तो आप स्पॉटिफाई में सारे गान नगमों को रख देंगे, वहीं आप सुन सकते हैं, पर रेडियो पर सुनने का यही तो डिफरेंस होता है। हम आर्टिस्ट के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में ढूंढ ढूंढ करके चीज़ें आपको बताते हैं। तो मुमताज़ बेगम जी की फिल्मों के कुछ नगमे हम आपको, या एक पहला नगमा आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद हम उनकी ज़िंदगी की गाथा जो टुकड़ों टुकड़ों में हमें मिला है वो बताते हैं।

मुमताज बेगम जी की फिल्म नास्तिक का ये गाना हम आपके लिए शामिल कर रहे थे उनको ट्रिब्यूट देते हुए आज पहले गाने के रूप में। मुमताज जी के बारे में बताने से पहले उनकी बहन की बेटी नाजमीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि परिवार के यही दो सदस्य हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और यही दो सदस्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है, अदरवाइज कुछ और खास जानकारी इनके बारे में है नहीं। नाजमीन ने भी फिल्म इंडस्ट्री में 1970s, 80s, 90s के दौर में काम किया और उनके बारे में पता चला है कि शायद वो कैनेडा में कहीं पर निवास करती है। शादी करके वो मिस्टर मर्चेंट के साथ में कैनेडा बसने के लिए चली गई थी, उनके दो बेटे हैं एंड दैट्स इट। नाजमीन जी ने फिल्म या महाभारत में, महाभारत टीवी सीरियल में कुंती का रोल किया था, इसी के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हैं। अदरवाइज उनकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी लिखा है आंख बंद करके उन पे भरोसा भी कहीं से भी कोई जानकारी उठा के लेकर के आए, तो कुछ रिलायबल सोर्सेस से हमने कुछ जानकारियां इकट्ठी की है। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों पहले ही, मुमताज बेगम के बारे में किसी ने एक ट्रिब्यूट डाला था सोशल मीडिया पर और वहां पर लोगों ने उनको बहुत सारे ट्रिब्यूट्स देने शुरू किए, थाउजेंड्स ऑफ कॉमेंट्स थे। तो तब उनकी उम्र तो 102 साल की हो गई थी, वो इस दुनिया में है भी।

या नहीं है उस वक्त लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी। तो जहां से हमने ये जानकारी हासिल की, उस जनाब ने सीनी एनटीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स छान मारे। वो वहां की मेंबर्स भी नहीं थी, ना ही तो मुमताज बेगम और ना ही उनकी भतीजी नाजमीन। उनके समय के बारे में, उनके समय के लोग भी इस दुनिया में बहुत नहीं हैं, तो उनके बारे में जो भी टुकड़ों टुकड़ों में जानकारियां मिली है वो हम आपको बताना चाहेंगे। एक पंजाबी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी मुमताज़ बेगम जी। 1923 में इनका जन्म हुआ 7 अप्रैल को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो लाहौर के भाटी घाट गेट से बिलोंग करती थी, यहाँ इनका जन्म हुआ था। नॉट कन्फर्म्ड कि एक्चुअली में कहाँ पर, क्योंकि विकिपीडिया बता रहा है कि उनका जन्म मुंबई में हुआ था। खैर, उनके वालिद साहब, उनके पिताजी के बारे में बताया गया कि मोहम्मद रिजवी साहब बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। मुमताज बेगम के 4 भाई बहन थे, सब बड़े ही पढ़ाकू थे। उनमें से सिर्फ मुमताज बेगम ही थी जिनका रुझान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, एक्टिंग की तरफ था। तो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के एक्टिंग की दुनिया में दाखिला ले ली थी।

0: अपनी डेली कुकिंग को बनाए और भी हेल्दी और भी टेस्टी कशिश ब्रांड के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। और अब आप इंजॉय कर सकते हैं कशिश का फ्रेश डोसा बैटर फॉर सॉफ्ट फ्रेश इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास। अपनाए कशिश का डोसा एंड इडली बैटर। और सीमित समय के लिए इनकी एक्साइटिंग ऑफर में डोसा बैटर रेंज में से कोई भी डोसा बैटर लें और साथ में पाए 250 ग्राम्स का कशिश जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्री। नो एडेड केमिकल्स, नो विनेगर, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय कशिश। और कशिश का डोसा बैटर अवेलेबल एट ऑल मेजर इंडियन आउटलेट्स।
1: ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्बन कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड,
2: वी प्रेजेंट पिको टॉय टॉय, अ ब्रांड न्यू अर्बन डेवलपमेंट इन पापा टॉय टॉय, ब्रिक, लो मेंटेनेंस, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
1: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinoi Bus Interchange and major motorways.
2: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
1: That's pikotoetoe.nz.
3: Shri Venkateshwara Devasthanam Charitable Trust aap sabko aamantrit karte hain inke bhojan mela food carnival mein to support Lord Venkateshwara Temple Project.
1: Ye hoga Sunday 17th May ko 11 AM to 4 PM.
3: 378 Ararimu Road, Ramarama, South Auckland mein. Entry free hai, free soft drinks rahenge, free food by Shivani Restaurant and Idli Sambar, jewelry and clothing stores, henna artists, face painting, bouncy castles aur bahut kuch.
1: Aur information ke liye कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
3: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
0: हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट एनजेड बेड्स मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट एनजेड बेड्स मानिका सुपर सेंटर।
4: पुराने गानों की एक अलग ही खूबसूरती है जो जब भी कानों में पड़े तो रस ही घोलते हैं। पुराने संगीत का रस निचोड़ निचोड़ कर मगन डाया ने ही ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम के नगमे चुने हैं, तो साथ बनाए रहें ब्लैक एंड व्हाइट तराने में।
5: प्रकाश सोनी जी, ये बॉम्बे टॉकीज के कार्यकर्ता थे, उनके अनुसार निरंजन शर्मा एक नोटेबल एक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में। उनके भाई के जरिए, उनके भाई के साथ में इनकी शादी हुई थी, मुमताज़ बेगम साहिबा की। 1940s, 1950s, 1960s के दौर में इन्होंने बहुत काम किया था। दरअसल 1940s पुनर्मिलन नाम की फिल्म से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद फिल्म फैशन में और फिल्म गुलामी में 1940s में इन्होंने काम किया। वैसे तो और भी फिल्मों में थी, लेकिन ये कुछ नोटेबल फिल्में थी। 1950s की फिल्मों में दहेज, साकी, दीवाना, ये कुछ फिल्में थी जिसके जरिए जागृति, नास्तिक, झनक झनक पायल बाजे, लाजवंती, काला पानी, इन फिल्मों में इन्होंने नोटेबल रोल्स किए थे। फिर 1960s के दौर में भी इन्होंने खूब काम किया था, जिनमें से कुछ जानी मानी फिल्में थी चौदहवीं का चांद, अनपढ़, आई मिलन की बेला, पत्थर के सनम। 1970s में भी इन्होंने अच्छा काम किया था, हीर रांझा, गैम्बला, दिल दीवाना में इन्होंने प्रोमिनेंट रोल किया था। 1980s तक आते आते बेगम साहिबा, मुमताज़ बेगम साहिबा को थोड़े कम काम मिलने लग गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बड़ी फिल्मों में तब भी काम किया था, जैसे फिल्म लावारिस, अमृत और औलाद में वो एक बड़े रोल में नजर आई थी 1980s में।

ये गाना फिल्म पासपोर्ट का था, जिसमें मुमताज़ बेगम साहिबा नजर आई थी। आईटीज के बाद अचानक से मुमताज़ बेगम जी कहाँ गायब हो गई ये किसी को भी नहीं पता। इंडस्ट्री से उन्होंने पूरे तौर से नाता तोड़ लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि जूहू में लीडो सिनेमा के बाहर एक बार उनके शौहर के साथ में वो नजर आई थी। कुछ लोगों का कहना है कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में कुछ दिनों तक वो रहती थी, और कुछ लोगों का ये कहना है कि अंधेरी में आखिरी दिनों में वो रहती थी। इनके शौहर के इस दुनिया में ना रहने के बाद वो बहुत ही अकेली हो गई थी, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। जहाँ पर वो निवास करती थी वहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ही, वहाँ के जो वॉचमैन थे उन्होंने ही मिल करके बिल्डिंग के लोगों के साथ इनका अंतिम संस्कार किया था 2002 9th of March को, जब इस दुनिया से ये चल बसी थी। इसके अलावा उनके आखिरी दिनों के बारे में या फिल्म छोड़ने के बाद वो क्या करती थी, उसने उनकी अन्य पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को हार्डली कोई भी जानकारी बताए। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था कि मुमताज़ बेगम की बेटी है वहीदा रहमान, ये क्या किस्सा है, ये बताती हूँ मैं अगले गाने के बाद।

0: smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King. King of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
1: This is the life, eh? Getting stuck in, making the most of every adventure that comes your way. But if you get hurt, who gets harmed? Well, you obviously. But it might not stop there. Because an injury, even a minor one, can affect your mates, your whānau, the people who count on you. So while you're out enjoying yourself, take a moment to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
2: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
6: Waqt badal gaya, log aaye, chale bhi gaye, jeevan se, duniya se. Par purane gaano ki mehak वैसे की वैसी ही है जैसे जमाने पहले थी. ये खुशबू बरकरार रहे तभी तो मगंद आया. चुन चुन कर गाने पवन को देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तराने के लिए.
7: तो कई जगह पेपर्स में भी ये बातें आई थी, न्यूज़पेपर्स में आई थी, मैगजीन्स में आई थी कि पुराने जमाने के एक्टर्स मुमताज बेगम की बेटी वहीदा रहमान जब नई नई फिल्मों में आई थी उनकी बेटी है. लेकिन ये जानकारी बिल्कुल भी गलत है. कुछ कुछ जगहों पर अभी भी आपको ये जानकारी मिलेगी पर ऐसा नहीं है. ये जो मुमताज बेगम है जो नानी दादी माँ का रोल किया करती थी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे. बात दरअसल ये है कि वहीदा रहमान जी की अम्मी जान का नाम भी मुमताज बेगम ही था. लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री से कुछ भी खास लेना देना नहीं था. ये मुमताज बेगम और वो मुमताज बेगम दोनों अलग है. तो ये मुमताज बेगम की बेटी वहीदा रहमान नहीं है.

मुकेश जी और लता दीदी की आवाज़ में ये गाना ओपरा हाउस का आज हमने प्रोग्राम में आपके लिए शामिल किया था। मुमताज़ जी को ट्रिब्यूट देते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मुमताज़ बेगम जी जिस वक्त इंडस्ट्री में आई थी, जो साइड रोल्स उनके माँ का रोल मिलता था, बड़ी बहन का रोल मिलता था, उनकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन उस ज़माने में दुर्गा खोटे, लीला चिटनिस, ललिता पार जैसे एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। सो ये जो नाम मैंने भी आपको बताया, दुर्गा खोटे, लीला चिटनिस, ललिता पावर, ये नाम मुमताज़ बेगम के ऊपर हावी हो गए थे। उनको काम भी अच्छा मिल रहा था, कुछ बड़े बड़े फिगर्स के साथ में उनको काम करना मिला था, इसीलिए ये थोड़ी सी अंडररेटेड आर्टिस्ट हो गई थी। हालांकि टैलेंटेड वो उनके बराबर की थी और डेडिकेशन उनका पूरे पूरा बराबर का उनके जैसा था, लेकिन शायद शुरुआती दिनों में उनको उस तरह के क्लासिक सिनेमा मूवीज़ नहीं मिल पाई थी, इसलिए उनके मुकाबले इनका नाम कम पड़ गया था पॉपुलैरिटी में। पर आज की डेट में हम बात करें, मतलब आज की 5 तारीख में सन 1926 की बात करें, तो हम उनको बराबरी में डालते हैं, क्योंकि हमने लीला चिटनिस, दुर्गा खोटे, ललिता पावर को जितना ट्रिब्यूट दिया, जितना उनके बारे में बताया, उतना ही हम ढूंढ ढांड करके, भले ही मुमताज़ बेगम के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनकी उतनी ही इज्जत अफजाई करते हैं जितने बाकी कलाकारों को करते हैं।

0: मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब तो बहू ला के ही रहूंगी इस घर में।
1: माँ
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
4: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग। कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे
5: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट। दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस। कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश, फोन नंबर 0210584711।
6: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
7: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।
8: पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं, यादों का एक पिटारा है। अरे कई लोगों के लिए पुराना संगीत ही तो जीने का सहारा है। तो लो आ गए फिर मगन और पवन लेकर ब्लैक एंड व्हाइट तराने।
9: पर्दे को या पर्दे पर एक बेटे को अच्छा दिखाने के लिए किसी को एक माँ का किरदार करना पड़ता है, या फिर एक अच्छे बेटे किरदार दिखाने के लिए एक माँ को नेगेटिव रोल या सौतेली माँ का रोल करना पड़ता है। और इस तरह के रोल मुमताज़ बेगम ने खुद किए थे। ज़्यादातर इनके रोल्स में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनरी पिता और बेटे के बीच जो थोड़ा सा आवारा होता है, घूमने फिरने वाला होता है, तो उन दोनों के बीच में अच्छा बैलेंस बनाने के लिए एक अच्छी समझदार माँ की जरूरत फिल्मी पर्दे पर पड़ती है। और आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। इस तरह के किरदार ज्यादातर मुमताज बेगम साहिबा निभाया करती थी। ये एक हार्ड कोर नेगेटिव रोल भी इन्होंने किया था। कांच की गुड़िया 1961 में ये फिल्म बनाई गई थी, जिसमें उर्दू के डायलॉग्स डिलीवरी इनकी बहुत ही खूबसूरत थी ये बताया गया है, और इनकी उर्दू की नॉलेज ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी रही होगी। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार भी किया था, कांच की गुड़िया 1961।

वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि आपके सिर्फ आज की सुबह ही नहीं, कल की सुबह को भी हसीन बनाने की हमारी पूरी कोशिश होती है संगीत के जरिए। और इसके लिए कल की सुबह के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं हमारे साथी मगन डाया के साथ। उन्होंने जो नगमे चुन रखे हैं वो ये हैं।

0: Ride dirty, keep clean with Dirtworks by Cleaner. Their powerful, eco-friendly formula removes even the toughest of mud while being gentle on the environment. Whether you've had a rough ride or an exhilarating one, Dirtworks makes sure your bike is always ready for action. Works on mountain bikes, dirt bikes, and 4x4s. Get dirty on the trails and let them handle the cleanup. Keep it slick, keep it green, and keep your ride pristine. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
1: It's Mother's Day, ko banai aur bhi special Digicel ke saath. Bas bheje $20 ya usse zyada ka top up ya $300 ya usse zyada ka cash transfer inki kisi bhi partner website se My Cash Wallet ke saath to your family and friends in the Pacific. Aur aapka naam turant jayega draw mein to win one of the 15 $500 cash prize. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.
2: At Bunnings Trade, we can help you build big with our wide range. We've got trade trusted building materials and supplies you need to get the job done. Plus, we can deliver direct to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
3: Radio Tarana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods. Radio Tarana Studio mein subah ke 10 baj chuke hain.
4: This is Tarana News.
5: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. ऑकलैंड में आधे से ज्यादा हाउस होल्ड में फूड वेस्ट कलेक्शन बिन को काम में नहीं लाया जा रहा है. फूड वेस्ट कलेक्शन बिन्स को दो साल पहले जारी किया गया था. इन दो सालों में 62,000 टन ऑर्गेनिक मटेरियल को फर्टिलाइजर और रिन्यूएबल एनर्जी में बदला जा सका है. ऑकलैंड में लगभग 40% हाउस होल्ड और बिजनेसेस फूड वेस्ट कलेक्शन बिन्स को काम में लाते हैं. ऑकलैंड काउंसिल के डेप्यूटी डायरेक्टर रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर परुल सूद ने मीडिया को बताया कि ऑकलैंड और बेहतर कर सकता है. सूद का कहना है कि खाने के बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में डालने से हर छिलका कॉफी का बचा हुआ हिस्सा या मोल्ड लगा हुआ ब्रेड का टुकड़ा लैंडफिल में कम जाता है और वह रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने में योगदान देता है. एक आरोपी जिन्होंने एक टीनेजर के साथ में पिज्जा शेयर किया था और बाद में उनके साथ में बलात्कार किया को कसूरवार पाया गया है. 6 महिलाओं और 4 पुरुषों की ज्यूरी ने डोनी मोजेस को रेप, अनलॉफुल सेक्सुअल कनेक्शन और अबडक्शन फॉर सेक्स वाले चार्जेस के लिए कसूरवार पाया है. यह घटना मार्च 2023 की है. उस रात क्राइस्टचर्च के फेरी रोड से 29 वर्षीय मोजेस पिज्जा लेकर जा रहे थे जब उन्होंने 18 साल की युवती को पिज्जा ऑफर किया था. युवती ने एक स्लाइस पिज्जा ले ली थी और बाद में उन्होंने मोजेस को अपने घर पर आमंत्रित किया था जहां पर दोनों ने शराब पी और जब युवती नशे में हो गई और सिर टकराने के बाद में बेहोश हो गई तो मोसेस ने उनके साथ में जबरदस्ती की. इस दौरान युवती को कई बार होश आया और उन्होंने मोसेस को रोकने की कोशिश की लेकिन मोसेस नहीं रुके. बाद में युवती की इसी तरह से घर से बाहर जाकर के कुछ लोगों से मदद की मांग की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में उन्होंने पुलिस में इस बारे में शिकायत की. मोसेस को 6 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी. लेवल लीडर क्रिस हिपकिंग्स ने न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच में फ्यूल सप्लाई को लेकर हुए समझौते का स्वागत किया है. न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच में फ्यूल फॉर फूड वाला एक समझौता हुआ है जिसके तहत सिंगापुर न्यूजीलैंड को फ्यूल आपूर्ति करेगा. बदले में न्यूजीलैंड पर्याप्त भोजन सामग्री सिंगापुर को सप्लाई करेगा. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलस और व्यापार मंत्री टॉड मैकले सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे. सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने न्यूजीलैंड को आश्वासन दिया है कि फ्यूल आपूर्ति जारी रहेगी लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुल जाने के बाद भी 6 महीनों तक फ्यूल सप्लाई पर असर पड़ता रहेगा तथा भविष्य में सिंगापुर से जो फ्यूल मिलने वाला है उसका दाम भी बढ़ाया जा सकता है. अमेरिका के नेतृत्व में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं. अमेरिका ने कहा है कि वह वेसल्स को एस्कोर्ट करेगा. लगभग 2000 वेसल्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं. इस बीच जानकारी सामने आई है कि यूएस सेना ने ईरान के 6 छोटी नावों को डुबो दिया है. एक और जबकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वेसल्स की आवाजाही को सुनिश्चित कर रहा है वहीं ईरान की ओर से पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइल दागे गए हैं. यूनाइटेड अरब अमीरात पर मिसाइल हमले के बाद में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है तथा स्कूलों को रिमोट लर्निंग का आदेश दिया गया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है. रशियन मिलिट्री के शीर्ष नेताओं की अभी हाल में हत्या के बाद में ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि शायद व्लादिमीर पुतिन को पद से हटाने की साजिश रची जा रही है. इसी वजह से क्रेमलिन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है. पिछले में फ्यूल सिक्योरिटी का आश्वासन देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और मिनिस्टर फॉर पैसिफिक आइलैंड अफेयर्स पैट कॉनरे फिजी के दौरे पर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने एक विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच में संबंध को और मजबूत करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो मंत्रियों का फिजी दौरा होने जा रहा है।
4: स्पोर्ट्स न्यूज।
5: हरिकन्स खिलाड़ी डेवन फ्लैंडर्स क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि उन्होंने जापानीज क्लब के साथ में 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फ्लैंडर्स के जापान जाने का मतलब है कि वे ऑल ब्लैक्स की ओर से खेलने का सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि जापानीज येन कमाने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं।
3: यार मुझे फिजी जाना था।
6: कब जाना है?
3: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
6: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
3: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
6: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
7: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679652228।
6: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।

0: Chasers Abuja Mix ka full range dekhe on chasers.co.nz. Chasers, feel the flavor.
1: माँ।
2: हाँ मेरे लाल।
1: खुश हो ना माँ?
2: बहुत मेरे पुत्र।
1: नागर अच्छा है ना माँ?
2: बहुत वधिया है पुत्र।
1: आशीर्वाद दो ना माँ।
2: हमेशा खुश रहे, चढ़ दिया कला वाच रहे हैं मेरे पुत्र।
1: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
2: चुप फिट्टे मुँह तेरे। ओते मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
3: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
4: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मनिका सुपर।

एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसलिए नारी का दर्जा हमेशा ऊपर ही होता है।

0: कहानी प्राचीन काल की एक राजा की, जिसके दरबार में दो सेवक हमेशा उसकी सेवा में रहते थे, उसके प्रिय सेवक थे। एक दिन दूसरे राज्य के महाराजा जो है पधारे और उनकी आव भगत में इन दोनों से कुछ गलती हो गई, कुछ भारी मिस्टेक हो गई। अब जो वो महाराजा चले गए उसके बाद राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भरे दरबार में दोनों के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया कि इन्होंने ऐसी गलती कर दी है कि मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन्हें फांसी पर तुरंत लटका दिया जाए। दोनों गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज ऐसा मत कीजिए, महाराज ऐसा मत कीजिए, हम तो आपके प्रिय, हम तो आपकी सेवा में रहते हैं, गलती हो गई, कभी दोबारा नहीं होगी। ये वो जो पहले वाला था थोड़ा और ज्यादा चालाक था, वो दौड़ करके राजा के सिंहासन के पास गया और जाकर के कहने लगा कि राजा साहब आपसे एक बात कहनी है, मेरी अंतिम इच्छा तो सुन लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, सबको बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो उसने बताया कि राजा साहब अगर आप मुझे एक साल का समय दे दें तो मैं जादू जानता हूं, मैं कलाएं जानता हूं, मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, मैं कमाल कर दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। पूरा दरबार हंसने लगा कि ये कैसी बेवकूफी वाली बात हो रही है। राजा भी हंसने लगा कि अरे ये क्या बात कर रहे हो। बोले नहीं महाराज, आप मुझे पता है कि आपका घोड़ा आपका बड़ा प्रिय, और आप जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो उसी पर सवार होकर के जाते हैं, और आप सोचिए राजा साहब कि अगर वो घोड़ा उड़ना सीख गया तो आप कितने युद्ध जीत जाएंगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा, जहां कहीं आपको लेगा आप उड़ करके जो है पहुंच जाएंगे, आपका घोड़ा उड़ जाएगा, कमाल हो जाएगा राजा साहब। राजा थोड़ा सोचने लगा, फिर उस सेवक ने एक और चालाकी भरी बात की। उसने कहा कि सोचिए आप मुझे फांसी पर अभी लटका रहे हैं, एक साल बाद लटका दीजिएगा, मैं एक साल का ही तो समय मांग रहा हूं, एक साल का समय दे दीजिए, और अगर नहीं उड़ा पाया, आपके घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाया, तो मुझे फांसी पर लटका देना, आज लटकाएं एक साल बाद लटकाएं, मर्जी आपकी। राजा ने थोड़ा सोचा विचारा, फिर कहा ठीक है, जो पहले वाला है इसको एक साल के लिए अस्तबल में भेज दो, घोड़े को उड़ना सिखाएगा, दूसरे वाले को अभी जाकर के फांसी पर जो है लटका दो। दोनों को जब दरबार से बाहर ले जाया जा रहा था तो दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा कि ये क्या बेवकूफी भरी बात की है, अविश्वसनीय बात की, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, हंस रहे लोग, एक साल का तुम्हें जो है समय चाहिए था, एक साल की मोहलत मांगनी थी, ये क्या तरीका अपनाया, तुम्हें एक साल का टाइम मिल गया, अब क्या होगा, एक साल बाद तुम मरोगे, मेरे पीछे पीछे आ जाओगे, एक साल बाद आओगे। तो पहले वाले सेवक ने कहा कि भाई मैंने एक साल का समय नहीं मांगा, मैंने अपने आजाद होने की चार संभावनाएं तलाश ली है, चार पॉसिबिलिटीज बना ली है। बोले कैसे? बोले भाई सोचो कि अगर इस एक साल में राजा की ही मृत्यु हो गई तो मुझे फांसी देगा कौन, दूसरी बात सोचो अगर मेरी ही मृत्यु हो गई, बीमारी से मर गया तो फांसी वाला चक्कर ही खत्म, तीसरी बात तो सोचो कि घोड़ा ही मर गया तो किसको उड़ना सिखाना है, बात ही खत्म हो गई, और चौथी बात मेरे दोस्त हो सकता है कि मैं सच में घोड़े को उड़ना सिखा दूं, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। ऐसा बोल करके मुस्कुरा करके वो जो पहले वाला सेवक था वो चला गया अस्तबल में, दूसरे वाले को फांसी दे दी। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जीवन में बुरे से बुरे हालात हो, बुरी से बुरी परिस्थिति हो, आप हर तरफ संकट में घिरे हो, तब भी एक चीज मत छोड़िएगा, वो है उम्मीद। उम्मीद को बना के रखेंगे, जिंदगी आपको बना के रखेगी, आपको जिंदगी वापसी करने का अवसर जरूर देगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी।
1: डिजिसेल की ओर से आपके लिए सेगमेंट लाया जा रहा था, मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए इस साल डिजिसेल के साथ में, $20 टॉपअप आप कराएं, $300 $20 टॉपअप कराएं, या फिर आप $300 मनी ट्रांसफर करें पैसिफिक में कहीं पर भी माई कैश वॉलेट पर, आपका नाम $500 वाले ड्रो में जाएगा और एक नहीं 15 $500 कैश प्राइजेस डिजिसेल आपको जीतने का मौका दे रहा है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, इस मदर्स डे को खुशहाल बना सकते हैं आप डिजिसेल के साथ। डिजिसेल मेकिंग इट इजी टू शेयर एंड ऑल्सो Love.
2: You're listening to Pavan.
1: अगले ब्रेक के बाद मैं बातें करने वाली हूँ अभिषेक जोशी से। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आज एक बार फिर से उनसे हम बातें करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो इतिहास कायम हुआ है उसकी वजह से, और साथ में तमिलनाडु में विजय के जिस तरह से जीरो सीट से लास्ट इलेक्शन में अब 107 सीट्स पर जाना, ये इतिहास कायम करना ही होता है। तो हम अभिषेक जोशी से बातें करेंगे रिगार्डिंग इंडिया इलेक्शन राइट आफ्टर दिस एडवर्ट ब्रेक।
3: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. Or फिर seamless travel within India. Delhi हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा, वही अपना जैसा स्वाद, वही friendly Indian hospitality के साथ।
1: तो अगली बार घर का सफर हो फ्लाई एयर इंडिया फॉर मोर

0: information, visit your local travel agent today.
1: A good lawyer is recognised for their experience, trustworthiness and understanding of their client's legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many. Consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction. For property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney and other legal matters, call Schaubner on 021 625 708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
2: New Zealand ke kai bade bade events mein hone wale jo bade bade marquee aap dekhte hain na, are Manukau Diwali Sikh Games mein ye marquee events Auckland marquee and party hire ke hain. 20 सालों से हैं बिजनेस में. इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस. घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा. इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं. इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा.
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
6: और जैसे हमने बताया था एडवर्ट ब्रेक से पहले कि अभिषेक जोशी हमारे साथ में हो जाएंगे. कल उनसे बातें हुई, आज एक बार फिर से हो रही है बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमें भारत के जनरल इलेक्शन या भारत के इलेक्शन के बारे में करनी है. अभिषेक, वेस्ट बंगाल में जो भी हुआ ये क्या अचरज में डालने वाली बात थी?
7: जी, पहले तो सभी सुनने वालों को सुप्रभात. तो आज देखिए 5 मई है और जिसको बोलते हैं ना कि डस्ट इज जस्ट settling in and what it looks like ki most disruptive state election cycle ek aise ek 10 saal mein is baar hua hai. To agar aap dekhenge ki 5 state ke election results kal aaye hain, to agar breakdown karenge uske liye to sabse mahatvapurna hota hai bangal mein, kyunki bahut zyada usko publicity mili thi, bahut zyada fight hui thi ground pe aur bahut tu mai hui thi. तो इफ यू लुक एट दैट कि हमने देखा है कि एक हिस्टोरिक जिसको बोलते हैं भगवा लहर, और जो कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना सैफ्रॉन सर्च, ये हुआ है. और ये बंगाल में अब इट हैज कंप्लीटेड अ कंप्लीट साइकिल सैफ्रॉन सर्च का. अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न इंडिया में विद बंगाल नाउ बीइंग अंडर सैफ्रॉन कंट्रोल, तो ये एक हिस्टोरिक सैफ्रॉन सर्च है. तो बीजेपी ने जो अनथिंकेबल है, मतलब जो जिसने किसी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो वाला करके दिखाया है कि नॉट जस्ट क्रॉसिंग द मेजोरिटी मार्क बट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल में हालांकि यू नो इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी एज अ पार्टी, उसके पहले आरएसएस, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट जो फाउंडर है, जो जबकि जनसंघ कहा गया था उसके पहले दिनों में उस पार्टी को, तो वो बंगाल से आते हैं और बंगाल कभी भी बीजेपी के कंट्रोल में नहीं था. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, और जैसा मैंने बोला है कि ये अनथिंकेबल हुआ है कि नॉट जस्ट मेजॉरिटी मार्क. सो 294 सीट्स में से बीजेपी ने 206 कैप्चर किए है, मतलब इट्स अ लैंडस्लाइड, मतलब इट्स नॉट जस्ट लैंडस्लाइड, मतलब अगर कोई दूसरा वर्ड होगा तो बोल सकते हैं इट्स एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम जो 2021 में इलेक्शंस हुए थे, ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट्स विद अ फ्लिप, जो कि ममता बनर्जी 214 या 216 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उस रेंज में थी और बीजेपी वॉज 77. तो इस बार बीजेपी इज 206 और ममता इज रिड्यूस टू 81 सीट्स. तो
6: क्यों, क्या ये बदलाव किस वजह से बंगाल ने किस वजह से?
7: देखिए ये तो चल ही रहा था, इसमें ये तो दिख रहा था ग्राउंड पे, हालांकि
6: बट अभिषेक दिख तो लास्ट इलेक्शन में भी रहा था, पर इसमें ऐसा क्या बदल गया?
7: हाँ नहीं क्रिक, हाँ तो इसमें ऐसा बदल गया क्योंकि ये पिछले 2-3 साल का जो जो घटनाक्रम हुए स्पेशली, और इसको है ना बीजेपी इस बार लास्ट टाइम भी थोड़ा हद तक बीजेपी ने इसको मतलब इट बिकेम मोर ऑफ अ पोलराइज्ड इलेक्शन, जो कि इंडिया में इट इज नॉट न्यू, इंडिया के पॉलिटिक्स में है ना वो पोलराइजेशन होता ही है, क्योंकि सब कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड बहुत ज्यादा चलता है वहां पे आज के दिन पे भी. दो इंडिया इज गॉन वे अहेड इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड एजुकेशन एंड अदर स्टफ, बट इलेक्शन आज के दिन भी यू नो इट there's a lot of polarization happens. So BJP is bar compared to last time unhone ek isme bahut safalta pai is bar ki unhone ye ज्यादा करके हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया ये इलेक्शन. और ममता बनर्जी के ऑन द ग्राउंड हरकतें भी इट हेल्प बीजेपी क्वाइट अ लॉट. फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा एक बता सकते हैं कि एक इंसिडेंट जब दुर्गा पूजा को भी उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दिया. बट दुर्गा इज लाइक वेस्ट बंगाल में एक आइडियल है, मतलब दुर्गा इज लाइक एवरीथिंग इन वेस्ट बंगाल फॉर बंगालीज. तो अगर आप क्योंकि जस्ट बिकॉज मुहर्रम उस दिन पड़ता है तो आपने प्रेफरेंस कहा कि दुर्गा पूजा का वो जो प्रोसेशन निकलता है वो बाद में निकलेगा, पहले मुहर्रम का निकलेगा. बस दिस ऑल स्मॉल थिंग्स यू नो इट स्टार्टेड एडिंग अप. तो लोगों को फिर कोर्ट जाना पड़ा, फिर कोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट से फिर परमिशन लेनी पड़ी कि नहीं दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, दोनों के लिए इक्वल ये प्रोसेशन सब उसी फैनफेयर में सब निकलना है. तो ये सब ये छोटी छोटी चीजें. एंड देन कल जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो महिलाओं के प्रति जो इनडिफरेंट एटीट्यूड ममता का रहा है स्पेशली आफ्टर द आरजीकर मेडिकल केस द रेप केस एंड ये वो, तो
6: वो उनकी माँ जीती कि नहीं अभी?
7: बहुत सारे फैक्टर्स. हाँ जी हाँ जी जीत गई थी वो ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई है. तो दैट इज द आयरनी ऑफ इट.
6: उन्हें विक्टिम जो मेडिकल
7: पिछले बार भी वो हार गई थी पिछले बार. हाँ वो हाँ
6: ओके उनकी जीत हुई है. अब तो अब सीएम के बारे में चर्चे हो रहे हैं अभिषेक, तो क्या नाम सामने आ रहे हैं?
7: अब देखिए इट इज अभी मुझे क्या लगता है कि दो देर इज स्टिल बीजेपी इज ट्राइंग टू सिंक इन इनटू द इलेक्शन रिजल्ट्स. अभी तो इट इज अर्ली टू कोई भी फीलर्स शायद आज से आने चालू हो जाएंगे. बट मुझे लगता है कि क्लियरली अमित शाह ने जो बोला है कि बंगाली कोई सीएम होगा, बंगाली मीडियम में सीखा हुआ सीएम होगा और कोई लोकल होगा, ना कि बाहर से कोई किसी बंगाली भी होगा तो बाहर से किसी को एक्सपोर्ट किया जाएगा ये नहीं होगा. तो ऑल दिस थिंग्स आर पॉइंटिंग टू शुभेंदु अधिकारी बीइंग द लाइकली कैंडिडेट. और शुभेंदु अधिकारी फेज भी थे बीजेपी कैंपेन के लिए. तो देखते हैं, लेकिन आज से थोड़ा सा फीलर्स या फिर डिस्कशन आना चालू हो जाएगा फिर सीएम कौन बनेगा. बट विद दिस काइंड ऑफ मेजोरिटी आई थिंक शुड नॉट बी मच ऑफ एन हेडेक फॉर बीजेपी टू चूज द लीडर.
6: इन तमिलनाडु में टीवी के ये इसके उनके जीतने के इस नंबर से आसार थे?
7: देखिए ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है ना तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट है. अब की जो एक्चुअल खेला जो हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारे चर्चे हो रहे थे कि बट वेदर इट विल हैपन और नॉट वो अलग चल रहा था, इट वॉज अनप्रेडिक्टेबल, बट एक फीलिंग आ रही थी. बट ये जो तमिलनाडु का जो था ये बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ बॉक्स हुआ है एकदम से. कि अब इससे क्या हुआ है कि ये द्रविडियन जो फ्रेमवर्क था इतने सालों से चल रहा था, मतलब करीब करीब 50-60 साल से वो द्रविड़ आइदर डीएमके या एआईडीएमके दोनों में ही पावर शेयरिंग चल रहा था तमिलनाडु में आज तक. तो ये वाला जो है ये अभी एक थर्ड फोर्स आके ये सारा ही खेला बिगड़ दिया. तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये द्रविडियन आइडियोलॉजी और द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या इससे पूरी ही खत्म हो जाएगी या फिर ये लोग वापस रिबाउंड हो सकते हैं. बट दिस इज ये विजय के लिए वो एक्टर विजय के लिए नो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल इन द सेंस की.
6: और बीच में उनके नेगेटिव भी कितने सारे आए थे, वो जो स्टेडियम वाली घटनाएं और ये सारी चीजें, लेकिन इसके बावजूद 0 से 107 तक जाना इट्स जस्ट समथिंग रियली चेंज्ड ड्रास्टिकली इन दैट एरिया.
7: दिस इज देखिए तमिलनाडु में हिस्ट्री है सिनेमा और पॉलिटिक्स की, आप देखा जाएगा तो आपने देखा होगा कि MGR है, करुणानिधि खुद जो डीएमके के हेड थे, जो डीएमके के फाउंडर थे, फाउंडर तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो नो अन्नादुराई वाज द रियल फाउंडर, बट विद इन दैट सब डीएमके करुणानिधि वॉज द फाउंडर ऑफ डीएमके, तो वो भी खुद राइटर थे जो लिखते थे सिनेमा के लिए, और MGR तो पता है सबको, तो सुपरस्टार थे जिन्होंने अन्ना डीएमके फाउंड किया, तो जयललिता उसके बाद में, तो ये एक हिस्ट्री रहा, बट ये विजय का जो डेब्यू था वो एक टेक्टोनिक जो बोलते हैं ना वो बात हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर इलेक्शन है और पार्टी बहुत मतलब एकदम फ्रेश पार्टी है, मतलब एक साल भी नहीं हुआ है पार्टी फॉर्म होके, एंड उन्होंने दोनों डीएमके और AIADMK को साइडलाइन कर दिया है पूरा ही, मतलब तो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एरा इन चेन्नई, तो ये देखना पड़ेगा कि अब वेरी क्रूशियल, क्योंकि स्टिल ही इज शॉर्ट ऑफ सिंपल मेजोरिटी, ऑलमोस्ट अराउंड 10 सीट्स ही इज शॉर्ट ऑफ इट, सो उनको कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट लेना पड़ेगा उस 10 सीट्स के लिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अब को किसके साथ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग तैयार है अभी उनको सपोर्ट करने के लिए, बीट डीएमके, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी, बीट अन्ना डीएमके, तो कोई भी पार्टी, और 10 सीट इज लाइक नथिंग, तो अभी उनके पास ही इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, तो अब देखना है कि किसके पास जाते हैं, तो बट मेरा मानना है कि अगर if he is smart enough, I think he should go with the ruling party, which is the NDA, not ruling party in the state, but in the center. जो NDA का गठबंधन है, अगर उनके साथ जाते हैं तो it is always helpful, क्योंकि central government if it's in your coalition, it's always helpful for the funds और ये इसके लिए, तो there's no brainer. But अब देखते हैं कि कैसे वो क्या, what's the thought process going in the party. कुछ दिनों में अपने को पता चल ही जाएगा।
6: या एंड देन बिफोर आई लेट यू गो, बाकी इलाकों में असम केरला वगैरह के क्या रिजल्ट्स हैं?
7: देखिए केरला में अगेन केरला हैज गॉट इट्स मतलब वो तो अपने ट्रेडिशन पे खरा उभरा है कि चेंजिंग गवर्नमेंट, तो लेफ्ट का जो गवर्नमेंट था, लेफ्ट फ्रंट जो लेफ्ट लीडिंग द CPM लीडिंग द फ्रंट, वो हार गया है, और कांग्रेस लेट UDF वो मतलब उसके लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि कांग्रेस वो मैसिव जीता है, ये आउट ऑफ 140 सीट्स 102 सीट्स उन लोगों ने जीते हैं, तो इस बार तो द मेजर रीजन व्हाट आई एम सीइंग इज कि सारा ही माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, मतलब बीट मुस्लिम्स, बीट क्रिश्चियंस, बिकॉज दीज टू आर डोमिनेंट माइनॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ केरला, और काफी हद तक लगता है हिंदूज भी कंसोलिडेट हुए हैं UDF की तरफ, तो दैट्स इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज, क्योंकि केरला में ट्रेडिशन रहा है कभी इधर कभी उधर, मतलब एक टर्म इधर एक टर्म उधर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म वेयर LDF हैड कम फॉर द कंसेक्यूटिव सेकेंड टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इस बार वापस फिर फ्लिप हुआ है. आसाम अगेन इट्स अ हैट्रिक फॉर बीजेपी लेड NDA, और उन्होंने मतलब इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, अभी तो ऑलमोस्ट लाइक स्ट्राइक रेट देखा जाएगा तो 80-85% का स्ट्राइक रेट, मतलब 101 सीट जीते हैं उन्होंने 126 में से, तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी मतलब और बढ़ गई है, पहले ही से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, तो अभी ये स्टेटस ये जीत के बाद उनको उनके लिए मतलब ही हैज बिकम अ क्या बोलते हैं उसको रीजनल पावर हाउस जो बोल सकते हैं, और फिर कांग्रेस ऑब्वियसली बहुत इट्स वी कैन कंसिडर इट्स वन ऑफ इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंस इन असम विद जस्ट 19 सीट्स, इट हैज इट्स रिड्यूस्ड टू 19 सीट्स, और पुडुचेरी में NDA ने वापस पावर रिटेन किया है, दैट्स द ओनली स्टेट वेयर इफ यू लुक एट इट पांच स्टेट्स में से कोई बदलाव नहीं आया है गवर्नमेंट में, सो इट्स आई मीन इट्स द सेम पार्टी, अब अगर CM सेम रहेंगे या नहीं वो पता नहीं, बट the same front has come back again in Puducherry.
6: Before I let you go, Abhishek, what does this mean for BJP? अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि सभी ओर ही उनका दबदबा बना हुआ है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, पूरा देश पसंद कर रहा है almost. कहीं वो बात तो नहीं आ जाएगी सर पर चढ़ जाती है जो बातें।
7: अब देखिए, ये बीजेपी के लिए अब ये रिजल्ट्स क्या बताता है, ये बताता है कि बीजेपी का एक्सपेंशन जो बंगाल में हुआ है, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर देम फॉर 2029 लोकसभा इलेक्शंस। क्योंकि अब आपने देखा, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे और भगवा का जो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे स्टेट्स में, तो दैट्स बिकम एन आर्क कंप्लीटली। तो पूरा ही मतलब फ्रॉम वेस्ट टू सेंट्रल टू ईस्ट आप देखोगे तो एक्सेप्ट फॉर छुटपुट मतलब जो एक पंजाब है, बीच में हिमाचल है और झारखंड है, तो ये तीन स्टेट छोड़ते बाकी सब हैज टर्न, एवरीथिंग हैज टर्न भगवा नाउ। सो द ओनली फोर्टे रिमेनिंग विल बी साउथ इंडिया फॉर देम, तो विच इज लाइक विच इज स्टिल नॉट sort of giving them that opportunity, क्योंकि अब तमिल नाडु में हमने देखा कि 2024 में they tried to go alone but वो भी successful नहीं रहे, but 2026 में अभी state elections में they tried to go with Anna DMK, वो भी successful नहीं रहा है, तो अब उनके लिए एक strategy अलग हो सकता है। but having said that, आपके point पे ये थोड़ी सी पार्टी हो सकती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकती है, क्योंकि अब ये देखा जाएगा, क्योंकि स्पेशली क्या हुआ है कि बट एक चीज मानना पड़ेगा बीजेपी मैकेनिज्म में, आपने अगर देखा होगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए को मतलब बीजेपी लीडिंग इट काफी मतलब वेरी लेस देन एक्सपेक्टेड सीट्स मिले, उनको एक बड़ा झटका लगा था 2024 में, जो कि दैट वाज पॉसिबली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम। तो उन्होंने क्विकली अगर उसके बाद के जो स्टेट इलेक्शंस देखे जाएंगे आप जितने भी हुए हैं 2024 इलेक्शंस के बाद, तो बीजेपी हैज डन रियली रियली वेरी वेल। तो उन्होंने शायद उसमें से कुछ सीखा है और अपने स्ट्रेटेजीज ट्वीक किए हैं, तो होपफुली द पार्टी रिमेन्स ग्राउंडेड और ये जो जीत है इसकी नशा चढ़ना जाए इसमें और दे रिमेन ग्राउंडेड एंड दे रिमेन लुकिंग आफ्टर पीपल, फाइन ट्यूनिंग द पॉलिसीज, वर्किंग बेटर फॉर द कंट्री, तो देखते हैं कैसा होता है।
6: गुड वन है अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था आपसे बात करने के लिए आफ्टर यस्टरडेज एनालिसिस, बट आई विल टॉक अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
7: थैंक यू वेरी मच
6: अभिषेक जोशी से हमारी बातें हो रही थी फ्रॉम वेलिंगटन, हमारे इंडिया पॉलिटिक्स एनालिस्ट।

0: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
2: There's a reason the Big Ben six pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers. Happy

नेहा दत्त का आज फिफ्थ बर्थडे एवनडेल में मनाया जा रहा है। नेहा के डैडी है प्रवीण दत्त, नेहा की मम्मा है शैली दत्त, नेहा की बहन है शाइना, आजी ने यहाँ ऑकलैंड से प्यार दिया है, नानी और नाना मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश चंद ने यूएसए से दुलार प्यार आशीर्वाद भेजा है, जितने भी दादा दादीज यहाँ पर ऑकलैंड में हैं उन सब ने भी आज नेहा दत्त को उनके फिफ्थ बर्थडे पर बेस्ट विशेस दिए हैं। हमारी टीम की ओर से भी नेहा यू हैव अ गुड वन, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। योगेश चंद्र सिंह का आज कैलिफोर्निया में बर्थडे मनाया जा रहा है। थैंक यू योगेश हमें सुनने के लिए और हमारे पास इवन मैसेज भेजने के लिए। आपकी वाइफ है अनीता देवी सिंह, आपका बेटा है अविनेश सिंह, अविकाश सिंह, अविनाश सिंह, अनिश सिंह, आपकी बेटी है सोनम सिंह, साथ में डॉटर इन लॉज ने प्यार दिया है, जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है, जितने भी भाई बहन आपके हैं, जितनी भी भाभियाँ हैं, जितनी भी सालियाँ हैं, देवर देवरानी, नीजेज एंड नेफ्यूज अराउंड द वर्ल्ड से, यहाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और फिजी से सब ने आज आपको बहुत सारा प्यार दिए हैं। हमारी टीम की ओर से भी आज के दिन के लिए आपको शुभकामनाएं। मिस्टर योगेश चंद्र सिंह, आपको आज का बर्थडे बहुत बहुत बार मुबारक हो। आज मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उमावती चंद आपको कहते हैं, आपका भी कैलिफोर्निया में बर्थडे मनाया जा रहा है। आपके हस्बैंड है प्रकाश चंद, आपका बेटा है विकास चंद, आपकी बहू है विंदिका चंद, बेटी है आपकी विनुका चंद, साथ में ग्रैंड किड्स ने प्यार दिया है, भाई बहन है और आपके जितने भी रिश्तेदार यहाँ न्यूजीलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, फिजी में हैं सब ने आज आपको बेस्ट विशेज दिए हैं। उमावती चंद जी, रेडियो तराना टीम की ओर से भी बेस्ट विशेज, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी हैप्पी टर्म्स ऑफ द डे। कुष्मा देव आपको कहते हैं, मैम आज आपका 80th बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे। खुशी के इस दिन पर आपके परिवार वाले, आपके दोस्त सब आज आपकी खुशहाल, स्वस्थ और लंबी जिंदगानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संजना खासतौर पर आपको याद कर रही हैं। हमारी टीम की ओर से भी कुष्मा देव, मैनी हैप्पी विटर्म्स ऑफ द डे। हे तानिया, हाउ आर यू, आज आपका भी बर्थडे मनाया जा रहा है, बस आपके बारे में इतना ही लिखा गया है। आपके जितने रिश्तेदार होंगे आई एम वेरी श्योर सब आज आपको बहुत प्यार दे रहे होंगे। हमारी टीम की ओर से भी तानिया, मैनी मैनी हैप्पी विटर्न्स ऑफ द डे। मिस्टर अमृतलाल दयाराम माउंट रॉस्किल में, उषा मोदक मांगरे में और विमला शर्मा ग्लेनीडन में आपका बर्थडे मनाया जा रहा है। आप तीनों को भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी मेंबर्स की ओर से बेस्ट विशेज दिए जा रहे हैं। हमारी टीम की ओर से भी अमृतलाल दयाराम, उषा मोदक और विमला शर्मा जी, आज के दिन के लिए आपको शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे एंड मैनी हैप्पी विटर्न्स ऑफ द डे। जहां कहीं पर भी आज जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही है, आपको तराना की ओर से बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। शाम को 6:30 कैप्टन सतीन शर्मा आपको याद करेंगे, उसके लिए मैसेजेस आप हम तक अभी भी पहुंचा सकते हो 9812 या ईमेल कर दें info@tarana.co.nz पर। सागर ने आज मूवी डकैत का ये गाना भेजा है। सनी देओल, राखी, मीनाक्षी शेषाद्री की ये फिल्म थी। ये गाने को सनी देओल और मीनाक्षी पर फिल्माया गया। सुरेश वाडकर और आशा ताई की आवाज है, आर डी बर्मन की मौसीकी है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा।

0: आशा थाई और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म डकैत का ये गाना हमारे साथी सागर ने आज भेजा था। आज का केक ड्रॉ भी हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस कुष्मा जी, आज के केक ड्रॉ में आपका नाम निकला है। आप रिंग कर ले 0800-786-101 पर, आज ही रिंग करना होगा प्लीज बिफोर 2 PM। अच्छा, आज एक और बर्थडे है, यही तराना में एक खुशियाँ छाई हुई और मैं भूल गई, आज हमारे साथी सोनल शर्मा का भी बर्थडे मनाया जा रहा है। खुशी के इस दिन पर सोनल को बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं। उनकी मामा है शर्मिला, उनके डैडी है सूर्या, उनकी बहन शिवी ने बहुत सारा प्यार दिया है, ऑफकोर्स उनके जितने भी लिसनर्स हैं रेडियो तराना पर, जितने भी फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन सब ने आज आपको बेस्ट विशेस दिए हैं। हे सोनल, हमारी टीम की ओर से भी बेस्ट विशेस, हैप्पी हैप्पी बर्थडे।
1: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
2: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
0: अच्छा, दिलीप सैन और समीर सैन का गाना हम अगले घंटे पर आपके लिए प्ले करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल केएमबी कंस्ट्रक्शन की ओर से मदर्स डे के अवसर पर हम माँ का एक नगमा आपको सुनाना चाहेंगे।

0: कभी परेशान क्यों ना हो, हमारी उम्मीद का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलते। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है, इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक।
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: सुबह के 11 बजे हैं।
5: This is Tarana News.
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। एक रिपोर्ट के अनुसार एक टॉक शो होस्ट द्वारा बार बार पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बताने से इनकार कर दिया कि ईरान युद्ध के दौरान जारी युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है या नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास ईरान और अमेरिका दोनों ओर से हमलों के कारण से अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जबकि अमरीकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी है। अमरीका ने कहा है कि उसने 6 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा है कि उसने एक दर्जन से अधिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोका है। रेडियो होस्ट ह्यू हेविट ने ट्रंप से पूछा कि क्या युद्ध विराम समाप्त तो हो गया है, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मैं आपको ये नहीं बता सकता। ट्रंप ने कहा कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो आप कहेंगे कि ये आदमी राष्ट्रपति बनने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। लेबर नेता क्रिस हॉपकिंस का कहना है कि वे नहीं सोचते कि एक्टर डेविड सिमो ने सोच समझकर अपनी पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को देश में $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी भरना पड़ेगा। लेबर नेता क्रिस हॉपकिंस का कहना है कि इस तरह की लेवी लागू करने का मतलब होगा कि माइग्रेंट्स देश आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का रुख कर सकते हैं।
7: I think David Seymour hasn't thought through some of the consequences of what he announced over the weekend. For example, his new migrant levy that they would pay daily is ultimately likely to flow through into increased costs for New Zealanders who rely on those migrant workers.
6: BNZ ने 2 हफ्तों में दूसरी बार फिक्स टर्म मॉर्गेज रेट्स में बढ़ोतरी करने की अनाउंसमेंट की है। 18 मंथ टर्म को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.95% कर दिया गया है, जबकि 2 ईयर टर्म को 5.19% और 3 ईयर टर्म को 5.39% कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों की प्रॉपर्टी में 20% से कम इक्विटी है, उन्हें लो इक्विटी इंटरेस्ट रेट प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। इंटर आइलैंडर फेरी ने फ्यूल से चार्ज में और बढ़ोतरी की है। कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स जो कुक स्ट्रेट पार कर रहे हैं, उनके लिए फ्यूल से चार्ज को 54% कर दिया गया है। एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से यह कदम उठाया गया है। क्यूबी रेल और मिनिस्टर फॉर रेल विंस्टन पीटर्स का कहना है कि इंटर आइलैंड फेरी के खर्चे बढ़ रहे हैं तथा वह खुद इन खर्चों को नहीं सह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत हासिल की, साथ ही असम और पांडुचेरी में भी सत्ता में वापसी की है। इस बड़ी जीत के बाद में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, जब सालों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर भी खुशी होती है। वह खुशी आज मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन 5 राज्यों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र हमारे रक्त में दौड़ता हुआ संस्कार है। आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, बल्कि आज भारत का संविधान भी जीता है। फिजी में प्रस्तावित इमिग्रेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत फिजी में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं, जिससे बॉर्डर कंट्रोल एनफोर्समेंट और प्रोसिक्यूशन को और मजबूती मिलेगी। जो परिवर्तन किए जाएंगे उसके तहत इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बिना सेज वारंट के किसी को सेज करने का अधिकार मिलेगा, साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सेज किया जा सकेगा।
5: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: हाई परफॉर्मेंस एक्सपर्ट डॉन ट्रिका की वापसी न्यूजीलैंड रग्बी में हो रही है। ट्रिका न्यूजीलैंड रग्बी के साथ 2010 से 2018 के बीच में काम कर चुके हैं। उसके बाद में वे मेजर लीग बेसबॉल टीम सैन डिएगो पैड्रेस में शामिल हो गए थे। न्यूजीलैंड रग्बी अभी भी मार्क रॉबिन्सन की जगह नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश कर रहा है। इस बीच पूर्व ब्लैक सॉक्स सॉफ्टबॉल कोच ट्रिका को हाई परफॉर्मेंस ऑफिसर के रूप में न्यूजीलैंड रग्बी में शामिल किया गया है।
3: Weather report brought to you by Crew Care.
2: विजिट crukia.co.nz।
4: क्राइस्टचर्च में ज्यादातर बादल ही रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप खिलेगी, बारिश नहीं होगी। 14 आज का मैक्सिमम, रात को 5 मिनिमम 527 पीएम पर सनसेट होगा। कल ब्राइट सनी डे रहेगा। कल का टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। वेलिंगटन में आज तेज हवाओं के साथ में पार्टली क्लाउडी पीरियड रहेंगे। 14 आज का मैक्सिमम, रात को 12 मिनिमम 523 पीएम पर सनसेट होगा। कल भी आज जैसा ही वेदर रहेगा। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। हैमिल्टन में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की पुरवैया चलेगी। 19 आज का मैक्सिमम, रात को 10 मिनिमम 528 पीएम पर सनसेट होगा। कल भी आज जैसा ही वेदर रहेगा। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। ऑकलैंड में सुबह सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, अब वो थम जाएगी, अब लेकिन तेज पुरवैया पूरे दिन आज चलती रहेगी। 19 आज का मैक्सिमम, रात को 15 मिनिमम आज 531 पीएम पर सनसेट होगा। कल भी सुबह की शुरुआत बूंदाबांदी के साथ में होने वाली है। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस।
8: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम। डिमाइज न्यूज।
4: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राकिरा की फीजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस गार्डन्स के बॉब कृष्णचंद का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फिनरल होम 11 बॉल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02193266 पर संपर्क कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, सूचित किया जाता है कि राकी राकी फीजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस दी गार्डन्स के बोब कृष्णचंद का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फिनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02193266 पर संपर्क कर सकते हैं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पंजाली के पति दिलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू का अंतिम संस्कार कल सुबह 10 बजे एंस फिनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02155267 पर संपर्क कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पंजाली के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू का अंतिम संस्कार कल सुबह 10 बजे एंस फिनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02155267 पर संपर्क कर सकते हैं।
2: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
4: जीवन में कुछ पल बहुत ही अलग होते हैं, और जब किसी प्रियजन को अलविदा कहना हो तो हर चीज आसान होनी चाहिए और सम्मानजनक भी। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की सेवा प्रदान की जाती है। इनके इजी पे फ्यूनरल प्लान के साथ परिवार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है, और एडवांस पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स के बारे में जानकारी के लिए आप उन्हें आज ही 2788600 पर रिंग करें। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम, हर विदाई में सम्मान और सेवा।
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: Papatoy, Flatbush aur Papakura ke baad ab DH Supermarket ka sabse bada store khul gaya hai in Henderson. That's right, your local Indian grocery store now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road, Henderson. Huge, clean, hygienic place to shop with ample parking. Yahan par aapko milenge fresh vegetables, authentic spices aur sabhi Indian grocery saman bohat hi achhe prices mein. DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road.
5: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
11: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
12: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.

0: पापा।
1: आज जो खबर सबसे ज्यादा शेयर की जा रही है वो है कि क्या यूएस ने ईरान के ऊपर और ईरान ने यूएस एलाइज के ऊपर हमला करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। यही सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं, सीज फायर क्या यूएस और ईरान के बीच में अब खत्म हो गया है। दोनों साइड्स के बारे में ये बताया जा रहा कि रहा है कि इसके अलावा जो हमले डायरेक्टली किए जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में भी, जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि वो अपने बलबूते पर कुछ एक शिप्स को जाने का उनको एस्कॉर्ट करके लेकर के जाएंगे और बाहर निकालेंगे। बट ये खबर आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरात्स की ओर से, जो यूएस एलाई है, उन्होंने बताया कि 19 ईरानियन मिसाइल्स ड्रोन्स अटैक किए गए हैं ऑयल पोर्ट पर ईरान द्वारा। तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया है यूएस एलाइज के ऊपर। और लगे हाथ डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अगर ईरान किसी भी तरह से उनके ऊपर दबाव डालेगा और कोशिश करेगा यूएस शिप्स को टारगेट करने के लिए, जो कि अभी फिलहाल पर्शियन गल्फ से या फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होकर के गुजर रहे हैं जिनको यूएसए गाइड कर रहा है, तो उन्होंने सख्त शब्दों में आज सुबह ही ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो मैं ईरान का वजूद ही इस धरती से मिटा दूंगा।

0: जो लोग इंडियन आइडल देखते हैं वो मेरे इस बात से अग्री करेंगे कि आदित्य नारायण एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए होस्ट हो गए हैं। बीच बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के वो जो ह्यूमर लेकर के आते हैं वो एडेड वैल्यू दे देता है इस प्रोग्राम को। हालांकि गाने वाला प्रोग्राम है लेकिन उनकी होस्टिंग इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देती है। सो एक बार जस्ट फ्यू वीक्स बैक महेश भट्ट आए हुए थे अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ में। सो ही मेरा कमेंट, आदित्य मेरा कमेंट कि पूजा भट्ट जितनी तेजी से चाहे वो रास्तों पर गाड़ियां चला सकती है, सड़क पर गाड़ी चला सकती है, क्योंकि सड़क उनके बाप ने बनाई है, मूवी सड़क। मैं इसलिए ये कोट कर रही हूँ क्योंकि वाकई कुछ लोगों को ऐसा लगता है यहाँ न्यूजीलैंड में कि सड़क उनके बाप ने बनाई है। रेडियो तराना फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो देखना किस तरह से ये डर्ट बाइक एक बार फिर से हाथों से बेकाबू हो रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को बीच रास्ते में पैक्यूरांगा में रोका, उनकी चाबी ले ली और उनके साथ में मारपिटाई शुरू कर दी। अभी हमें नहीं पता कि कितनी चोट लगी, आप वीडियो जाके तराना फेसबुक पेज पे देख सकते हैं कि किस तरह से उनको मारा जा रहा है। बट वाकई में ये जिस तरह से एक्ट कभी कभी करते हैं ऐसा लगता है कि ये सड़क उनके बाप का ही है। जबकि माधुर्स डे अभी करीब है, संडे को है, सबके अपने तरीके। देर इज नॉट अ पर्टिकुलर रूल कि आप दुनिया में किसी को कितना प्यार कर सकते हैं, कैसे प्यार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संडे के दिन आप माँ को खूब पैंपा करें और फिर संडे के बाद माँ को आपको पैंपा करना पड़े और फिर आपको माँ को नज़रअंदाज ही करते रहे। सब बच्चे का अपनी माँ के प्रति प्रेम देने का अलग अलग तरीका है। देर इज नथिंग कि एक जैसा होना चाहिए, बस भाव सही होना चाहिए कि मेरी माँ सुखी रहे, मेरी माँ खुश रहे, मेरी माँ को मैं भी उतना प्यार करता या करती रहूं जितना माँ मुझसे करती है।
1: हमने उसे देवी बना दिया ताकि वो इंसान न रह सके, उसे महान बना दिया ताकि वो कोई गलती ना कर सके। हमने उसके हाथ के खाने की इतनी तारीफ कर दी कि वो फिर कुछ और कर ही ना पाई। घर में हर कोई चीखता चिल्लाता रहा पर वो ही किसी से कुछ कह ना पाई। गुस्सा तो उसे भी आता था, सास ससुर ननद देवर पति पर सुशील लड़कियां गुस्सा नहीं दिखाती, ये सीखा उसने उम्र भर। अपनी घुटन निकालने का उसके पास एक ही जरिया था, वो बच्चा जो सबके हिस्से की डांट मार खा जाया करता था। वो मां जो दिन भर घर में सबसे पूछती है क्या खाओगे, कभी उससे किसी ने पूछा मां तुमको क्या खाना है? जो सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है उसके शौक क्या हैं? कोई जानता भी है? कभी उसका भी तो मन करता होगा कि आज कुछ ना करे, ना खाना बनाए, ना घर समेटे, ना बच्चों को तैयार करे, ना टिफिन पैक करे। उसका भी तो मन करता होगा कि सिर्फ और सिर्फ आज आराम करे। बेटी तो फिर भी कुछ कुछ समझ लेती है, मां से बातें करके उसका दुख बांट लेती है।

0: बेटा कब माँ के सिरहाने बैठ उसके बालों को सहलाता है, कब माँ के सर में तेल लगाता है, कब पिता को माँ पर चिल्लाने के लिए कभी टोक पाता है, कब माँ को किचन में जाने से रोक पाता है। बेटा गर्लफ्रेंड बना लेता है, उसको भी कुछ कुछ समझ लेता है, लेकिन कब वो अपनी मां का दोस्त बन पाता है। मां ने पिछली बार नए कपड़े कब लिए थे, अपनी पसंद की फिल्म कब देखी थी, अपनी मर्जी की जगह घूमने कब गई थी, अपनी सहेलियों के साथ मस्ती कब की थी, अपनी पसंद के रेस्तरां में अपनी पसंद का खाना कब ऑर्डर किया था। किसी भी बच्चे से सवाल पूछ लीजिए, जवाब किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हर बच्चा ये कहेगा, I love my mom. My mom is the best in the world. So if you really love your mom, तो चलो अब से कुछ अलग करते हैं। Women's Day, Mother's Day, इनको redefine करते हैं। माँ को क्या चाहिए, माँ को क्या पसंद है, माँ कहाँ जाना चाहती है, माँ क्या करना चाहती है, ये हम माँ से ही पूछते हैं। साल का एक दिन नहीं, हर दिन उसके प्रति अपना नजरिया बदलते हैं। वो देवी है, महान है, सबसे अच्छी कुक है, कितनी एडजस्टिंग है, ये सारे लेबल्स देने के बजाय माँ को बस इंसान बने रहने देते हैं। चलिए अब हम अपनी माँ को प्यार और सम्मान के साथ साथ बहुत सी आजादी और आराम देते हैं।
1: So beautiful words. जितनी भी महिलाएं भी फिलहाल सुन रही हैं आपका हैप्पी मदर्स डे, एंड आई एम वेरी श्योर ऐसे बहुत सारे मेल लिसनर्स भी होंगे जो अपनी माँ को उतना ही आदर सम्मान प्यार देते हैं जितना कि एक बेटी देती है। बट कभी कभार अगर हिचक कहीं पर है तो आई होप कि इन सुशील शब्दों के जरिए, इन प्रिय शब्दों के जरिए आपको और खुलने का मौका मिलेगा अपनी मम्मा के साथ में। hey, आज मैं पवन पीड़िया में आपको बताने वाली हूँ एक वायरस के बारे में, जिसकी वजह से ये वायरस भी चर्चा का विषय दुनिया में बन गया है, क्योंकि इसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई है और इसका कोई भी इलाज दुनिया में अभी फिलहाल नहीं है। क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है, एंड शुड वी बी पैनिकिंग, शुड वी, हमें क्या वरी करना चाहिए इसको लेकर के या नहीं, यूके की ये खबर है। पवन पीडिया में इसके बारे में आपको बताते हैं इस एड ब्रेक के उस तरफ।
2: मम्मी मम्मी एयरफोन कान में निकाल जरा।
3: है सो के तो दिख रहा।
2: अरे कितना वर्ष थी नव घर करती हती, आपने ले ली तू नहीं इंडेलेबल वाला नव घर।
3: तू कितना सारो छो दिख रहा।
2: मम्मी नव घर छे, साचो जरा, बद्दू अहिया वेर विखेर पड़ू छे।
3: तमे जेंजी वाला घड़ी माने काम कराओ छो, हे भगवान।
2: मम्मी
3: घर बनावा वाला नो खूब खूब आभार।
2: धन्यवाद इंडेलेबल होम्स।
1: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलेबल होम्स। फोन 0800 233 111।
4: With Mercury, just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड माउंट रस्किल, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
5: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।
6: 3 मिनट का पवनपीडिया, नो समथिंग न्यू ऑन पवनपीडिया।
1: So, सबसे पहले तो आपको मैं एक आवाज़ सुनाना चाहूँगी। ये आवाज़ एक ट्रैवल व्लॉगर का है, की है, और ये MV होंडुरस वेसल पर है, क्रूज शिप है, जिस पर लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ दिस वायरस।
7: आई नॉर्मली वुडन्ट मेक अ वीडियो लाइक दिस, बट आई फील लाइक आई नीड टू से समथिंग, सो आई रोट अ फ्यू थिंग्स डाउन। I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding.
1: Okay. So, 3 लोगों की जान चली गई है. UK national अभी एक सीरियसली बहुत बीमार है और अस्पताल में साउथ अफ्रीका में इलाज उनका किया जा रहा है. एक छोटा सा क्रूज शिप है जो फिलहाल अटलांटिक ओशन का सफर कर रहा था. इसके ऑपरेटर है MV हॉन्डियस. टुआ कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशन है और बताया गया कि एक डच पति और पत्नी जर्मन नेशनल के ये थे और उन दोनों की जान चली गई है. ये डच कंपनी MV हॉन्डियस के मालिक है. कंपनी ने बताया है अभी उनकी मृत्यु किस तरह से हुई इसके बारे में पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी तरह की एक और बीमारी से एक जिस व्यक्ति को भर्ती कराया गया है साउथ अफ्रीका में, ये पाया गया है, ये डच कंपनी के मालिक ने बताया कि हेंटा वायरस कन्फर्म किया गया है 69 ईयर ओल्ड UK नेशनल जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में भी इलाज कर रहे हैं. हेंटा वायरस ये अक्सर इंसान का इंसान से नहीं फैलता, एक इंसान को अगर वो है तो दूसरे को नहीं फैलता है. ये फीसिस के जरिए या सलाइवा के जरिए या यूरिन के जरिए एक दूसरे को फैल जाता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है. इससे होता क्या है, आपके फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सांस लेने के नली से लेकर के सांस लेने के हर एक पुर्जे पर आपके बॉडी के अंदर बुरा असर होता है. और इसकी वजह से हो सकता है कि बिटवीन पीपल ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर हो तो ये एक से दूसरे तक हो सकता है. इस वायरस के बारे में और जानकारियां अभी की जा रही है. केप वर्डे में फिलहाल कोस्ट में 149 लोग इस वेसल पर सवार है. इनमें कई नेशनल के लोग बताया गया है कि सफर कर रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज सवेरे एक स्टेटमेंट निकाली है और उन्होंने बताया है कि कन्फर्म्ड लेबोरेटरी से ये पता चला है कि 5 सस्पेक्टेड केसेस और हैं इस शिप के अंदर. निगोसिएशंस अभी फिलहाल चल रहे हैं लोकल अथॉरिटीज के साथ में और साथ में ओशन वाइड एक्सपीडिशन के बीच में कि ये कितना बड़ा मेडिकल, कितना सीरियस मेडिकल सिचुएशन है. अभी फिलहाल आउटलाइन किया जा रहा है दोनों तरफ से. एक व्यक्ति की जान 11 तारीख अप्रैल को ऑन बोर्ड इस क्रूज शिप में हो गई थी और बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी को सेंट हेलेना में 24 अप्रैल को शिप से उतारा गया था. उनके साथ में उनकी पत्नी भी उतर गई थी. फिर उनकी पत्नी भी इसी वायरस से बीमार हुई और बाद में अस्पताल में उनकी भी मृत्यु हो गई. 27 को एक और पैसेंजर को जो ब्रिटिश नेशनल है उनको मेडिकली इवेक्वेट किया गया साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो भी इस शिप पर सवार थे और वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे. तो साउथ अफ्रीका में नियरेस्ट कोस्ट के पास उनको उतारा गया और शनिवार को ये बताया गया कि इस तीसरे व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई जो MV हॉन्डियस में सफर कर रहे थे. कॉज ऑफ डेथ अभी भी डिटरमिन करना है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि ये जर्मनी का रहने वाला व्यक्ति है. डॉक्टर एरन मोत्सालेदी ये साउथ अफ्रीका के डॉक्टर है और साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ब्रिटिश नेशनल जो अभी फिलहाल एडमिट किए गए हैं उनकी हालत ठीक नहीं है. वो एक प्राइवेट फैसिलिटी में अभी फिलहाल है. चूंकि इस बीमारी के लिए कोई इलाज अभी दुनिया में नहीं है, तो उसके करीब के कोई इलाज जो किया जा सकता है हेल्थ रिलेटेड या रेस्पिरेटरी रिलेटेड चीज़ों के लिए, उनसे उस व्यक्ति की अभी फिलहाल इलाज की जा रही है। एक पैसेंजर जो ऑन बोर्ड है एमवी होंडियस पर, उन्होंने अपना नाम बताने से बोला है कि उनको अनोनिमस ही रखा जाए। उन्होंने बीबीसी से बातें की और उन्होंने अपने शब्दों में कहा, द लेटेस्ट वर्ड इज दैट अ प्लेन इज ऑन इट्स वे एंड वंस इट गेट्स हियर थ्री पीपल विल बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द शिप एंड फ्लोन स्ट्रेट टू यूरोप, देन द रेस्ट ऑफ अस विल ऑलमोस्ट सर्टनली सेल टू द कैनरी आइलैंड्स। उनको तैरने का मौका नहीं है, कहीं वो जा नहीं सकते हैं और उनको जो भी ऑन बोर्ड बताया जाता है उसी के ऊपर है। 149 लोग अभी सवार हैं, इनमें से और कितने बीमार हैं, विद 5 और केसेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बताए जा रहे हैं। लुक्स लाइक कि ये इसी ऑन बोर्ड के लोग हैं, पर दिस इज़ द रीज़न कि वो इतने इमोशनल हो रहे थे क्योंकि दे डोंट नो कि क्या होगा उनके साथ।

0: Get Mum a gift, she'll love them bunnings.
1: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
2: 14-centimetre Calathea prayer plant, only $26.87. Fisker's Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma egg pot, just $19.98.
1: Pop into Bunnings and find something she'll love.
3: Bunnings Warehouse.
1: Lowest prices are just the beginning.
4: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है टीज एंड सीज अप्लाई एनजेड बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले स्टोर में एट द कॉर्नर ऑफ Lambie Drive and Cavendish Drive. इस Mother's Day को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश टीज़ एंड सीज़ अप्लाई

0: What say Kiwi Indians? Top trending talks, Pawan ke saath.
1: सबसे पहले भारत की खबरें आपके साथ में शेयर करते हैं। भारत में तो सभी इलेक्शन रिजल्ट ही है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जो डिसाइसिव मेजोरिटी हुई है 206 सीट्स की, ये बहुत बड़ी खबर है। टीएमसी ने सिर्फ 73 सीट्स हासिल किए हैं। क्या स्ट्रेटजी रखी गई होगी बीजेपी की तरफ से, ये खबर है। साथ में तमिलनाडु के एक्टर पॉलिटिशियन विजय, जो टीवीके के हैं, ने कैसे इतनी 107 सीट्स हासिल किए, क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी रखी होगी, की गई होगी पार्टी द्वारा, इसकी खबर भी है। ऑफ कोर्स केरला के भी कांग्रेस लेडी यूडीएफ ने विक्ट्री हासिल की है। फातिमा ताहलिया भी फिलहाल एक बहुत ही बड़ी फिगर यहां पर है, IUML वुमन MLA, और अभी इलेक्शन रिजल्ट्स ही वहां की सबसे बड़ी खबर है। जहां तक फिजी आइलैंड्स का सवाल है, फिजी की खबर में कल फिजी गवर्नमेंट ने कहा है, जैसे कि आपको याद होगा कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका ने जिक्र किया था, अभी फिलहाल अश्योरेंस दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरपर्सन द्वारा, जो कि सितिवेनी रंबुका अगेन है, कि अभी फिलहाल स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है और ना ही किसी तरह की इसकी जरूरत है। काउंसिल ने बताया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, जिसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी शामिल है, फिजी के फ्यूल सप्लाई पोजीशन भी शामिल है, इकोनॉमिक स्थिति भी शामिल है, कंटिंजेंसी प्लान क्या है ये भी शामिल है, करंट लॉ और ओडा की क्या स्थिति बनी हुई है ये भी शामिल है। सो इन सबको काउंसिल द्वारा इन्हें आंका गया है और इसके चलते ये निर्णय पर सरकार पहुंची है कि अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी की जरूरत नहीं है।

0: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
2: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है टीज एंड सीज अप्लाई एनजेड बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले स्टोर में एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश T's and C's apply.
3: Ashik Homes Limited. For the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
4: पवन के साथ सुनो कहानी अभी बाकी
5: कहानी का टाइटल है आ अब लौट चले कल आपने कहानी में सुना कि किसी की खूबसूरती को देख करके किसी का दिल निहाल है ऐसा नहीं है कि मन में कोई ऐसी वैसी बात है लेकिन फिर भी खूबसूरती के आगे कभी कभी इंसान झुक ही जाता है और यही हाल इस बैंक मैनेजर का है एक दिन जब वो आई चेहरे की मुस्कुराहट तथा भाव से उसका भी मेरे प्रति झुकना कोई असामान्य नहीं लगता था एक दिन अपना उम्र प्रमाण पत्र सत्यापित कराने बैंक में आई तो उसमें लिखी उम्र देख करके मैं हैरान रह गया 1964 का जन्म मैं तो देखता रह गया मैंने ये कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई क्यों वो सकुचाती से बोली लगता था आपको शायद हर नारी की तरह वो भी 20-22 की सुनना चाहती हो मैं बोला कुछ भी लगता हो परंतु आप 38 की ही या उससे कम लगती है उसके चेहरे की लालिमा मुझसे छिपी नहीं रही इस लालिमा को देखने के लिए ही तो मैं लालायित था शायद इसलिए ही लड़कियां अपनी उम्र बताना पसंद नहीं करती मैं बोला महिला के स्थान पर लड़की शब्द का प्रयोग पता नहीं किस बहाव में ले गया परंतु उसे अच्छा ही लगा होगा मैंने फिर दोहराया परंतु कुछ भी कहिए मिसेस शर्मा आप इतनी की ही लगती है मेरे द्वारा चुटकी लेते हुए कही गई इस बात से उसके सुर्ख चेहरे पर गहराती लालिमा देखते ही बनती थी आप मर्दों को तो छेड़ने का बहाना चाहिए उसने सहज लेते हुए दार्शनिक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा मुझे लगा वो बुरा मार गई इसलिए मैंने कहा माफी चाहता हूं यदि अनजाने में कही ये बात आपको अच्छी ना लगी हो नहीं मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा आपको जो ठीक लगा आपने कह दिया मेरे सामने कह करके स्पष्ट वादिता का परिचय दिया पर पीछे से कहते तो मैं क्या कह सकती थी वो बोली इतनी गंभीर बात को सहज ढंग से निपटाना सचमुच प्रशंसनीय है ये सिलसिला जो पाक से प्रारंभ हुआ था पाक में ही समाप्त होता नजर आने लगा क्योंकि ये क्रम उस दिन के बाद आगे नहीं चल सका मुझे लगा वो मेरी इस बात का बुरा मान गई होगी अब हर सवेरे उस पार्क में जाकर के एक चक्कर लगाता एक दो एक्सरसाइज करता और देर तक इधर उधर शरीर हिला करके व्यायाम का नाटक करता बैंक में कैबिन के बाहर ही गतिविधियों पर पैनी नजर गड़ाए रहता परंतु उससे फिर पूरे 2 सप्ताह ना बैंक में मुलाकात हो सकी ना ही पार्क में शाम होती तो सुबह का इंतजार करता और सैर के बाद बैंक जाने का इंतजार करता कि कहीं ना कहीं वो आ जाएगी, नज़र तो आएगी। मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि वो मेरी उस दिन की बात का बहुत बुरी तरह से बुरा मान गई है। इसीलिए तो आज देखो मैं किस तरह से बेसब्री के साथ में उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो है कि एक पल नज़र भी नहीं आ रही ना बैंक में

0: लेट्स सी आज न्यूजीलैंड का वाइब कैसा है विद संजेश नारायण।
1: एक पार्टी चाहती है कि बच्चे किसी भी स्कूल बस में चढ़ सके बशर्ते उसमें जगह हो। मौजूदा नियमों के अनुसार स्टूडेंट्स मुफ्त बस सेवा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वे अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ते हों। इसमें प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स जिनका घर स्कूल से 3.2 किलोमीटर दूर है और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनका घर 4.8 किलोमीटर दूर है वे फ्री बस सेवा को फिलहाल काम में ला सकते हैं। एक्ट सांसद एंड्रयू होगार्ट का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के माता पिताओं ने चिंता व्यक्त की है कि कई बार बसें उनके सामने से ही खाली चली जाती है। फंगामाता में 6 स्टोर्स में ब्रेक इन की रिपोर्ट मिलने के बाद में पुलिस ने 18 वर्षीय एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ईस्टर्न वाइकाटो एरिया कमांडर इंस्पेक्टर माइक हैनवुड का कहना है कि पोर्ट रोड पर 6 दुकानों में ब्रेक इन के बारे में जानकारी मिलने के बाद में पुलिस को पते पर भेजा गया था। पुलिस का कहना है कि सुबह 2:30 बजे तायरुआ रोड पर एक गाड़ी पुलिस को दिखी थी। गाड़ी का पीछा नहीं किया गया लेकिन उस पर नजर रखी गई। वही फंगमाता रोड पर गाड़ी के जाने के बाद में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं से 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गाड़ी से कई सामान मिले हैं जिन्हें चोरी का समझा जा रहा है। वेस्टपैक बैंक के मुताबिक इस साल मार्च तक पिछले 6 महीनों में उसे $545 मिलियन का मुनाफा तो हुआ है लेकिन उससे पूर्व वाले 6 महीनों के मुकाबले मुनाफे में 19% की गिरावट हुई है। आने वाले दिनों में फ्यूल के दाम में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर अब खतरे में है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के 6 छोटे नावों को पानी में डुबो दिया गया है जबकि ईरान की ओर से पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर मिसाइलें दागी गई हैं। लेबर नेता क्रिस हिपकिंग्स का कहना है कि वे नहीं सोचते कि एक लीडर डेविड सिमो ने सोच समझकर अपनी पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को देश में $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी भरना पड़ेगा। लेबर नेता क्रिस हिपकिंग्स का कहना है कि इस तरह की लेवी लागू करने का मतलब होगा कि माइग्रेंट्स देश आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का रुख कर सकते हैं। अगला समाचार अगले घंटे पर।
2: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
3: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
0: दिलीप सेन और समीर सेन ने फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में भी म्यूजिक दिया था।

0: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। रेडियो तराना
2: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
3: This is Urdu News.
4: मैं हूं वजन फरहेदर और आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नजर डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है कि ईरान जंग के आगाज के बाद मार्च में दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमदरफ्त में 2/3 कमी रिकॉर्ड की गई है। दुबई इंटरनेशनल दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक है, जहां मुसाफिरों की तादाद घटकर 25 लाख रह गई है। हालिया जंग के दौरान ईरान ने मुतअद्दिद बार वहां रॉकेटों से हमले किए हैं। मॉस्को में रात गए हमले के दौरान एक यूक्रेनी ड्रोन एक इमारत से टकरा गया, जब दो दीगर ड्रोन शहर के करीब पहुंचने पर मारे गए। मॉस्को के मेयर के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेन की जानिब से रूस पर ड्रोन हमले होते रहे हैं। फिलिपाइन में मुल्क के सबसे फाल आतिशफिशां के फटने के बाद हजारों अफराद को अपने घरों से निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। बेगोल खित्ते में वाकये माउंट मायोन से हफ्ते के रोज आसमान में राख का एक बड़ा बादल उठा। पहाड़ के ढलानों पर रहने वाले 5,000 से ज्यादा अफराद अब आरजी पनागाहों में रह रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल वर्कर्स सड़कों से राख साफ करने में मसरूफ हैं। और अब इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग का जिक्र। ईरानी मीडिया का कहना है कि एक अमरीकी बहरी जंगी जहाज को आबनै हुर्मुज में दाखिल होने से रोकने के लिए ईरानी फौज ने मिजाइल दागे हैं। ताहम अमरीकी फौज ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि उसके किसी बहरी जहाज को ईरानी मिसाइल नहीं लगा है। तेहरान ने कहा था कि उसने आबनै हुर्मुज में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एक बहरी जंगी जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इससे कबल सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमरीका ईरानी ब्लॉकेट की वजह से इस वाटरवे में फंसे हुए तजारती जहाजों को आज़ाद करवाने की कोशिश करेगा। ईरानी फौज ने धमकी दी थी कि अगर अमरीकी फोर्सेज ने प्रेजिडेंट ट्रंप के मनसूबे पर अमल की कोशिश की तो वह उन पर हमला करेगा। इस दौरान इंसानी हकूक की तंजीमों ने ईरान की हुकूमत पर वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों, तशद्दुद और सजाए मौत देने के इल्जाम लगाए हैं। मुल्क में काबिल भरोसा ज़राए की मदद से बीबीसी ने चंद ऐसे अफराद से बात की है जो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला हैं कि कल क्या होगा। देखिए नामा निगाह फर्गल कीन की रिपोर्ट।
5: इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता कि हुकूमत नहीं गिरी। इसकी बड़ी बड़ी निशानियां हर सू मौजूद हैं। मामूलाती जिंदगी बजाहिर लौट आए हैं, मगर इस नौजवान जोड़े की तरह बहुत से दूसरों के लिए उम्मीद की जगह मायूसी ले रही है। यहाँ इनकी गुफ्तगू सदाकारों की मदद से पेश की जा रही है।
6: तब्दीली आएगी, वो तो आ चुकी है।
7: तब्दीली पासदारान इंकलाब के हाथ आ गई है। मुल्क में खराबी ही खराबी है। शुरू में मैं नहीं चाहती थी कि जंग हो। फिर जब उन्होंने बड़े लीडर्स को मारना शुरू किया तो मैं हर एक की मौत पर बेइंतहा खुश होती, मगर मसला ये है कि उनके बहुत से लोग अब भी जिंदा हैं। मैं जो चाहती थी वैसा नहीं हुआ। पहले से ज्यादा खराब हो गया है। इस्लामी जमहूरिया हमारा मुकद्दर बन गई है। इनके जंग जीतने पर मुझे